सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बज रहे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: हजार वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले हजार वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मेरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत अगर ईश्वर के नाम और एक खूबसूरत आवाज़ से हो तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जब बात भक्ति और सुरों के संगम की हो तो एक ही नाम जहन में आता है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का। लता जी की आवाज़ में वो जादू है जो मन के सारे शोर को शांत कर देता है। तो चलिए

लता मंगेशकर के स्वर में भी आप सुन रहे थे प्रभु श्री राम का ये भजन। श्रोताओं, जीवन में जब भी डर लगे, जब भी राह मुश्किल लगने लगे, तो बस एक ही नाम है जो मन में अदम्य साहस और आत्मविश्वास भर देता है, और वो नाम है अंजनी पुत्र पवन सुत संकट मोचन श्री हनुमान जी का। कहते हैं जहाँ राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य विराजमान होते हैं। तो आइए, अब आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर के स्वर में ये भजन।

सुरेश वाडेकर और साथियों के स्वर में भी आपने सुना श्री बजरंग बली जी का ये भजन। और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, जब अहंकार टूटता है तब दिल से एक पुकार निकलती है, एक ऐसी पुकार जो अपनी कमियों को स्वीकार करती है और उस अकाल पुरख, उस परमात्मा की महानता के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो जाती है। तो चलिए, आज हमारी सुबह को इसी गहरी श्रद्धा से सराबोर करने के लिए हम लेकर आए हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणी का एक अनमोल शब्द।

मन्नड़े के स्वर में अभी आपने सुनी ये शब्द रचना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, मदीने की हाजिरी की तड़प हर मोमिन के दिल में होती है और जब कोई वहाँ पहुँच जाता है तो उसका दिल यही दुआ करता है कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। इसी पाक जज्बे को और बेहनता मोहब्बत को लफ्ज़ों में पिरोया गया है इस खूबसूरत नाते पाक में, जिसके बोल सीधे रूह में उतर जाते हैं। श्रोताओं, ये नात सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि मदीने के मुसाफिर के दिल की वो सच्ची पुकार हैं जो कहती है कि दुनिया की इस आपाधापी से दूर आका के दर पर जो सुकून है वो कहीं और नहीं।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कहते हैं जहां दुष्ट दलन अंजनी के लाल महाबली हनुमान जी की आरती गूंजती है, वहां से नकारात्मक शक्तियां और जीवन के सारे कष्ट कोसों दूर भाग जाते हैं। तो आइए कार्यक्रम वंदना का समापन करते हैं श्री बजरंगबली जी की इस आरती से।

श्री बजरंगबली की इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। स्वर श्रीकांत पारगांवकर के हैं और संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में, जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन, वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर श्रीकांत पारगांवकर के थे और संगीत सतीश भाटिया का। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: प्रार्थना दिल से, भाव से, विचार से, समर्पण से होनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन विचार ठीक होकर सूक्ष्म हो जाता है और आप वर्तमान में होते हैं। हम लोग अपने आप को संसारी कहकर साधना करने से बचाते हैं। जीवन में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। भक्त के लिए सानिध्य जरूरी होता है कि प्रभु मेरे हैं, मौजूदगी महसूस करें। जब हम मौजूदगी महसूस करते हैं तो प्रभु वही हैं। खुद की मौजूदगी महसूस करें कि हम हैं। आप अपने आप को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें। जीवन में सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए, वो है भक्ति और मुक्ति। जब दोनों हैं तो जीवन सफल है। हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करें। जिस जीवन में ध्यान ज्ञान नहीं वो जीवन कूड़ा करकट के समान है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है। ज्ञानी अपने आप सभी के सामने झुकते हैं, अज्ञानी अकड़ कर चलता है। तो तुम कौन हो खुद देखो। चेतना सबकी एक ही है, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, सभी के अंदर वही चेतना काम कर रही है। हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि उसकी चेतना से संबंध बनाओ। ये संबंध सानिध्य का होगा। सभी को परमात्मा का स्वरूप मानो। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना सभी में है। हम जिसको चाहते हैं उसकी याद बराबर आती रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों याद आ रही है। प्रभु को चाहो, प्रभु याद आने लगेंगे। हम सपने को पकड़कर नहीं बैठते हैं, इसी तरह हम संसार की चीजों को लेकर नहीं बैठेंगे। जब जान जाते हैं कि ये सब सपना है तो हम कभी आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सपना है। किस किस को पकड़ोगे? तुम पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। संसार एक सपना है, जैसे नींद से आया सपना जागने के बाद नहीं रहता। उसी प्रकार हम जान जाते हैं कि किस तरह सपने आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति वस्तु संसार में आते हैं और जाते हैं। सेवा करो, सेवा से मन शांत हो जाता है। जब सेवा करते हो तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहो, अन्यथा ये सेवा व्यापार हो जाती है। सांस को देखो, समझने की कोशिश करो, यही जीवन है और जीवन जीने की कला। जब हम समझने लगते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, अब पास में हैं, तो हम थकते नहीं। कोई बच्चा कहीं जाते वक्त थक जाता है तो हम कहते हैं देखो वो दिख रहा है। इसी प्रकार समीप समीप कहकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। हम काल और स्थान के समुचित व्यवहार नहीं करते। काल और स्थल के हिसाब से चलें और महसूस करें। हम जिसको पाना चाहते हैं उसको नजदीक समझें, जल्द ही उसको पा लेंगे।
0: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। काव्यधारा के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए संजीव कुमार शर्मा एकल का पूर्व प्रसारित ये काव्य पाठ।
2: सर्वप्रथम कवि शीर्षक से आज की इस काव्य को गति देने के लिए कविता पढ़ रहा हूँ। कल्पना कल्पित कवि की सोच ओज के जीवन का आधार। कल्पना कल्पित कवि की सोच स्वयं के जीवन का आधार

महत्व कवि वात्सल्य युक्त मातृत्व, कवि है त्रिगुण तम रज सत्व, कवि मरुथल में प्यासी प्यास, कवि मरुथल में प्यासी प्यास, कवि प्यासे की प्यासी आस, कवि बचपन यौवन संन्यास, कवि पूजा में अंगन्यास, कवि नभ में बिजली को घोर, कवि नभ में बिजली की घोर, कवि उड़ती पतंग की डोर, कवि मन की राधा का चोर, कवि है शरद ऋतु की भोर। और अंत में कहता हूँ कि किंतु हे हाय भाग्य के लेख, किंतु हे हाय भाग्य के लेख, तुझे लिखने वाला कवि कौन, तेरे आगे सहाय असहाय, तेरे आगे वाणी भी मौन, भाग्य का कवि न मिलता कोई। ये पंक्तियां विशेष तौर पे देखेंगे आप कि भाग्य का कवि न मिलता कोई, कर्म का कवि किंचित बेकार, किंतु फिर भी जगपालक ईश, किंतु फिर भी जगपालक ईश, धन्य तेरा कवि तेरा प्यार, धन्य तेरा कवि तेरा प्यार, धन्य तेरा कवि तेरा प्यार। मित्रों, ये तो कविता थी जो कवि शीर्षक से मैंने आपको दी। मित्रों, अभी अभी हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है, ये एक पावन पर्व है और इस पर्व से संबंधित चार दोहे आपके लिए दे रहा हूँ।

वर्षा ऋतु और ये रक्षाबंधन का पावन पर्व दोनों साथ साथ ही आते हैं, तो फसलें मन की हो गई, विशेष तौर पे देखेंगे आप इसे कि फसलें मन

और देखें कि चल रक्षा का वचन दे। एक बहन अपने भाई से कहती है रक्षाबंधन के इस पर्व पर कि चल रक्षा का वचन दे और ना ही कुछ मांग। चल रक्षा का वचन दे और कुछ

भाई बहन के इस पावन पर्व की कुछ दोहों के बाद आइए कुछ गीतिकाओं की ओर चलते हैं। और सर्वप्रथम एक गीतिका मैं आपके समक्ष रख रहा हूं,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में रा

0: उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
2: ये बबासीर और भगंदर गुदा की 2 महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। इसमें रोगी को बहुत सारे लक्षण होते हैं। मैं क्रम से आप लोगों को आपको बताना चाहूँगा कि बबासीर एक ऐसा रोग है जिसमें मलद्वार से खून आता है और उसमें कुछ मस्से हो जाते हैं। एक आम हम लोगों के बीच में धारणा है कि कोई भी इसको हम एक ऐसी बीमारी शर्म के कारण है इसको जो हम बताते नहीं हैं और डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब ये बहुत परेशान करने लगती है, तब हम इसका अपना इलाज कराते हैं। और इसमें क्या महत्वपूर्ण लक्षण है कि रोगी जो बवासीर, जिसको हम पायल्स या हेमरॉइड्स भी कहते हैं, इसमें हमारे जो मलत्याग के दौरान खून आता है उसके साथ साथ मस्से आते हैं और रोगी को कब्ज रहता है। तो इसका मुख्य कारण हम यदि माने तो खान पान की जो गड़बड़ी होती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा तली चीज़ें खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, पानी कम पीते हैं, जिससे पेट साफ नहीं रहता, कब्ज की स्थिति होती है, जोर लगा कि हमें मलत्याग करना पड़ता है, तो उससे जो गुदा में स्थित खून की नलियां होती हैं फूलने लगती हैं और जिस समय हम मलत्याग करते हैं तो उस समय या तो ये उस अवरोध उत्पन्न करती है या उसमें कोई नली फट जाती है तो उसमें धार के साथ खून आने लगता है। ये स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी रहती है और उसके कारण और भी काफ़ी उपद्रव या काफ़ी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो इसको जानने से पहले आपको हम ये कहना चाहेंगे कि यदि किसी को भी ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो तुरंत किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। इसके इलाज के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि

0: ये प्राथमिक स्थिति में रहता है, हम इसको कुछ स्टेजेस में बांट सकते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री पाइलमासिस हम इसको कहते हैं। कि पहली अवस्था में क्या होता है कि सिर्फ बवासीर या जो हेमरॉइड्स है इसमें मलत्याग के समय खून आता है और कोई लक्षण नहीं होता, इसमें कोई मसा नहीं दिखाई देता। जबकि जो सेकेंड डिग्री पाइलमास होता है उसमें मलत्याग के दौरान खून तो आ सकता है या नहीं भी आता, लेकिन उसमें क्या होता है कि मस्सा मलत्याग के समय बाहर आता है और वो अपने आप फिर अंदर चला, भीतर चला जाता है। जो थर्ड स्टेज है उसमें मलत्याग के समय मस्सा बाहर आता है और उसको फिर वो बाहर ही रहता है, उसको फिर उंगली से अंदर करना पड़ता है, उसमें खून भी आ सकता है और कई उपद्रव उसमें हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो सकते हैं। तो ऐसे लक्षण होने पर हमें सबसे पहले अपने खान पीने का ध्यान रखना चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए और जितने भी फाइबर कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, हरी सब्जियां हैं, पत्तीदार सब्जियां हैं, फल है, इनका प्रयोग करना चाहिए, अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या है कि हम अपने पेट को ठीक रख सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ यदि हम लेते हैं, शराब है, अधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी का सेवन है, ये नहीं करना चाहिए, इससे हमारा पेट साफ रहता है। और यदि पेट साफ नहीं रहता तो इसमें रात को हम इसबगोल की भूसी, मुनक्का, गर्म पानी का इस्तेमाल, पपीते का प्रयोग हम कर सकते हैं जिससे कि पेट साफ रहे। यदि इसके बाद भी हमारी स्थिति ठीक नहीं होती, उसमें कोई और लक्षण है, तो निश्चित रूप से हमें तुरंत किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि रोग को सिर्फ लक्षणों के तौर पे आप समझें, यदि समझते हैं कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा खून आ रहा है, तो ये स्थिति बाद में और भयावह हो सकती है और बाद में हो सकता है कि इसके ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। नहीं तो ये सामान्य उपायों से इस रोग को ठीक किया जा सकता है यदि समय पर इसका इलाज कर दिया जाए। इसके साथ साथ मैं दूसरी जो बात आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो भगंदर रोग है। भगंदर रोग एक ऐसा रोग है कि जिसको हम फिशुला इन एनो कहते हैं। ये गुदा द्वार के पास होने वाली एक फुंसी होती है जो बार बार फूटती है और इसमें से मवाद निकलता है और फिर ये बीच बीच में थोड़े समय के लिए ठीक भी हो जाती है, लेकिन ये स्थिति लगातार लंबे समय तक बनी रहती है। ये स्थिति क्यों होती है कि गुदा द्वार के पास यदि किसी अस्वस्थता की वजह से या असावधानी की वजह से कोई छोटी फुंसी होती है और उसका ठीक से इलाज, फोड़ा फुंसी का इलाज ठीक से नहीं होता, उसमें मवाद उसको ठीक से यदि हम बाहर नहीं निकालते या कोई उसकी ठीक से चिकित्सा नहीं कर पाते, तो वहां पे एक नासूर जैसा बन जाता है और वो नासूर बढ़ता बढ़ता ये गुदा के अंदर रेक्टम तक पहुंच सकता है, एनोरेक्टल रीजन में पहुंच सकता है। और उससे क्या होता है कि जो एक ट्रैक्ट जैसा बन जाता है उसमें निश्चित रूप नियमित रूप से मवाद चलता रहता है, कभी कभी उसमें उसी रास्ते से हवा भी पास होने लगती है और मल का कुछ हिस्सा भी उससे निकलने लगता है। ये एक बहुत परेशान करने वाली स्थिति होती है, अंदर के कपड़ों में हमेशा मवाद रहता है, दर्द होता है और बीच बीच में जब उसमें मवाद रुक जाती है तो बुखार, ठंड लग के बुखार और बहुत तेज दर्द की स्थिति हो सकती है। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है ये तब होती है कि जब हम प्राथमिक जो स्थिति है जिसमें फोड़ा या फुंसी बनी है उसकी उपेक्षा कर देते हैं और या उसका ठीक से इलाज नहीं कराते। तो सबसे पहले तो स्थानीय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। फोड़े फुंसी का यदि कोई तकलीफ होती है, बाल तोड़ होता है, तो उसका ठीक से हमें इलाज करना चाहिए। और यदि ये भगंदर हो जाता है तो इसके लिए हमें किसी सुयोग्य शल्य चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है गरीब की गाय बकरी। तो किसान भाइयों, बकरी को गरीब की गाय क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हम आपसे यह बात स्पष्ट करते हैं। तो भाई देखिए, जो किसान भाई गरीब होते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हम भी पशुपालन करें, लेकिन उनके पास जब पैसा नहीं होता है, और आप जानते हैं कि गाय और भैंस की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे कुछ भाई ऐसा कर सकते हैं कि वो बकरी पालन करके दूध की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं और एक स्वरोजगार के रूप में भी हम बकरी को पाल सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बकरी एक छोटा पशु होता है, इसके रहने के लिए ज्यादा बड़े पशुशाला की आवश्यकता नहीं होती और थोड़े से स्थान पर भी हम बकरी पालन कर सकते हैं। और बकरी पालन करने के लिए सबसे अच्छी बात यह होती कि यदि हमारे किसान भाई बकरियों को चरागाह में ले जाएं तो उनकी चारे की आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती है और बकरियों का व्यायाम भी हो जाता है और खास बात है कि भैया बकरी चरागाह को बहुत ही पसंद करती हैं। यदि हम घर में बांध कर या खूंटे पर बांध कर बकरी को चराएंगे या बकरी को घर बांध कर चारा खिलाएंगे तो बकरी उतना विकास नहीं करती, और चरागाह में यह अच्छा विकास करती है, अच्छा सर्वाइव करती है। तो जाहिर सी बात है कि भैया चारे के दाम भी ऊंचे हैं, तो बकरी के लिए चारे की व्यवस्था भी आसानी से हमारे बकरी पालक कर सकते हैं और उनका कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। और जहां तक बात है नस्ल की, तो किसान भाई यह जान लें कि बर्बरी, अल्पाइन और जमुनापारी बकरी बहुत ही अच्छी होती हैं, और इसकी शुरुआत हम 10-12 बकरी रखकर कर सकते हैं। और किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर पर एक नर बकरा जरूर रखें जो चरागाह में हमारी बकरियों के साथ जाए, क्योंकि जब बकरी ऋतुमयी होती है या गाभिन होने की दशा में होती है तो बकरा स्वयं ही उसको गाभिन कर देता है, और हमारे किसान भाइयों का जो धन बकरी के गाभिन कराने में या पशुओं के गाभिन कराने में जाता है वो भी व्यय नहीं होता और आसानी से बकरी गर्भित हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि भाई बकरी पालने में इस बात का ध्यान रखें कि बकरियों को गीली जगह, कीचड़ या गारा पसंद नहीं है, तो बकरी की जो हमारी पशुशाला होती है वहां पर वर्षा का जल और मूत्र वगैरह बकरियों का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बकरियां बैठती नहीं है। आपने देखा होगा जब कहीं बकरियां चलती हैं तो बकरियां कभी भी कीचड़ और पानी में चलना पसंद नहीं करती, बशर्ते उनको इधर उधर कूद कर ऊपर नीचे आगे बढ़ना होता है। और यदि हम बीमारी की बात करें तो बकरियों में खुरपका, मुंहपका जो गाय और भैंस में होता है उसकी जगह एक रोग आता है PPR, और उसके लक्षण वही होते हैं कि मुंह से बकरियों के लार टपकती है और खुरों में जख्म हो जाते हैं। तो इसके टीके भी हमारे किसान भाई अपने राजकीय पशु चिकित्सालय में जाकर लगवा सकते हैं और ये टीके मुफ्त लगते हैं। और PPR इस बीमारी को बोलते हैं जो हमारे गाय भैंस में खुरपका मुंहपका रोग FMD के नाम से हम जानते हैं, तो बकरियों में वह रोग PPR के नाम से जाना जाता है। और दूसरा ये बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि बकरियों के पेट में पाचन संबंधी बहुत परेशानी होती है, बकरियों के पेट में दर्द भी होता है, तो उसके लिए समय समय पर बकरियों को चूर्ण वगैरह हमें देना चाहिए जो कि पशु चिकित्सक से पूछकर हमें चूर्ण देनी चाहिए जिसमें पाचक चूर्ण होती हैं। और तीसरी बात यह होती है कि भैया हम बकरियों का दूध कैसे बढ़ाएं, तो भैया बकरियों का दूध बढ़ाने के लिए एक मिनरल मिक्सचर आता है, वो हम अपनी बकरियों को चारे और दाने के साथ मिलाकर दे सकते हैं। और आप जानते हैं कि बकरी का गर्भकाल 5 महीने का होता है और ज्यादातर बकरियां एक बार में 2 बच्चे देती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जगह में और ज्यादा पैसा खर्च न करके हमारे किसान भाई बकरी पालन कर सकते हैं, इसीलिए बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। तो किसान भाइयों आज खेती की बातें कार्यक्रम में इतना ही, कल एक नए विषय की जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे, प्रस्तुति आकाशवाणी अल्मोड़ा की होगी। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पर्यावरण बनाम विकास विषय पर परिचर्चा, प्रतिभागी होंगे ताजवीर सिंह, विक्रांत शर्मा, सूर्यमणि रघुवंशी, और परिचर्चा का संचालन करेंगे शोभित शर्मा। सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर सुनिएगा मुकेश की गाई चंद गजलें। विविध क्रम में शाम 6:45 पर रचना कुमारी की वार्ता का विषय होगा भारत में नारीवाद का विकास। बासमती धान में खरपतवार नियंत्रण, इस विषय पर डॉक्टर विवेक कुमार यादव से सुवेंद्र सिंह की बातचीत आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर। हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना और राष्ट्रीय मिशन प्रसाद योजना के बारे में, लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत अपराह्न 1:45 पर सुनिएगा कृपा निधान सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। लोक संगीत के ही एक अन्य कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे नीलम अग्रवाल के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। दिन में 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे एक परिचर्चा जिसका विषय होगा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। प्रतिभागी होंगी निशात असगर, आकांक्षा राजपूत, रूपेंद्र कौर और संचालन करेंगी सुनीता नेगी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 11:30 पर पूर्वाहन। जिले की हलचल हम प्रातः 9:15 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे और कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 7:31। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा, घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरा छोड़कर लखनऊ आए और सीधे घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली और बाद में केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस इमारत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, तुषाक कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई मंत्रियों ने लखनऊ के इस अग्निकांड को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक तथा उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।
4: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
2: प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
2: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
6: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए, हर सेक्टर में है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे CBG प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
2: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य और व्यापार, पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
7: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इंफोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का ज्ञान मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आज का एक कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं राजवीर। श्रोताओं, आज तारीख है 23 जून और आज का दिन है बेहद ख़ास, क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये तीन महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत खास है। इन सभी दिवसों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर। श्रोताओं, ओलंपिक सिर्फ एक खेल ही नहीं है, बल्कि ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओलंपिक प्रतीक है हमारी मेहनत, हमारे जज्बे और कभी ना हार मानने वाली हमारी जिद का। आज का यह खास दिन हमें याद दिलाता है कि मैदान चाहे खेल का हो, जंग का हो या फिर हमारी जिंदगी का, आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इसके लिए जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि आज ही के दिन यानी 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना हुई थी। इसके बाद साल 1948 में पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक दिवस मनाया गया। इसका मकसद बहुत ही सीधा और सुंदर था, दुनिया भर में खेलों को बढ़ावा देना और हर उम्र के इंसान को फिट रहने के लिए प्रेरित करना। श्रोताओं, ओलंपिक का एक बहुत ही खूबसूरत मूल मंत्र है और वो है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर, यानी तेज, उच्चतर, मजबूत और एक साथ। ये मंत्र हमें सिखाता है कि अकेले दौड़ना अच्छा है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना और आगे बढ़ना ही इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। आज पूरा विश्व इस भावना को सलाम कर रहा है। और श्रोताओं, जब बात ओलंपिक की हो तो भला हम अपने भारतीय वीरों को कैसे भूल सकते हैं। KD यादव के पहले व्यक्तिगत पदक से लेकर हॉकी के सुनहरे दौर तक हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। और हाल के वर्षों में अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मीराबाई चानू और मनु भाकर जैसे सितारों ने तिरंगे को जिस तरह से दुनिया के सामने लहराया है, उसने हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये खिलाड़ी हमें सिखाते हैं कि सपने सच होते हैं, बशर्ते आप उनके लिए अपनी जान लगाने को तैयार हों। श्रोताओं, खेल सिर्फ TV पर देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और मानसिक शांति के लिए भी ज़रूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम स्क्रीन से तो चिपके रहते हैं, लेकिन मैदान से दूर हो गए हैं। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। उठिए, बाहर निकलिए, चाहे दौड़ें, योग करें, साइकिल चलाएं या बस थोड़ा टहलें, अपने शरीर को गति दीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को खेलों से जोड़े रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और आनंद लीजिए इस खूबसूरत से गीत का।

0: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज एक और खास दिवस हम मना रहे हैं जो उन लोगों को समर्पित है जो बिना थके पर्दे के पीछे रहकर हमारे समाज को चलाते हैं। आज पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मना रही है। श्रोताओं, जब हम सुबह उठते हैं, हमारे घरों में पानी आता है, बिजली आती है, सड़कें हमें साफ मिलती हैं, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है और अस्पताल में इलाज मिलता है, तो इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी टीम जो है वो काम कर रही होती है, और ये टीम है हमारे पब्लिक सर्वेंट्स यानी लोक सेवकों की। आज का दिन उन्हीं कर्मयोगियों को धन्यवाद कहने का दिन है। चलिए इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके तहत हर साल 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। ये पुरस्कार उन सरकारी संस्थाओं को मिलते हैं जिन्होंने जनता की भलाई के लिए बेहतरीन और अनोखे काम किए हों। साथियों, जब हम भारत में लोक सेवा यानी सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे सामने प्रशासनिक अधिकारियों जैसे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों की तस्वीरें आ जाती हैं। आपदा हो, महामारी हो या कोई त्यौहार, जब हम अपने घरों में सुरक्षित होते हैं तभी अधिकारी और कर्मचारी मैदान में मुस्तैद होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज को भारत का स्टील फ्रेम कहा था जो देश की एकता और व्यवस्था को थामे रखता है। श्रोताओं, आज का ये दिन सिर्फ तारीख या तारीफ करने का दिन नहीं है बल्कि लोक सेवा में आ रहे बदलावों को समझने का दिन भी है। आज गवर्नेंस जो है ई गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस बन चुकी है। अब सरकारी सेवाएं आपके मोबाइल तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन तकनीक के इस दौर में भी जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है सहानुभूति और सेवा भाव। जनता की समस्या को अपनी समस्या समझना ही एक सच्चे लोक सेवक की पहचान है। सभी लोक सेवकों को आज इस विशेष दिवस पर उनके निस्वार्थ काम के लिए हमारी ओर से सलाम। श्रोताओं, बातें भी आपसे बहुत सारी करनी है। अब आगे हम आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में, और आज का एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं राजवीर। श्रोताओं, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस हम मना रहे हैं जो समर्पित है दुनिया भर की उन तमाम महिलाओं को जिन्होंने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान खजाना खो दिया है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मना रही है। श्रोताओं, किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमज़ोर या उपेक्षित वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब किसी महिला के सिर से उसके जीवन साथी का साया उठ जाता है तो वो सिर्फ एक साथी नहीं खोती है श्रोताओं, बल्कि कई बार वो समाज में अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपना सम्मान भी खो देती है। आज का दिन ऐसी ही महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उठाने का दिन है। क्या आप जानते हैं कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? चलिए हम बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत लुम्बा फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसके पीछे एक बेहद भावुक कहानी है। लुम्बा फाउंडेशन के संस्थापक राज लुम्बा की मां श्रीमती पुष्पावती लुम्बा 23 जून 1954 को विधवा हुई थी। राज लुम्बा ने खुद अपनी मां के संघर्षों को बहुत करीब से देखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राज लुम्बा के प्रयासों से 21 दिसंबर 2010 को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाने की घोषणा की। आज दुनिया भर में करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो पति की मृत्यु के बाद गरीबी, हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रही हैं। कई समाजों में तो आज भी उन्हें अपशगुन माना जाता है या धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। श्रोताओं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस रूढ़िवादी सोच को बदलने का वक्त आ चुका है। जब हम भारत की बात करते हैं तो पुराने समय में विधवाओं की स्थिति बद से बदतर थी, लेकिन राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने सदियों पहले विधवा विवाह और उनके अधिकारों के लिए कानून बनवाए थे। आज सरकार की ओर से कई पेंशन योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि ये महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन श्रोताओं, कानून से ज़्यादा ज़रूरत हमारे नज़रिए को बदलने की है। आज हमें यह समझने की ज़रूरत है कि विधवा होना कोई अभिशाप नहीं है, वे भी सम्मान, गरिमा और एक नई शुरुआत की हकदार हैं, और ये दिन हमें उनके हक, सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर लेते हैं एक और कमर्शियल ब्रेक।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब वक्त हो चला है आज की तिथि विशेष का। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि 23 जून क्यों है महत्वपूर्ण। श्रोताओं, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हुई थी और इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया था। आज की तिथि को सन 1894 में

सन 2008 में प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की थी। गुजरात का रानी का वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था आज की तिथि को सन 2014 में। और अब थोड़ी सी जानकारी उन प्रसिद्ध लोगों के बारे में जो 23 जून को इस दुनिया में आए या जो इस दुनिया से अलविदा कह गए। श्रोताओं, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम भारत के अमर शहीदों में गिना जाता है। उनका जन्म आज की तिथि को सन 1901 में हुआ था। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कहा था, मैं मर नहीं रहा हूं बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म भी आज की तिथि को सन 1934 में हुआ था। उन्होंने सन 1964 में गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की, जो कालांतर में चिपको आंदोलन की मात्र संस्था बनी और बाद में चंडी प्रसाद भट्ट को इस कार्य के लिए 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज पुण्यतिथि है महान शिक्षाविद, चिंतक और साथ ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। उन्हें आज भी एक प्रखर राष्ट्रवादी और कट्टर देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। भारतीय इतिहास में उनकी छवि एक कर्मठ और जूझारू व्यक्तित्व वाले एक ऐसे इंसान की है जो अपनी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी अनेक भारतवासियों के आदर्श और पथ प्रदर्शक हैं। महान मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन भी आज की तिथि को सन 1761 में हुआ था। राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन भी 23 जून को ही सन 1980 में हुआ था। भारत में परिवार नियोजन की पुरुष नसबंदी योजना और देश के आम आदमी की कार कहलाने वाली मारुति 800 को देश में लाने का श्रेय संजय गांधी को ही जाता है। और आज की तिथि को सन 1971 में निधन हुआ था भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पूर्व स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रकाश का। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें 1947 में भारत का प्रथम उच्चायुक्त बनाकर पाकिस्तान भेजा गया था। उन्हें एक अच्छे वक्ता और लेखक के रूप में भी जाना जाता है। तो श्रोताओं, बातें तो हो गई बहुत सारी और यहाँ पर ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

और अब एक नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियों पर। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग की खबर को लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपनी अहम सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, लखनऊ में आग से 15 लोग जिंदा जले। दैनिक जागरण ने छापा है, अवैध इमारत में आग, 15 की मौत। तो वहीं अमर उजाला ने लिखा है, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग, 15 घरों के बुझ गए चिराग। जान बचाने के लिए 4-5 बच्चे नीचे कूदे, सभी गंभीर रूप से घायल, मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल। इमारत में एमिनेशन कोर्स और 12वीं तक के बच्चों की चल रही थी कोचिंग। ये अमर उजाला की ही अगली खबर है, सुरक्षित हॉर्मुज और लेबनान में शांति का खाका तैयार करेंगे अमेरिका और ईरान। स्विट्जरलैंड में पहले दौर की वार्ता खत्म, कार्य योजना पर बनी सहमति। उधर अमर उजाला लिखता है, उद्धव के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल। शिवसेना प्रमुख एकनाथ बोले, पूरा हुआ ऑपरेशन टाइगर। दैनिक जागरण से ये अगली सुर्खी है, नीट यूजी परीक्षा में सेंधमारी, 9 मेडिकल छात्र समेत सोलवर गैंग के 30 सदस्य गिरफ्तार। दैनिक जागरण से ही ये अगली भी खबर है और यह है कि 1.25 लाख का इनामी कुख्यात मुठभेड़ में ढेर, 7 हत्या समेत कई मुकदमों में वांछित था बिहार और पूर्वांचल का लल्लन। अगली खबर है ये हिंदुस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान लिखता है, अमेरिका ने ईरान के तेल पर लगी पाबंदी हटाई, अमेरिका और ईरान अंतिम समझौते के रोड मैप पर राजी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से कीर स्टॉमर ने दिया इस्तीफा, नए नेता के चुने जाने तक बतौर कार्यवाहक पद संभालेंगे। हिंदुस्तान से ही अगली खबर है, पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने पहला बजट पेश किया, महंगाई भत्ता भी बढ़ाया और नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा। और बात अगर खेलों की करें तो सलाह के करिश्माई गोल से मिश्र ने 92 साल में पहली बार जीता फीफा विश्व कप मुकाबला। न्यूजीलैंड को 3-1 से दी शिकस्त, चौथा विश्व कप खेल रहे मिश्र के लिए जिको सलाह और ट्रेजे गुएट ने दागे गोल। तो श्रोताओं, ये थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियां और अब चलते चलते ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के नाम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में हम समाचार आकाशवाणी के लखनऊ, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं।

0: पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6वें व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Barma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Award during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
7: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
6: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
7: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय हर कदम हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
6: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
7: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi itna fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
6: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल प्रेजेंट द पद्मा अवार्ड्स ड्यूरिंग द सेकेंड सिविल इन्वेस्टिशर सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन दिस इवनिंग। Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
0: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
6: New Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashwani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.
8: I find the idea of a human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
9: Designed many equipment for measurement of materials, materials actually, characterization of the materials like resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves at a very, very low cost.
10: मी 10-12 वर्षापासून मी तर शिकायला लागलो पण आता मला इकडं व्यवसाय नाही.
11: I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
12: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me he should become a doctor or do some research in this field.

0: The programs will be broadcast today on 100.1 Akashwani Gold from 9:10 a.m. onwards. They can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Uttar Pradesh government has suspended 4 state government officials in connection with the Lucknow fire incident, which claimed lives of 15 students. The state police has registered a case against 6 individuals and arrested 4 accused persons last night. More from our correspondent.
1: 4 officials from Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended following directives from Chief Minister Yogi Adityanath. Aliganj Police has registered an FIR under relevant sections of the BNS and the Uttar Pradesh Fire Service Act against 6 named accused and other responsible persons. State government has ordered a high-level inquiry into the fire incident. A special investigation team, SIT, was formed to investigate the incident and its members will submit their report within 7 days. At least 15 people, mostly students, aged 16 to 25, died in tragic fire yesterday afternoon. The fire broke out at an animation coaching center operating above a shop in the Purania area of Aliganj, triggering panic among students. 9 students were injured and have been admitted to King George Medical University, Lucknow. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: 4 cargo ships carrying shipments of urea, diammonium phosphate, DAP and sulfur are heading towards Indian ports after successfully crossing the Strait of Hormuz. These vessels are on their way to designated ports across the country, including Krishnapatnam and Kakinara ports in Andhra Pradesh, Paradip Port in Odisha and Mundra Port in Gujarat. Chemicals and Fertilizers Ministry says that these fresh imports will immediately offload to supplement the nation's existing fertilizer buffers and secure ongoing agricultural requirements. The ministry says that the country's cumulative fertilizer stock position stands at a robust 196 lakh tons compared to 168 lakh tons during the corresponding period last year. The Indian Embassy in Doha has announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in Sunday night's Ras Laffan LNG explosion. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has expressed grief over the loss of lives and injuries, including those of Indian nationals. In a social media post, Dr. Jayashankar said that the Indian Embassy in Doha continues to be in touch with Qatari authorities and is reaching out to render assistance to the families of Indian nationals affected by the tragedy. At least 13 people have been killed and 66 injured after an explosion at Qatar's largest gas facility. National Security Advisor Ajit Doval held talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi, focusing on key aspects of bilateral engagement, including progress and normalization of the ties between the two countries. The talks were held on the sidelines of the ongoing 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi yesterday. In the meeting, Mr. Doval underlined that stable, predictable and constructive bilateral relations will contribute to building trust and better understanding between the two sides. External Affairs Ministry spokesman Ranjit Jaiswal said the two sides reviewed recent developments in bilateral relations and noted progress towards gradual normalization. Star shuttlers Lakshya Sen and Tanvi Sharma will lead India's challenge at the US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. World number 14 Lakshya Sen, seeded second, will take on Belgium's Julien Karagji in the opening round of the men's singles event. Former World Championships silver medalist Kidambi Srikanth, seeded fifth, will face Chinese Taipei's Liao Zhuofu in his first round match. In women's singles, India has a strong contingent of 7 players in the main draw, led by fifth seed Tanvi Sharma and sixth seed Devika Sihag. 17-year-old Tanvi will open her campaign against Germany's Yvonne Lee. In the opening match of the London round of the FIH Pro League, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. The head-to-head record over the last 10 years heavily favours India, who remain undefeated across 17 matches with 15 wins and 2 draws. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 2 days. IMD says that heavy rainfall conditions are also expected over Bihar, Arunachal Pradesh, coastal Karnataka, Madhya Maharashtra, Goa, Odisha, Telangana, Kerala and northeastern parts of the country today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
2: Thank you, Sunil. The blaze in a building in Lucknow and the death of Indians in Qatar LNG hub blast are the top stories in most dailies today. Keir Starmer resigning from the Prime Ministership of the United Kingdom appears on the front page of newspapers. Under pressure, Starmer quits as PM. Sixth Brexit in UK in 10 years, headlines the Times of India. Fresh power shift in UK as Starmer quits, writes in the Sun Times. US-Iran forged six-day roadmap to final deal, reads the headline in the Tribune. The US has temporarily lifted curbs on Iranian oil sales and dollar-denominated payments, writes the paper. The Indian Cybercrime Coordination Centre of the Ministry of Home Affairs has sounded alarm over a new cyber fraud known as Boss Scam or CEO Impersonation Fraud, reports the Pioneer. An engineer from Rajasthan used artificial intelligence to hack into the Rajasthan Public Service Commission portal and delete his competition for a government job, writes the Indian Express, highlighting the misuse of AI platforms. And finally, to enhance ease of commuting and strengthen availability of amenities, the NHAI is developing vehicle repair and puncture service facilities along national highways and expressways, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی معتبر اور بھروسے مند عالمی طاقت بننے میں ملک مقدم کے اصول کا اہم رول رہا ہے. نئی دلی میں ایک پرائیویٹ میڈیا ہاؤس کے زیر اہتمام ایک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران ملک کی کامیابیاں بھروسے، استحکام اور عالمی سطح پر وسیع تر بہبود کے تئیں عہد کی بدولت حاصل ہوئی ہیں.
4: بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے، ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے، اور بھارت رائزنگ پاور کے ساتھ ساتھ سپر پاور تک لے گئے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بھارت ریلائبل پاور ہے. میں ابھی دو تین دن پہلے جی سمٹ سے لوٹا ہوں اور دنیا کا ہر نیتا، ہر دیش اس بات کو بھلی بھانتی سمجھتا ہے کہ آج کے بھارت کے لیے نیشن فرسٹ ہی سب سے بڑا منتر ہے، سب سے بڑا سدھانت ہے.
3: جی سیون سربراہ کانفرنس میں حالیہ شرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ عالمی رہنماؤں نے ملک کے مفادات کو مقدم رکھنے کے تئیں بھارت کی پختہ عزم کو تسلیم کیا ہے، اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کا ملک کی پالیسیاں اور ترقیاتی ایجنڈا طے کرنے میں اہم رول رہا ہے. سرکار کی گزشتہ 12 سال کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سوچھ بھارت، میک ان انڈیا، کھادی کے فروغ اور مقامی اشیاء کے لیے حمایت جیسے اقدامات اس لیے کامیاب ہو سکے کہ لوگوں نے ملک کی تعمیر کے جذبے کو اپنایا.
4: پچھلے 12 برسوں کے جو بھی سدھیاں دیش کی رہی ہیں ان کے مول میں اگر آپ تراجو سے تولو گے ہر نرنے، ہر قدم، ہر پریاس، ان کے مول میں راشٹر پرتھم کی بھاونا ہی کیندر میں ہے. سوچھ بھارت ابھیان سے لے کر میک ان انڈیا، کھادی خریدنے پر زور، ستھانیہ وستویں خریدنے پر زور، یہ سارے انیشیٹو اس لیے سفل ہوئے کیونکہ دیش کی جنتا نے دیش کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے اپنا کرتویہ نبھایا. دیش کے ناگرکوں کو میں سلام کرتا ہوں.
3: جناب مودی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں تقریباً 25 کروڑ افراد غربت سے باہر آئے ہیں، جس سے ایک نیا بڑا متوسط طبقہ ابھرا ہے اور اقتصادی سرگرمیوں کو تقویت ملی ہے.
4: 25 کروڑ لوگ غریبی سے باہر نکلے ہیں، نیو مڈل کلاس میں آئے ہیں، تو اس کا فائدہ کیول ان پریواروں تک نہیں رہتا بلکہ مڈل کلاس کا بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیا کنزیومر ہے جو اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے، اسے الٹیمیٹلی مڈل کلاس کے لیے اوسر بنتے ہیں. یعنی غریبی کم ہونا کیول ویلفیئر کا ہی وشے نہیں ہے، یہ اوسروں کے وستار کی گاتھا ہے، نئی ایسپریشن کی پریرنا ہے.
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران پدم ایوارڈز 2026 عطا کریں گی. پدم ایوارڈز 3 زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری میں عطا کیے جاتے ہیں اور ملک کے اعلی ترین شہری اعزازات میں شامل ہیں. آج منعقد ہونے والی اس تقریب میں صدر جمہوریہ 65 پدم ایوارڈز عطا کریں گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
5: اس سال حکومت نے کل 131 پدم ایوارڈ کا اعلان کیا ہے. ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز شامل ہیں. ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں 19 خواتین شامل ہیں اور 16 افراد کو بعد از مرگ یہ ایوارڈز دیے جائیں گے. ٹینس کے سرکردہ سابق کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی، فلم گلوکارہ الکا یاگنک اور کرکٹ کھلاڑی روہت شرما ان 56 شخصیات میں شامل ہیں جنہیں صدر جمہوریہ آج پدم ایوارڈ سے نوازیں گی. ان ایوارڈز کی شروعات 1954 میں کی گئی تھی اور ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر ان کا اعلان کیا جاتا ہے. مذکورہ ایوارڈز غیر معمولی کام کے اعتراف میں تفویض کیے جاتے ہیں اور آرٹ، سماجی کام، عوامی امور، سائنس، انجینئرنگ، تجارت و صنعت، ادویہ، ادب و تعلیم، کھیل، سول سروس جیسے متعدد شعبوں میں یہ ایوارڈز عطا کیے جاتے ہیں. آکاشوانی نیوز دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
3: آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آکاشوانی پر پیپلز پدما کی سیریز کے تحت خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے. اس سیریز کے تحت پدم ایوارڈز یافتہ شخصیات کی زندگی اور خدمات پر مبنی ایک بصیرت افروز پروگرام پیش کیا جاتا ہے.
6: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
7: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
3: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कुरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
8: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी, जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
3: ये खबरनामा आकाशवाणी से नष्ट किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मस्कुरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मजबूत करने और किसानों मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमूई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा जरई जरूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने ये जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमू स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ्त समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर ये बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहिमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारत खाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुक्काम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस एलएनजी की प्रोसेसिंग के मकाम पर ये तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासर नहीं होंगी। यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल जुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
5: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से अवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम और सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की दो रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खुसूसियत के साथ शाये किया है।
3: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
9: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आजकल के इस व्हाट्सएप और इमोजी के दौर में क्या कभी किसी ने आपके लिए अपने हाथों से कभी खत लिखा है? वो कागज़ पर बिखरी हुई दिलों की दास्तां। खैर वो सिलसिला अब ज़रा कम सा हो गया है, लेकिन चलिए आपको पहुंचाते हैं उसी दौर में और सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म संगम से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, और संगीत है शंकर जयकिशन का।

मोहम्मद रफ़ी साहब को अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगम में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। अगले गीत से पहले ये संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
2: फसा! अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और मैं हूं आपके साथ राजवीर। जिंदगी के सफर में जब कोई हम सफर मिल जाता है, पतझड़ का मौसम भी पल में बहार बन जाता है। रोक ना पाएगी ये दुनिया अब हमारी राहों को, जब दिल से दिल का कोई अटूट रिश्ता जुड़ जाता है। जहां श्रोताओं, जब दिल में प्यार हो और हाथ में किसी का हाथ, तो रास्ते

अपने आप आसान हो जाते हैं। और जब बात सच्चे हम सफ़र की हो तो किशोरदा और लता जी की आवाज़ के बिना हर बात अधूरी सी लगती है। देवानंद साहब की वो सदाबहार मुस्कान और वहीदा रहमान जी की सादगी। तो चलिए अपनी यादों की गाड़ी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और सुनते हैं फिल्म गाइड से ये खूबसूरत सा नगमा।

श्रोताओं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड का यह नगमा। शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत एसडी बर्मन का। श्रोताओं, जब दिल गाता है तो जिंदगी सच में खूबसूरत हो ही जाती है, लेकिन दोस्तों, मोहब्बत के सफर में हमेशा रास्ते सीधे नहीं होते। कभी कभी मोड़ ऐसे भी आते हैं जहां दूरियां मजबूरी बन जाती है। पर क्या दूर होने का मतलब नफरत करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ रिश्ते अधूरे छूटकर भी खूबसूरत होते हैं। इसी कश्मकश को बयां करती हुई ये चंद लाइनें हैं। न तुम शिकवा करो हमसे, न हम तुमको गुनहगार ठहराएं। न तुम शिकवा करो हमसे, न हम तुमको गुनहगार ठहराएं। जो मोड़ तकदीर ने दिया है, चलो उसे हंसकर अपनाएं। मोहब्बत का अधूरा रहना भी एक खास बात है शायद, कि मुकद्दर ना सही पर यादों में तो हम मुस्कुराएं। जी हाँ, साहिर लुधियानवी साहब के लिखे वो अमर बोल, जो हर उस दिल की दास्तां हैं जिसने कभी सच्चे दिल से किसी को चाहा हो। जब रिश्ते का बोझ बढ़ने लगे तो उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही बेहतर होता है। महेंद्र कपूर जी की मखमली और दर्द भरी आवाज, रवि जी का संगीत और स्क्रीन पर सुनील दत्त और माला सिन्हा जी का वो लाजवाब अंदाज। आइए सुनते हैं फिल्म गुमराह से ये सदाबहार नगमा।

क्या बात है श्रोताओं, इस गीत ने तो थोड़ा भावुक कर दिया, लेकिन दोस्तों गोल्डन हिट्स पर उदासी की नो एंट्री है। जब दिल की धड़कनें थोड़ा धीमी होने लगें तो आर डी बर्मन साहब का म्यूज़िक और शम्मी कपूर साहब का स्टाइल ही काम आता है। तो चलिए अपने मूड को एकदम रॉकिंग बनाते हैं और माहौल में थोड़ा सा रोमांस और बहुत सारा रॉक एंड रोल घोलते हैं। इस कड़कड़ाते जोश के नाम ये चंद लाइनें, नजरें मिली तो दिल मचलने लगा, नजरें मिली तो दिल मचलने लगा, हुस्न का जादू हर तरफ चलने लगा, रोक सको तो रोक लो धड़कनों को अपनी, क्योंकि अब इश्क का ये शमा जलने लगा।

0: चंदन का एहसास।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जिसको हमने लिया है फिल्म ज्वेल थीफ से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, भूपिंदर और साथियों की। नजर में सस्पेंस है और दिल में कोई राज गहरा है, खामोश होठों पर आज छुपा हुआ एक पहरा है। खुल जाएगा वो पर्दा जो आज दरमिया है, धड़कने थाम कर बैठो क्योंकि हुस्न का जादू अब ठहरा है।

लता मंगेशकर भूपेंद्र सिंह और साथियों के गाए फिल्म जल थीफ के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को हैं, कुछ क्षणों में जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। योग प्रशिक्षक शकिन गुप्ता, सुनीता कुशवाहा ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। योग सप्ताह के तहत 18 जून को विजय नगर पक्षी विहार, 19 जून को जैन तीर्थंकर मंदिर तथा 20 जून को आधारशिला वृद्धाश्रम एवं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर योग किया। योग शिविर में शामिल 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और आज विश्व में 170 से अधिक देशों में लोग योग अपना रहे हैं।
3: इस बार जो थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए, वो मंदिरों में भजन पूजन रामायण गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जब तक किए कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास नित्य करें, ताकि हम करेंगे वृद्ध जन तो हमारे बच्चे नाती पोते सब उसको देख करके करेंगे और चारों तरफ जो है एक निरोग का जो वातावरण है वो तो कायम होगा।
2: उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्ध जनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है और योग के माध्यम से बुजुर्ग न केवल निरोगी रह सकते हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से महोबा में नया जिला विकास प्रबंधक कार्यालय स्थापित कर दिया है। इससे अब जिले में कृषि व ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अभी तक हमीरपुर के जिला विकास कार्यालय की ओर से महोबा जिले में नाबार्ड की गतिविधियां संचालित होती थीं। महोबा की विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने यह कार्यालय खोला है, ताकि बेहतर पहुँच हितधारकों के साथ निकट समन्वय स्थापित हो सके। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर पुनीत कुमार ने बताया कि नाबार्ड पहले से ही महोबा में कई योजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, किसान समूह, वाटर सेड, विकास व आजीविका संवर्धन शामिल हैं। अब ऋण प्रवाह में सुधार होगा और जनपद के ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब तक मोरंग और गिट्टी के लिए पहचान रखने वाला महोबा जनपद जल्द ही जिरकोनियम जैसे बहुमूल्य खनिज के लिए भी जाना जाएगा। हरपालपुर और महोबकंठ क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले जिरकोनियम भंडार की पुष्टि हुई है। इसके खनन का लाइसेंस बंगाल की माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को दिया गया है। जिरकोनियम का उपयोग दंत चिकित्सा, आभूषण निर्माण, रासायनिक उद्योगों और उच्च तापमान वाले संयंत्रों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस खनिज का भंडार मिला है। इससे महोबा को नई पहचान मिलेगी। इसके खनन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही खनन और उससे जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ेगा। महोबा देश के महत्वपूर्ण खनिज मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिरकोनियम उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश अब उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के बाद देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत महोबा जिले में प्याज लहसुन के आधुनिक भंडार गृह बनाए जाएंगे। इन्हें खास तौर पर बांस और टीन से तैयार किया जाएगा। यह सभी प्राकृतिक तरीके से बनेंगे। सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान देगी, ताकि पैदावार सुरक्षित रहे और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हो। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब 500 हेक्टेयर में प्याज और 200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। हर साल भंडारण न होने से 10-15% फसल बर्बाद हो जाती है। नए भंडार गृह बनाने से किसान अपनी उपज रोककर अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी देगी। योजना अंतर्गत कुल इकाई लागत का 50% या अधिकतम 30 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 13 साल बाद गोरखगिरी पहुंचे सीएम ने यहां रोपवे बनाने और इसे एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप मिसाइलों से पाकिस्तान और दुश्मन थर्रा रहा और यहां के देसावरी पान को पहचान और बीड़ा के जरिए क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अर्जुन सहायक परियोजना केन बेतवा लिंक और हर घर नल योजना का जिक्र किया, जिसने बुंदेलखंड की बहनों को पानी के संकट से मुक्ति दिलाई। महोबा जिले में शिक्षा और ज्ञान वर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सदर विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर एवं जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने संयुक्त रूप से राठ रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय में 5 स्मार्ट लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ किया।
1: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन श्रीवास्तव का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार के 12 वर्ष सफल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान और जश्न मना रही है। इस अवसर पर भाजपा ने सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताया है। इस क्रम में भाजपा देश भर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित कर रही है। सरकार की इन बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए पार्टी द्वारा 5 विशेष बुकलेट भी जारी की गई है। पार्टी का संकल्प है कि इन नीतियों के आधार बनाकर साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विकास खंड परिसर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी ने सभी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद व विधायक ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया, साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों में साझा की।
5: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी विकास खंडों पे केंद्र सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और एक स्वास्थ्य शिविर 14 जून से 16 जून तक भी लगाया गया।
4: जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित हिंदू भवन में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर 55 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित हिंदू संगठन के लोग व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना भी की। जनपद सिद्धार्थनगर की थाना सोरतगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है कि अपराध व अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिषेक महाजन के नेतृत्व में जिले की पुलिस व सहयोगी पुलिस टीम सक्रिय है। सोरतगढ़ थाना अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, SI संतोष यादव, मैं पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर गंचौरा तालाब के पास एक युवक को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रुपए नगद बरामद किया। जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा का भव्य उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वल और माल्यार्पण किया। इसके साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति की गयी, जिसकी मुख्य अतिथि द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गयी। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बघौली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्व मंत्री विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के द्वारा 12 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा और बताया गया कि किस प्रकार से इन 12 सालों में केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार विकास के कार्य किए गए। सिद्धार्थनगर जिले में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बांसी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका तथा आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन कर आपात स्थिति से त्वरित कार्रवाई की तैयारियों का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए इन सीसीटीवी कैमरों और ककराहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर अस्थायी कमरा और शौचालय का निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:26 हो रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए नीलम अग्रवाल के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं नीलम अग्रवाल के गाए रोहिलखंडी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं नीलम अग्रवाल के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का एक और रुहेलखंडी लोकगीत नीलम अग्रवाल के स्वर में।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं नीलम अग्रवाल के गाए रुहेलखंडी लोकगीत, और यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हाँ, आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत खेल दर्पण कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी अल्मोड़ा की। रात 9:30 पर आप सुनेंगे एक परिचर्चा जिसका विषय रहेगा पर्यावरण बनाम विकास। प्रतिभागी होंगे ताजवीर सिंह, विक्रांत शर्मा, सूर्यमणि रघुवंशी और परिचर्चा का संचालन करेंगे शोभित शर्मा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजे गए फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम

0: इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, सबसे पहले ऊपर अपना नाम और पता, उसके बाद अपना फरमाइश और फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखकर के भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर। और नेहा, आप जो गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं, वो गीत हमने लिया है फिल्म बेताब से। इसमें आवाज़ है शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी का ये गीत है और संगीत है आर डी बर्मन का। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं ग्राम नंगला उभन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत और इनके परिवार के सदस्य।
1: जी हाँ, और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी की।
0: मोहल्ला नादे हिंद नजीबाबाद से फरमाइश की है अनिता रानी वर्मा, गीता रानी वर्मा, नेहा वर्मा, नैना वर्मा, मेघा वर्मा, अमित वर्मा, सुरेंद्र और वीरेंद्र वर्मा ने।
1: मोहल्ला हलवाइया शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर।
0: जी हाँ, और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश की है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने।
1: पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हमें मैसेज कर रहे हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।
0: और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम नजीमपुर तहसील नजीबाबाद जनपद बिजनौर से योगेश कुमार, उमेश रानी और सुखवीर सिंह की ओर से।
1: गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता।
0: ग्राम नंगलोबन नजीबाबाद से अगला पत्र हमें मिला है आशुतोष चौहान, शिवा चौहान, हिमांशी, मोनी और चीनी का।
1: नाज पैलेश अजमेर शरीफ से हमें मैसेज कर रहे हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। एक और मैसेज हमारे पास आया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी और इनके सभी साथी।
0: और ये मैसेज हमें मिला है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना की ओर से।
1: अगला मैसेज हमारे पास आया है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का।
0: और इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी।
1: ये एक और मैसेज हमें मिला है मंसूरी रोड लिसनर क्लब से बाजार मुंगी सारपुर से, लिखने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।
0: जी हाँ, और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। तो पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर शब्बीर कुमार की आवाज़ में फिल्म बेताब का ये गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म बेताब का एक गीत जिसे आवाज़ दी शब्बीर कुमार ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत आर डी बर्मन का। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब जिस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास हमारे श्रोताओं ने भेजी है उस फिल्म का नाम है प्रोफेसर। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी का गीत है और संगीत है शंकर जयकिशन का। और ख्वाहिश और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की।
1: इस गीत की पहली फरमाइश हमें मिली है कंवर कलोनी बढ़वा से, जिला खरगोन MP से। लिखने वाले हैं प्रमीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है करणवीर हाउस भूचो कैचिया बटिंडा पंजाब से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत।
1: ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, साइना महवेश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर और इनके सभी साथी।
0: ये फरमाइश हमें मिली है शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी की। आपने हमें मैसेज किया है गंज डुंडवारा से।
1: ये एक और मैसेज हमें मिला है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण संस्कृति और पौरुष का। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल।
0: गांव और पोस्ट राहुल नंगली से हमारे श्रोता हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान।
1: बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई और बागरी।
0: ये मैसेज हमारे पास आया है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बाबूलाल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पुराई खुशदिल परिवार।
1: फजिल का पंजाब से हैं भारत भूषण, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल, शालिनी, टिवांशी और इनके सभी साथी।
0: फरमाइश कर रहे हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन माल्यान सरधना मेरठ से।
1: अगला मैसेज हमें मिला है जगदीश धाकड़ का, इनके साथ हैं श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, रतलाम MP से।
0: गांव गदरोना डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से फरमाइश की है मदन गिरी, विमला गिरी, बलराम, भरत, सोनिया, मधु, रमन और दिव्य गिरी ने।
1: गमहरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बाबुरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मराहू और देवंती, चकिया बाजार चंदौली से हैं सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी की ओर से।
1: सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं विनय मोहन, मीनाक्षी, प्लोमा व डॉक्टर ईशानी।
0: और इसी गीत की फरमाइश हमें कर भेजी है गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदरा, विमला गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदरा। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है,
1: यही गीत सुनना चाहते हैं कस्बा भोजपुर मुरादाबाद से नरेश कुमार कश्यप, रविन्द्र कुमार कश्यप, शिवानी, स्वाति, मानसी और इनके साथी।
0: तो पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म प्रोफेसर का ये गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और हमारे जो भी श्रोता साथ इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बता दे रहे हैं।
2: जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का कोई भी गीत।
1: और नेहा, जो फरमाइश हमारे पास आई है अगले गीत के लिए, वो गीत है फिल्म जहर से। आवाज श्रेया घोषाल की है,
2: और
1: सईद कादरी की शब्द रचना है और संगीत है रूप कुमार राठौर का। और इस गीत को सुनने के हमारे जो श्रोता है ख्वाहिशमंद हैं, वो हैं ग्राम धनसनी, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर से मुनेश कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति, महेंद्र कुमार प्रजापति, मुकेश प्रजापति, राजू राजकुमार और राधे श्याम।
2: जी हाँ, इसी गीत को सुनना चाहते हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू।
1: जी हाँ श्रोताओं, और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू की ओर से।
2: मजनू का टीला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग, आकांक्षा और माही मलिक।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है।
2: जी हाँ, ये अगला मैसेज हमारे पास
1: कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय का। दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से फरमाइश कर रहे हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।
2: ये मैसेज हमारे पास आया है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का।
1: ये फरमाइश है, ये फरमाइश हमें मिली है फुलांग निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल की ओर से।
2: अगला मैसेज हमें आया है निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत और इनके सभी साथी।
1: इसी गीत को सुनना चाहे गोल्डन रेडियो श्रोता संग राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा और आर्यन वर्मा ने।
2: शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।
1: तो नेहा, क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवा दिया जाए उनकी पसंद का ये गीत जिसको हमने लिया है फिल्म जहर से।
2: जी हाँ बिल्कुल।

0: अभी आपने सुना श्रेया घोषाल को फिल्म जहर में सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया रूप कुमार राठौर ने। और अब कार्यक्रम में अगला गीत जो कि हमने लिया है फिल्म मासूम से, आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की, गीत और संगीत है आनंद राज आनंद का, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं।
1: जी हाँ, इस गीत को सुनना चाहते हैं परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा मोहम्मद, असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से हैं, आफरीन खान और जमीर खान।
0: और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से। श्रोता हैं जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता।
1: पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का हमें मैसेज कर रहे हैं ज्योति नगर नोखा राजस्थान से।
0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है, ये मैसेज हमारे पास आया है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई सिल्लोड़ जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से। अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के की ओर से।
1: नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमें मैसेज लिख रहे हैं अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे।
0: और ये मैसेज हमें मिला है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत की ओर से।
1: पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है बिहार स्टेट से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी, मोहम्मद सलीम आसमा कुरैशी और मोहम्मद कलीम आसमा कुरैशी की ओर से।
1: अगला मैसेज हमें मिला है छड़िया पोखर डुमराव से, फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, अस्मा वली बेलदार, सोनम बिहार भवन दिल्ली से हैं, सरफुद्दीन कुटारिया, उलाह वली कुटारिया।
0: जी हाँ, और अगला मैसेज हमारे पास आया है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार पोडाना की ओर से। तो पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर उदित नारायण और साथियों की आवाजों में फिल्म मासूम का ये गीत।

0: नारायण की आवाज़ में ये गीत है। गीत के बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का है। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है।
1: ये फरमाइश हमारे पास आई है जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर की ओर से।
0: गांव जेवर हिसार से हैं वीरेंद्र, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज और इनके सभी साथी।
1: ये मैसेज हमें मिला है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा की ओर से।
0: रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला मैसेज हमें मिला है
1: नूर महल महसोल सीतामणि बिहार से, और ये हमारे श्रोता हैं मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज।
0: जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर।
1: और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा की ओर से। और ये फरमाइश है
0: पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश की।
1: और ये फरमाइश है गमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार की।
0: अगला मैसेज हमें मिला है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का।
1: जामा मस्जिद रोड सनावत से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं हाजी इस्तहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी।
0: अगला मैसेज हमें मिला है मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और सभी मित्रगण।
1: तो पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म राज का ये गीत।

0: अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म राज में समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम शर्वण ने। और अब जो कार्यक्रम का अगला गीत वो हमने लिया है फिल्म परदेश से। आवाजें हैं कुमार सानू अलका याग्निक की, आनंद बख्शी का गीत है और संगीत है नदीम शर्वण का। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे जो श्रोता हैं वो हैं
1: सरगुजा मैनपाट से हैं रूबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा और रेशमा थापा। जुटमिल रायगढ़ से हैं डब्लू बेलदार, आदिबा बेलदार, सफरुद्दीन और आसमा बेलदार।
0: ये मैसेज हमें मिला है शब्बीर कुमार, ये मैसेज हमारे पास आया है मगनपुर से। हमारे श्रोता हैं बेनजीर बेबी और अमजद अब्बास। और इसी गीत की फरमाइश हमें कर भेजी है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने।
1: अगला मैसेज हमें मिला है शास्त्री नगर बीड शहर से किसन सपल सपकाल, आशा, सोनिया, सईराज और विशाल सपकाल का।
0: ये मैसेज हमारे पास आया है कस्बा उगहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता की ओर से।
1: अगला मैसेज हमें मिला है, ये मैसेज हमारे पास पहले भी दो तीन बार आ चुका
0: बिल्कुल
1: है।
0: हम अपने श्रोताओं से इतनी बार कहते हैं कि जो एक बार मैसेज कर दिया करें तो प्लीज दोबारा ना करें। और अगला मैसेज है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार की ओर से। और इसी गीत को सुनना चाहा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने। और अगला मैसेज हमारे पास आया है
1: नई बस्ती गंज डुंडवारा से है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी।
0: फरमाइश कर रहे हैं सैयद खलील, मुबीन भाई, एमडी यासीन, शेख चांद, फारूक फूलवाले, मूसा करीम, नेहरू पार्क, निजामाबाद, तेलंगाना से।
1: अगला मैसेज हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला का।
0: अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश फरमाइश कर रहे हैं ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से।
1: पारसमणि रेडियो श्रोता संघ से हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबूराम जायसवाल, बाबूराम जयपाल।
0: और ये मैसेज हमें मिला है राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार की ओर से।
1: अगला मैसेज है कोल सिटी बरका काना से हैं अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम निप्पी और मोहम्मद अफजल मलिक।
0: चलिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म परदेश का ये गीत।

0: अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म परदेश में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया नदीम शर्मा ने। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत जिसको हमने लिया है फिल्म मोहब्बतें से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, उद्भव और शाहरुख खान की। आनंद बख्शी का ये गीत है और संगीत है जतिन ललित का। और इस गीत को सुनना चाहा है
1: कुंभार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष और पांडुरंग कुंभार।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का।
1: अगला मैसेज है सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और आदिब का, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से।
0: ये फरमाइश हमें कर भेजी है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरे ही संघई परिवार ने।
1: बुल्ढाना बडशिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुल्ढाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार।
0: ये मैसेज हमारे पास आया दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की ओर से।
1: अगला मैसेज है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का।
0: ये मैसेज है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की ओर से।
1: जलालाबाद वेस्ट से हमें मैसेज कर रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।
0: ये मैसेज है पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू का।
1: अगला मैसेज है अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और इनके सभी साथी।
0: ये फरमाइश हमें मिली है गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी की ओर से। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता हैं
1: मोहम्मद ताहिर और ये लिख रहे हैं
0: नगर पंचायत बहारपुर से बिजनौर से इन्होंने हमें मैसेज किया है। और ये फरमाइश है दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू की। इन्होंने हमें मैसेज लिखा है, पत्र भेजा है रघुवीर नगर दिल्ली से। वो गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनद और गुरशाबाद।
1: सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग।
0: और ये मैसेज हमें मिला है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूल और पी बी कुलथे की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा है वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान ने।
1: अगला मैसेज है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन और ये हमें मैसेज लिख रहे हैं बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से। चंडीगढ़ से इनके साथ हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना।
0: और इसी गीत की फरमाइश हमें कल भेजी है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर ने।
1: तेलंगाना से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा अजमीन।

0: कठुआ बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशबद सिंह राहुल।
1: तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लता मंगेशकर उद्भव और शाहरुख खान की आवाजों में फिल्म मोहब्बतें का ये गीत।

0: आया है।
1: कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष।
0: अच्छा, और इसी गीत की फरमाइश है गंज डूडवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और

0: ये मैसेज हमारे पास आया है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से का।
1: नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमानाज असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी।
0: सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।
1: अगला मैसेज है श्री गणेश अविका आर्ट रामपुर से, डी अशोक कुंभार, अविका जीविका
0: सानू कुंभार और अर्चना कुंभार का। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं, इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है नगीना से अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, गीत अरोड़ा, सहज अरोड़ा, कनिका अरोड़ा और परिवार के सदस्यों ने। ये मैसेज हमें भेजा है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। ये मैसेज कई बार हमारे सामने आ चुका है। मोहल्ला मज़ार चांद शाम मियाँ रामपुर से जो फरमाइश की है वो की है मोहम्मद रमज़ान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता और आशु भाई ने। और एक और मैसेज हमें मिला है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से, मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नाज और सरिता गौतम की ओर से। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब आगे के कार्यक्रमों को लेकर स्टूडियोज में मौजूद हैं नेहा शर्मा।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजे हैं श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपकी सखी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम का पहला गीत हमारे श्रोताओं ने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म मृत्युदंड से। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं।

लव आजकल 2। इस फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना अरिजीत की आवाज़ में। श्रोताओं, इस गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत था प्रीतम का। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चलते चलते का ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी है अभिजीत और अलका याग्निक ने। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत है और संगीत जतिन ललित का है।

चलते चलते इस फिल्म का एक गीत अभी हमारे श्रोताओं ने सुना, अभिजीत और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। श्रोताओं, प्यार जब दिल में अपनी जगह बना लेता है ना, तो दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। फिर ना किसी मंजिल की फिक्र रहती है और ना ही किसी दूरी का एहसास होता है। बस दिल हर पल उसी की यादों में खोया रहता है, और इन्हीं खूबसूरत एहसासों को शब्दों में पिरोता ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बादशाह से। अभिजीत और अलका की युगल आवाज़ों में ये गीत है। जावेद अख्तर और समीर ने इस गीत के बोल लिखे हैं और संगीत अनु मलिक का है।

बादशाह फिल्म का ये गीत हमारे श्रोताओं ने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में। श्रोताओं, जावेद अख्तर और समीर के लिखे बोल थे और संगीत था अनु मलिक का। आइए, वक्त है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। ये गीत हमने लिया है फिल्म गुनाह से। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत है। आनंद बख्शी के लिखे बोल और संगीत है साजिद वाजिद का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्व

0: तत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार

की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।

0: 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी।

0: करेगी इनका तू? हा?
1: क्या करूँगी? गमक कुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
0: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे 4 रोज बाद तेरा ब्याह है और आज

0: विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
2: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान ने बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सकोगे।

0: थी, बड़े सवाल साल थे। वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम

ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो वो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए। कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या
2: है?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो। चलो
1: चलो
3: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: अभी हमारे

आज रात्रि 10 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी अल्मोड़ा की होगी।

रात्रि 10:30 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हमारे श्रोता सुनेंगे।

आज रात्रि 9:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे पुनः प्रसारित परिचर्चा, जिसका विषय है पर्यावरण बनाम विकास। संचालन शोभित शर्मा का है।

महिला साथी सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत आज दोपहर 1:15 पर, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे आधी आबादी से क्रम में परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। प्रतिभागी हैं निषाद असगर, आकांक्षा राजपूत और रुपेंद्र कौर। संचालन सुनीता नेगी का होगा।

किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा संध्या 6:05 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे बांसमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में डॉक्टर विवेक कुमार यादव से सुवेंद्र सिंह की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय है बासमती धान में खरपतवार नियंत्रण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। कार्यक्रम विविधा में आज आप सुनेंगे रचना कुमारी की वार्ता भारत में नारीवाद का विकास। समय रहेगा संध्या 6:45 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मुकेश के स्वर में गजल आज संध्या 7:32 पर। गीत संगीत के कार्यक्रम गीत संध्या का समय रहेगा आज रात्रि 8:00 और 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव

नमस्कार श्रोताओं, सैनिक भाइयों को समर्पित कार्यक्रम सैनिकों के लिए में मैं नेहा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। सैनिक भाइयों, जय हिंद। श्रोताओं, हमारे देश के वीर जवान जो

लीडर फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोताओं, जब अपने दूर होते हैं ना, तो हर छोटी सी खबर भी दिल को सुकून दे जाती है। वो खबर हमें जब मिलती है चिट्ठी के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, तो हमारा दिल खुश हो जाता है। और इसी तरह हमारे सैनिक भाइयों का दिल भी खुश हो जाता होगा। हमारे सैनिक भाइयों के जीवन में भी ऐसे अनगिनत पल आते हैं जब घर की यादें उन्हें मुस्कुराने की वजह देती हैं। श्रोताओं, सैनिकों की ज़िंदगी ऐसी होती है जहाँ उम्मीद, धैर्य और अपनों का प्यार हमेशा साथ चलता है, और हमारे सैनिक भाई अपनी ड्यूटी को, अपने फ़र्ज को सर्वोपरि रखकर हमारे देश की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं।

टैंगो चार्ली, इस फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। श्रोताओं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। वो बस हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। और ज़िंदगी भी हमें अलग अलग रास्तों पर ज़रूर लेकर जाती है, लेकिन यादें हमेशा एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। हर नया दिन, हर नई उम्मीद और हर दिन उम्मीद के पीछे का एक दीवानापन, यही विश्वास कि हाँ, एक दिन आएगा जब हम भी अपने करीबी से मिलेंगे, जब हम भी उससे रूबरू होंगे जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि दूरियाँ चाहे जितनी भी हों, यादों की रोशनी कभी कम नहीं होती और अपनों का प्यार हर सफ़र को आसान बना देता है।

उदित नारायण को अभी हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्म दिल जले में। आप सुन रहे हैं सैनिक भाइयों को समर्पित कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज होती है किसी अपने का साथ और उसका प्यार। सैनिकों का जीवन त्याग, अनुशासन और साहस से भरा होता है, लेकिन इसके साथ साथ दिल में अपने परिवार और दोस्तों के लिए ढेर सारा प्यार भी होता है, और यही प्यार हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत देता है और हर नए दिन को उत्साह से भर देता है, क्योंकि यादें कभी बोझ नहीं बनती, बल्कि वो तो मुस्कुराने की वजह बन जाती हैं। और यही वजह है कि रिश्तों की अहमियत समय के साथ साथ और बढ़ जाती है। कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर से। रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गीत है, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बॉर्डर फिल्म के इसी खूबसूरत से गीत के साथ आज का कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न होता है। वीर जवानों, आपका साहस, आपका समर्पण और आपकी मुस्कान पूरे देश के लिए प्रेरणा है। आप जहां भी रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और यूं ही अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं नेहा शर्मा आप सभी सैनिक भाइयों से विदा लेती हूँ। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सैनिक भाइयों को समर्पित कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम, मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं नेहा शर्मा फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। श्रोताओं, जुल्फों की घटा हो या मुस्कान की चमक, कुछ गीत वक्त के साथ कभी पुराने नहीं होते। वो हर बार सुनने पर उतने ही ताज़ा लगते हैं जितनी पहली बार दिल में उतरते वक्त लगे थे। कुछ ऐसे ही एक खूबसूरत से गीत के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये गीत हमने लिया है फिल्म तीसरी मंजिल से।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ में हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल थे और संगीत था आरडी बर्मन का।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: कार्यक्रम मिडडे मेलोडी सुन रहे हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, प्यार में दिए गए तोहफों

0: www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, प्यार में दिए गए तोहफों

0: कुमार और लता मंगेशकर की, साहिल लुधियानवी ने शब्द रचना की थी और खयाम का संगीत था।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए

प्यार जो है ना, वो सिर्फ एक खूबसूरत लम्हों का नाम नहीं है, बल्कि ये भरोसे, समर्पण और निभाए गए वादों की कहानी है। रिश्ते तब और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब साथ चलने का वादा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो वादा हर परिस्थिति में निभाया भी जाए। आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। गीत है फिल्म जॉनी मेरा नाम से। किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में ये गीत है। राजेंद्र कृष्ण ने बोल लिखे हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। दोपहर के एक बजने को हैं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के एक बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।

कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर

0: 13th of this month, following a request from the Temple Trust after allegations surfaced regarding the misappropriation of donations received at the Ayodhya Ram Temple. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a review meeting in New Delhi in view of the El Nino effect on the weather and its impact on agriculture. The meeting was attended by the agriculture ministers of several states, secretaries, district collectors and officials. Discussions focused on necessary preparations in the event of low rainfall, alternative crop plans and protecting the interests of farmers. Union Minister of State for Minority Affairs and Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, George Kurian, has resigned from the Union Council of Ministers. President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Mr. Kurian with immediate effect. The Enforcement Directorate ED is conducting searches at 18 premises in Chennai, Tiruchirappalli, Coimbatore and Madurai in connection with the alleged teacher recruitment exam manipulation case. The ED said the action is based on an FIR registered by the Central Crime Branch in the year 2017. It added that the police had filed a charge sheet in the case in 2021. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 525 points to 76,570, while the Nifty shed 172 points to 23,931 when reports last came in. Sectorally, metal, IT and banking stocks led the declines, while pharma and healthcare stocks witnessed buying interest. In football, FIFA World Cup, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In another match, Norway defeated Senegal 3-2 in their Group I clash today at the New York Stadium and sealed their progress into the round of 32. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर एक कसीरुल मंजिल इमारत में एक कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 तुलबा की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए केजीएमयू ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। हादसे की इतला मिलते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा छोड़कर सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने जाए वकूअ का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बाद अज़ां उन्होंने जख्मियों से मुलाकात के लिए केजीएमयू का दौरा भी किया। वजीर आला ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को पूरे वाकये की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। जाए वकूअ का मुआयना करने के बाद उन्होंने जख्मियों से मिलने और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए केजीएमयू का दौरा किया। वजीर दिफा ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकात की जाएगी। दरियसना वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर हुकूमत ने वाकये की जांच के लिए दो रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। लखनऊ आतिशजदगी के वाकये में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार किया गया। हमारे नामा निगार ने बताया,
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस फायर ब्रिगेड पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, एसपी सरबरा अखिलेश यादव, बीएसपी सरबरा मायावती और कई दीगर वुजरा ने लखनऊ आतिशजदगी के वाकये को अलमनाक करार दिया है और खानदानों से दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन को कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे शहरी सरमायाकारी तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। हमारे नामा निगार के इत्तला है कि

0: कुल 65 अवार्ड्स आज पेश किए जाएंगे, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 शख्सियत समेत 56 पद्मश्री शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: भारतीय जनसंघ के बानी सदर और अजीम माहिरे तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौमे शहादत के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, आबी बिजली के वजीर स्वतंत्र देव सिंह और दीगर मौजजीन ने उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके की मुनासिबत से उत्तर प्रदेश के महकमे जंगलात ने बड़े पैमाने पर रियासत भर में दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की है। एक पेड़ माँ के नाम के उनवान से इस मुहिम का मकसद माहौलियात के तहफ्फुज़ और रियासत को सब्ज बनाने के बारे में बेदारी पैदा करना है। आज रियासत के तमाम 75 जिला में दरख्त लगाए जा रहे हैं। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए अहल दिलचस्पी रखने वाले आजमीन से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। इस हवाले से जारी करदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 जून 2026 से शुरू होंगी और 20 जुलाई 2026 तक रात 11:59 तक जारी रहेंगी। ख्वाहिशमंद आजमीन हज कमेटी की सरकारी वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शनावास सी की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि हज नशिस्तों की मनसूखी पर भारी जुर्माना होगा, इसलिए आजमीन को मुकम्मल तैयारी और पुख्ता आजम के बाद ही दरख्वास्त देना चाहिए। और रियासत में गर्मी की लहर जारी है। दरियसना कल दोपहर गरज चमक के साथ होने वाली हल्की बारिश ने मशरकी उत्तर प्रदेश के कई जिला बशमूल गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती के रिहायशियों को कुछ राहत पहुंचाई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम महकमा मौसमियात ने दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली की पेशगोई नहीं की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 900

0: नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। और मैं आपकी बहन भावना अरोड़ा एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत। तो चलिए बहनों, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। जी हाँ बहनों, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हम सभी महिलाओं का यह मौलिक अधिकार है कि हमें कार्यस्थल पर सुरक्षा दी जाए। और इसके लिए हमें खुद भी बहुत सारे प्रयास करने होंगे। बहनों, इसी विषय पर आज हम लेकर आए हैं एक परिचर्चा जिसका विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, जिसमें प्रतिभागी कलाकार है निशात असगर जो कि एक एडवोकेट है, आकांक्षा राजपूत एक शिक्षिका, रुपेंद्र कौर भी एक शिक्षिका है। और इस परिचर्चा का संचालन कर रही है हमारी बहन सुनीता नेगी। तो चलिए बहनों, सुनते हैं परिचर्चा।
1: श्रोता बहनों, आज हम सभी देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्र विकास में उनकी उतनी ही भूमिका है जितनी की पुरुषों की है। आज महिला जमीन से लेकर आसमान तक विकास की ऊंचाइयों को छू रही है, जो बहुत गर्व की बात है। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है कि आज के समय में भी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर कुछ इस तरह की अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं जो उनके शोषण के अंतर्गत आती हैं। इसी विषय पर आज बहनों हमने अपने स्टूडियो में एक परिचर्चा का आयोजन किया है जिसका विषय है कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा। और इस परिचर्चा में आज भाग लेने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षिका आकांक्षा राजपूत जी, एडवोकेट निशात असगर और साथ ही हैं अध्यापिका रुपेंद्र कौर जी। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारी आज की परिचर्चा में।
2: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले तो रुपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा से क्या तात्पर्य है?
3: देखिए, जिस स्थान पर कोई व्यक्ति काम करने जाता है उसे कार्यस्थल कहते हैं, जैसे विद्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, हॉस्पिटल, व्यवसायिक, औद्योगिक, विज्ञान, प्रशासन। आपने जैसे पूछा कि किसी प्रकार का उत्पीड़न
1: जी,
3: भेदभाव, अभद्र व्यवहार या डराने धमकाने वाली गतिविधियां,
1: और ये सभी चीजें जो आपने अभी गिनाई हैं, ये कहीं ना कहीं शोषण महिलाओं का होता है इसके अंदर।
3: जी हाँ।
1: और आकांक्षा जी, समाज में एक अध्यापिका जो होती है या अध्यापक हो, उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। आप अपने चारों ओर समाज में क्या देख रही हैं कि महिलाएं आज क्यों असुरक्षित हो रही हैं?
4: जैसे कि हम अपने आसपास देख लें या फिर हम सभी के पास ऐसे साधन हैं जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब पे हम देखते हैं प्रतिदिन कोई ना कोई जो मामला होता है, जो उत्पीड़न का मामला हमारे सामने महिलाओं के प्रति सामने आता है।
1: जी, किस तरह से हम समझें कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है, वो अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित हैं?
4: देखिए, सबसे पहले तो जब भी कार्यस्थल पर जहाँ भी वो काम करती हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी, और साथ ही साथ उनके वेतन को भी समान अधिकार नहीं दिया जाता है।
1: जी, कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता का भी महिलाओं को सामना करना होता है कार्यस्थल पर।
4: आज के समय में तो बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है।
1: जी, आपने कम वेतन की बात की, घरेलू स्तर पर जो महिलाएं काम करती हैं, मेड जिनको कहा जाता है, कई बार उनकी भी ये शिकायत होती है कि उन्हें वेतन उतना नहीं दिया जाता जितना उनसे काम लिया जाता है।
4: बिल्कुल,
1: तो ये भी
4: काम जो उनको वेतन दिया जाता है उससे अधिक मात्रा में काम लिया जाता है,
1: तो कहीं ना कहीं ये भी उनके प्रति शोषण है।
4: बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है उनके प्रति।
1: जी, और ऐसे में वो स्वयं को असुरक्षित भी महसूस करती होंगी।
4: देखिए, जो महिलाएं घर में काम करती हैं, अपना काम हर कोई घर में करता है, तो जो महिलाएं अगर मेड का काम कर रही हैं, आप अपने घर में खुद काम करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि घर में कितना काम होता है। आप उनसे काम तो कराते हैं लेकिन आप उनको वेतन ठीक से नहीं देते हैं।
1: निशात असगर जी, एज ए एडवोकेट, आप क्या देख रही हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं वो कार्यस्थल पर स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? आपके पास तो ऐसे किस्से आते भी होंगे, तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो हम समझ सकते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है जिनके द्वारा कार्यस्थलों पर?

0: ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनको बारे में हम कह सकते हैं कि एक महिला का उत्पीड़न हो रहा है। एक महिला जब कार्यस्थल पर जाती है तो वो भी पुरुष के समान काम करने की इक्वल राइट रखती है।
1: जी, समानता का अधिकार।
0: हाँ, समानता का अधिकार है और इसे हमारा संविधान हमें देता है और इसे कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। अगर आप पावरफुल है या आप बड़ी पोस्ट पे है और आप किसी महिला को परेशान करते हैं किसी भी तरीके से,
1: जी, मानसिक
0: मानसिक
1: या
0: रूप से,
1: शारीरिक।
0: शारीरिक रूप से, या इशारों के तहत भी, या किसी भी तरीके से, तो वो सारी चीजें उत्पीड़न में आती है और आप उसकी शिकायत कर सकती है।
1: जी रुपिंदर जी, परिचर्चा में आगे आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि एक आम महिला, वो कार्यस्थल पर कार्य कर रही है, किसी ऑफिस में हो चाहे घर पर मेड का काम कर रही है, उसके साथ अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो अक्सर हम देखते हैं कि वो शिकायत दर्ज कराने में कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से या किसी भी अन्य रूप से पीछे हट जाती हैं, शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आती हैं। तो ऐसा अक्सर क्यों होता होगा समाज में?
2: देखिए, जैसे एक पारंपरिक सोसाइटी या घर वालों का डर हमें उन्हें आगे नहीं आने देता है। सबसे पहले तो उन्हें यही रहता है कि हमारी इज्जत उन्हें प्यारी होती है, कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे,
1: जी, क्वेश्चन मार्क तो वहीं पर लग जाता है जब होता है लोग क्या कहेंगे।
2: लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले तो यही डर हो जाता है।
1: जी
2: इस वजह से ज्यादातर महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं,
1: जी
2: उन्हें यही चीज का डर रहता है।
1: जी आपने सही बताया कि एक यही डर बहुत बड़ा होता है कि लोग क्या कहेंगे। आकांक्षा जी, और क्या कारण है कि महिलाएं अपने प्रति होने वाले उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे खुलकर नहीं आ पाती हैं?
3: देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या तो समाज ही है। उसके बाद जब महिलाएं खुद नहीं आगे बढ़ना चाहती हैं, और दूसरा रीजन होता है परिवार। अगर महिलाएं सोचती भी हैं आगे बढ़ने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए या अपने आप को सेफ करने के लिए, लेकिन जो उसके परिवार होता है वो उसका साथ नहीं देता है,
1: जी
3: ये भी सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। परिवार ये सोचता है कि जब अगर ये बात सबके सामने आ गई तो जो हमारा सम्मान है ना, जो हमारी इज्जत है समाज में, वो नहीं रहेगी।
1: जी, और कहीं ना कहीं अगर हम ये बात करें कि शिक्षा का भी अभाव।
3: जी, शिक्षा का तो बहुत बड़ा अभाव है। जो आज के टाइम में तो जो है वो सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो इस चीज में आगे नहीं बढ़ते हैं बिल्कुल भी।
1: और अगर एक महिला अशिक्षित है तो कहीं ना कहीं उसे भी एक डर सा रहता है, आत्मविश्वास नहीं होता उसके भीतर कि वो आगे आके अपने लिए लड़ सके, हित के
3: अपने लिए लड़ सके, अपने लिए खड़ी हो सके
1: जी,
3: वो।
1: और एक आवाज उठा सके किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ।
3: जी,
1: तो ये भी कारण है। और निशा जी,
4: जी
1: आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप एज ए एडवोकेट, कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर अगर कोई उत्पीड़न की घटना होती है किसी भी प्रकार का, शारीरिक या मानसिक, तो इस तरह के कानून में कौन से विधेयक हैं जो उन्हें न्याय दिला सकते हैं?
0: बहुत पहले से तो हमारे संविधान में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन साल 2013 में एक एक्ट आया, पॉश एक्ट, जिसके तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटित होती है या किसी भी तरीके का उत्पीड़न किया जाता है तो वो उसके तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
1: थोड़ा संक्षेप में बताइए कि पॉश एक्ट है क्या हमारी श्रोताओं को?
0: देखिए, ये कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
1: इसके तहत कुछ नियम और शर्तें भी हैं?
0: जी जी, इसके तहत कुछ नियम और शर्तें बनाई गई है। देखिए, कोई भी संस्था जिसमें 10 व्यक्तियों से ज्यादा काम करते हैं या उससे ज्यादा काम करते हैं तो उसके अंतर्गत जो उस संगठन का सदस्य है, अध्यक्ष है या जो भी हायर अथॉरिटी है, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो एक आंतरिक समिति का गठन करें जिसमें महिलाएं अपनी हर प्रकार की शिकायतें दर्ज करा सके।
1: जी,
0: और जो कार्यस्थल है वहां से भेदभाव मुक्त और गरिमापूर्ण माहौल बनाया जा सके।
1: जी, आईसीसी संगठन इसको कहा जाता है।
0: जी,
1: समितियां जो निर्माण की जाती
0: जी,
1: है कार्यस्थल पर, है ना, और आईसीसी जो समितियां होती हैं इनके पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये इस तरह के जागरूक कार्यक्रम भी मेरे ख्याल से चलाते हैं।
0: जी है, लेकिन अभी इतना ज्यादा उसको जो जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है तो इसमें थोड़ी सरकार पीछे रह गई है। उस कानून को मेरे अकॉर्डिंग और ज्यादा उसका प्रचार करना चाहिए ताकि ये हर महिलाओं को पता चल सके। और वो जो डर की भावना है, जैसा भी आकांक्षा जी ने कहा था कि जो महिलाओं में डर होता है इस वजह से वो शिकायतें दर्ज नहीं कराती, तो वो डर कम हो, उनको पता चले कि जो मेन एक्यूज है वो नहीं है, वो व्यक्ति है जो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: और डरने की जरूरत महिलाओं को नहीं है, डरने की जरूरत उस व्यक्ति को है जो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है।
1: बिल्कुल। रुपिंदर जी, मुझे लग रहा है कि आप भी कुछ कहना चाहती हैं इस विषय पर।
2: हाँ,
1: तो कहिए।
2: कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी होने पर ना महिलाओं के मन में कई प्रकार के डर और चिंताएं भी आ जाती
1: हैं। बिल्कुल।
2: जैसे उनका यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का डर रहता है, उन्हें मानसिक या शारीरिक शोषण का भय रहता है, भेदभाव या अनुचित व्यवहार की भी चिंता होती है उन्हें, नौकरी खोने या शिकायत करने पर उन्हें रहता है कि हमें किसी प्रकार का किस दंड या हमें कोई प्रताड़ित ना किया जाए, हमें देर तक काम करने या रात में यात्रा के दौरान सुरक्षा की भावना भी उनके मन में रहती है, सम्मान और गरिमा को भी ठेस पहुंचने का भय रहता है उन्हें।
1: अच्छा।
2: और अपनी बात रखने पर सहयोग ना मिलने की भी चिंता सताती है, और कार्यस्थल पर असुरक्षित माहौल के कारण तनाव और आत्मविश्वास में भी कमी आने लगती है।
1: तो रुपिंदर जी, ये आप बता रही हैं कारण कि अगर महिला घर से काम करने के लिए ऑफिस के लिए निकलती है तो उसके मन में कितने प्रकार की चिंताएं चलती हैं कि मेरे साथ कहीं ये ना घट जाए, ये दुर्घटना ना हो जाए, इस प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं, क्योंकि समाज में इस तरह का माहौल अभी नहीं है बिल्कुल कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
2: जी हाँ।
1: तो मानसिक रूप से इस तरह की भावनाओं से भी वो गुजरती है।
2: जी हाँ, उन्हें सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचने का भी भय रहता है।
1: तो ये नेगेटिव पॉइंट आपने गिनाए हैं कि महिलाएं कार्यस्थल पर जाती तो है लेकिन इस तरह की भावनाएं उनके मन में आती हैं,
2: भय रहता है।
1: जी निषाद जी, कहिए।
0: मैं रुपिंदर जी की बात से बिल्कुल एग्री करती हूं, और देखिए जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो उसमें यही देखा जाता है कि जब किसी महिला के साथ इस तरीके की घटना घटित होती है तो पहले तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती किसी को बताने की, क्योंकि उसके मन में डर रहता है कि मैं अगर बताऊंगी तो कोई यकीन करेगा या नहीं करेगा,
1: या मुझे ही दोषी ठहरा।
0: हाँ, मेन रीजन यही होता है कि एक महिला अपने हस्बैंड तक को नहीं बता सकती, क्योंकि उसमें डर होता है कि अगर आज मैंने इनको बताया कि मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है तो हस्बैंड बजाय उस व्यक्ति के शिकायत करने के वो अपनी ही वाइफ को कहता है कि आप रुक जाओ और आप काम मत करो। तो ये जो असुरक्षा है कि मुझे ही रोक लिया जाएगा, कहीं ना कहीं जो लॉस होगा वो मेरा होगा,
1: ये भी बड़ा कारण है
0: ना, ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, फिर सहयोग नहीं मिलता है।
1: बिल्कुल। निषाद जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आकांक्षा जी, आप एक अध्यापिका हैं और बच्चों के भविष्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है टीचर्स का, तो अपने स्तर से स्कूल में स्कूली बच्चों को आप किस तरह से ज्ञान देती हैं कि वो जब भविष्य में समाज में आगे निकल कर आएंगे तो उन बातों को ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें।
3: देखिए, और उनको ये भी बताया जाता है कि उन्हें बड़ों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। देखा जाता है कि अक्सर घर में जो मेड आती हैं काम करने वाली, तो बच्चे उनसे बदतमीजी से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
3: क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ऐसे देखते हैं, उनके माता पिता जो हैं वो बदतमीजी से बोलते हैं, तो उसी तरीके से वो उनसे और ज्यादा बदतमीजी से बोलते हैं। लेकिन नहीं, इस बात पे उनके माता पिता उन्हें टोकते नहीं है, उन्हें ये बात बुरी नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि वो एक मेड है,
1: बिल्कुल
3: काम करने आ रही है, लेकिन इज्जत तो उसकी भी है ना।
1: बिल्कुल।
3: तो हम चीज ये सब चीजें हम बच्चों को बताते हैं कि हमसे उम्र में बड़ा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे घर में काम कर रहा हो या हमारा रिलेटिव हो, माता पिता हो,
1: बिल्कुल
3: कोई भी हो,
1: जिससे किसी को मानसिक ठेस ना पहुंचे,
3: मानसिक ठेस ना पहुंचे, ये सारी चीजें हम बच्चों को।
1: चलिए, एक तो शिक्षिका के नाते आपने तो ये विद्यालय स्तर की बात की, अब फिर से लौट आते हैं अपने शीर्षक की ओर, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा जो हमारा विषय है। तो रुपिंदर जी, मुझे लगता है कि आप भी कुछ इस विषय पर कहना चाहती हैं। वो कौन से उपाय हैं, वो कौन सी बातें हैं जो महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए स्वयं को कार्यस्थल पर सुरक्षित रखने के लिए?
2: जी हाँ, कुछ सरल और उपयोगी सावधानियां उन्हें जरूर अपनानी चाहिए कि आसपास के वातावरण के प्रति उन्हें जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सुनसान और असुरक्षित स्थानों पर अकेले जाने से बचना चाहिए, विशेषकर रात के समय में, और अपने परिवार वालों से यात्रा करते हुए उन्हें कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, लोकेशन भेजनी चाहिए, और अपना मोबाइल चार्ज रखें, हेल्पलाइन नंबर्स फीड कर रखें, उन्हें फीड करके रखना चाहिए हेल्पलाइन नंबर
1: जी।
2: सेल्फ डिफेंस का भी उन्हें प्रशिक्षण लेना चाहिए। बाहर आत्मविश्वास से रहें, डरे डरे से ना दिखें। और छेड़छाड़, धमकी या हिंसा की स्थिति में भी भरोसेमंद लोगों से और संबंधित अधिकारियों से उन्हें सहयोग लेना चाहिए।
1: बहुत

0: अच्छे पॉइंट आपने गिनाए हैं कि एक महिला अगर कार्यरत है, किसी कार्यस्थल पर जाती है या घर से बाहर भी महिलाएं कहीं निकलती हैं, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? जी आकांक्षा जी बोलिए।
1: अभी रुपेंद्र जी ने एक बात की कि महिलाओं को रात में अकेले नहीं आना चाहिए, परिवार वालों के साथ आना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जो लड़कियां, जो महिलाएं शहर से बाहर जाकर जॉब कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनके माता पिता उनके साथ या उनके परिवार से कोई साथ आए।
0: जी
1: ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उनको लाइव लोकेशन वगैरह अपने माता पिता को या अपना आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं कि उनको सेंड कर देना चाहिए, लेकिन
0: कहीं ना कहीं महिलाओं को देर रात भी सफर करना ही पड़ता
1: करना है। पड़ता है, कभी कहीं से आना पड़ता है। आज के समय में जो है महिलाएं पीछे नहीं है, महिलाएं आगे हैं।
0: और आकांक्षा जी, कई बार कार्यस्थल पर शिफ्टिंग में भी काम करना होता है, कभी डे की शिफ्ट, कभी नाइट की शिफ्ट।
1: आजकल आप देख रही हैं जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो नाइट शिफ्ट भी देती हैं, डे शिफ्ट भी देती हैं।
0: पर अगर नाइट की शिफ्ट भी कर रहे हैं तो सुरक्षा वाले हमें जो बातें वो ध्यान रखनी चाहिए,
1: ध्यान रखनी चाहिए।
2: इसी में मैं भी कुछ कहना चाहूंगी
0: जी।
2: जैसे रुपेंद्र जी ने बताया कि महिलाओं को ये

0: परेशान नहीं कर सकते हैं, उन्हें नीचा नहीं दिखा सकते
1: जी।
0: और अगर कहीं कोई महिला अकेले जा रही है तो बजाय इस बात का फायदा उठाने के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे सेफली उसके घर तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल
0: जी, और है ना,
1: ऐसे उदाहरण समाज में हमें अब सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत जगह देखने
0: हाँ,
1: को मिल रहे हैं।
0: और हमें अगर कहीं इस तरीके की सोशल मीडिया का जैसे आपने बताया तो इस तरीके का अगर कहीं मिल रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अपने घर के बच्चों को भी ये चीज सिखानी चाहिए कि देखिए जो रियल हीरो होता है वो ये होता है।
1: बिल्कुल
2: जी हाँ,
0: उनको मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि आप महिला अगर कहीं मिल रही है आप उसका सम्मान कीजिए, जैसे आपके मदर है सिस्टर है उसी तरीके से आपको जो ऑफिस में मिलती है, जो आपके स्कूल में मिलती है, कार्यस्थल पर मिलती है, वो भी सेम महिलाएं ही होती है।
1: बिल्कुल, महिलाओं के प्रति मान सम्मान का जो आदर का भाव हमारा पुरातन समय से चला आ रहा है उसे भी हमें बनाकर रखना होगा, तभी महिलाएं कार्य
0: और हमारी तो जो हमारा समाज है हमारी जो संस्कृति है उसमें तो महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो तो पूजनीय है पहले से ही
1: जी।
2: लेकिन हाँ जी, आकांक्षा, ये शिक्षा जो है घर से ही अगर शुरुआत की जाए इसकी तो फिर तो कोई गलत ही काम ना हो
1: जी। सर्वप्रथम अक्सर देखने में भी आता है कि परिवार का अगर सपोर्ट हो तो महिलाएं सबल रहती हैं।
2: और सबसे बड़ी बात जो बच्चे है ना बड़ों को देखकर सीखते हैं
1: जी। तो आकांक्षा जी, आपने अपने विचार रखे हमारे बीच परिचर्चा में। रुपिंदर जी, आप कुछ कहना चाहती हैं इस विषय पर आगे?
3: यदि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले तो उनमें सकारात्मक सोच उनकी विकसित होती है।
1: अच्छा,
3: हाँ जी, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
3: बिना डर के अपने विचार और सुझाव वे रख पाती हैं हर किसी के सामने, और काम में एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता भी उनकी मजबूत होती है और मानसिक तनाव कम होता है।
1: तो निशाद जी, कुछ विधिक जानकारी आपसे ले लेते हैं। कानूनी रूप से महिलाएं के साथ अगर कार्यस्थल पर कोई असुरक्षा की भावना को उन्होंने महसूस किया है या उत्पीड़न उनका कहीं ना कहीं किया गया है चाहे शारीरिक हो या मानसिक, तो इसकी शिकायत वो कहाँ कर सकती हैं, कितने दिन में कर सकती हैं और कैसे कर सकती हैं, ये जानकारी हमारे सभी सुनने वाली श्रोताओं को दीजिए।
0: देखिए, हर जो आपने कहा कि महिलाएं कहाँ शिकायत कर सकती हैं, तो कानून के हर क्षेत्र में चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या घर पर जो जिनको हम मेड बोलते हैं नौकरानी हो, तो उन जो संगठित है, संगठित कोई भी संस्था है वहां पर हर प्रकार की महिला कर्मचारी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या परमानेंट हो, किसी भी तरीके से हो, उन सबको सुरक्षा प्रदान करना हमारी सरकार का कर्तव्य है और हमारी सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर भी रही है। और इसी के तहत हाँ, इन कार्यस्थलों पर जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी होते हैं वहां पर एक आईसी कमेटी का गठन किया जाता है और उस आईसी कमेटी में यौन उत्पीड़न से संबंधित सारी शिकायतों का निपटारा किया जाता है। इसी तरीके से एक एलसी कमेटी होती है जिसमें 10 से कम जहां पर वर्कर काम करते हैं वहां के कार्यालयों में उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। जिला स्तर पर एक स्थानीय समिति का और गठन किया जाता है जहां पर आप उनकी शिकायत कर सकती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा शी बॉक्स पोर्टल का गठन किया गया है, आप उस पोर्टल पर जाकर अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का भी सरकार ने प्रोविजन किया है जो डायल करके आप अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकती है।
1: अगर किसी के साथ कहीं पर कोई दुर्घटना घट रही है इस तरह की असुरक्षा की तो क्या 112 पर भी कॉल की जा सकती है?
0: जी बिल्कुल, की जा सकती है। अगर कोई इमरजेंसी आपको लगती है तो आप 112 पर भी कॉल कर सकते हैं
1: जी, जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर
0: जी जी जी।
1: इसके अलावा कोई और हेल्पलाइन नंबर भी है क्या?
0: जी, वेबसाइट है राष्ट्रीय महिला आयोग की और जो कि 24/7 वर्क करती है। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी है,
1: बिल्कुल बताइएगा हमारी श्रोताओं को।
0: 7827170170 के माध्यम से आप कानूनी मार्गदर्शन भी ले सकती है
1: जी
0: और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकती है
1: जी। अच्छा, समाज में और किस तरह से व्यवस्था को सही और दुरुस्त किया जा सकता है कि महिलाओं के प्रति उपाय किए जाएं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? तो रुपिंदर जी, आप इस विषय में थोड़ा बताएं।
3: जैसे मैम ने भी अभी बताया कि हेल्पलाइन नंबर और पुलिस थाने में आप सूचना दे सकते हैं।
1: इसके साथ रुपिंदर जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि समय समय पर समाज में एक जागरूकता कार्यक्रम जब तक नहीं होंगे, लोगों को जागरूक जब तक नहीं किया जाएगा, शायद तब तक महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न कम नहीं होंगे। चलते चलते आकांक्षा जी, कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार उनके आत्मविश्वास

0: और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है और शिकायत निवारण प्रणाली तथा जागरूकता कार्यक्रम भी होते रहने चाहिए।
1: जी बहुत अच्छी बात है आपने बताई है। और निशाद जी,
2: जी
1: आपसे भी एक लाइन में चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर हमारी सभी श्रोताओं के लिए?
2: देखिए, जो भी महिलाएं हैं जो बाहर जाती हैं, उन्हें अपने जो अधिकार है उनके बारे में पहले तो जागरूक होना चाहिए।
1: जी, जो मौलिक अधिकार हैं,
2: जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जागरूक होना चाहिए और खुद भी जागरूक हो और अपने सहकर्मियों को भी इस बारे में जानकारी दे। और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए, जो हमारी कार्यस्थल की जो हायर अथॉरिटी होती है उन्हें भी ये चाहिए कि अपने कार्यस्थलों पर इस तरीके के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रोविजन साफ और बड़े अक्षरों में लिखे जाए और रोड पर भी इस तरीके के बैनर होर्डिंग्स लगवाने चाहिए और कुछ कार्यक्रम इस तरीके के चलाने चाहिए, गवर्नमेंट को प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके। और अगर कहीं भी किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, मैंने सबसे कार्य स्तर पर महिला सुरक्षा की जब भी बात आती है तो सबसे पहले तो महिलाओं को स्वयं ही जागरूक होना पड़ेगा। हमारे मौलिक अधिकारों की हमें जानकारी होनी चाहिए, विधिक जानकारी हमें लेनी चाहिए। आज तो हमारे पास इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुत से माध्यम हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी उपलब्ध एक क्लिक से ही हो जाती है। ये सब हमें जानकारी लेनी चाहिए और निश्चित रूप से जब हम जागरूक रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी उत्पीड़न हमारा नहीं कर सकता है। आज की परिचर्चा आपके बीच थी, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा।
3: तो बहनों, ये थी परिचर्चा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। और बहनों, अब समय हो चला है आधी आबादी का, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: बहनों, आधी आबादी के क्रम में आज की जो हमारी नायिका है वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने वो कर दिखाया जो समाज के लिए स्वीकार्य नहीं था। बहनों, मिताली ने यह साबित किया कि किसी भी कि समाज में एक मुकाम हासिल करने के लिए शारीरिक सुंदरता जरूरी नहीं है। बहनों, वास्तव में मिताली एक बर्न सर्वाइवर है। बचपन में एक दुर्घटना के चलते घर बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनका शरीर पूरी तरह से जल गया। हुआ यूं कि जब वो मात 6 साल की थी तो सीढ़ियों से उतरते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों के पास एक गर्म पानी का भगोना रखा था जिस पर उनका हाथ लगा और वो पूरा पानी उनके शरीर पर आ गया, जिसके चलते उनका बायां हिस्सा पूरी तरह से जल गया। बहनों, 1999 की एक साधारण दुर्घटना भयावह घटना में बदल गई। मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनकी मां वंदना विलास सोनावाले ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी मृत बेटी को मसीना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मिताली 11 दिनों तक कोमा में रही। फिर एक उम्मीद की किरण जागी, मिताली की पलकें फड़फड़ाने लगी, परिवार को अपार राहत मिली, लेकिन उसके जीवन को फिर से संवारने का कठिन काम अभी शुरू ही हुआ था कि उसके शरीर का पूरा बायां हिस्सा संक्रमित हो गया। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। बहनों, इतना सब होते हुए भी आज मिताली फैशन जगत में एक जाना पहचाना नाम है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती तो कर लिया, लेकिन कहा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। मिताली 11 दिनों तक कोमा में रही। जब उसने आंखें खोली तो डॉक्टर ने कहा कि वह उसके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर्जरी बहुत महंगी होगी। मिताली की मां ने डॉक्टर से कहा कि वह अपना घर बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराएंगी। यह बात सुनकर डॉक्टरों की टीम ने मिताली का इलाज किया और उन्होंने अपनी फीस भी माफ कर दी और सफलतापूर्वक सर्जरी की। मिताली 2 महीने तक अस्पताल में रही, लेकिन शरीर पर आए जो जख्मों के निशान थे वो ठीक नहीं हुए। बहनों, इतना सब होते हुए भी मिताली ने कभी भी अपने आत्मविश्वास को गिरने नहीं दिया और यह ठान लिया कि बड़ी होकर और ऐसा कुछ करेंगी कि लोग उन्हें उनकी शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि उनके टैलेंट की वजह से उन्हें जाने। बहनों, आज मिताली फैशन जगत में एक जाना पहचाना नाम है। रैंप पर जलवा बिखेरती हैं और जिनसे भी मिलती हैं उन्हें प्रेरित करती हैं। उन्होंने अपने जख्मों को सितारों में बदल दिया। आज मिताली एक सुपर मॉडल, अभिनेत्री और अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं की राष्ट्रीय निदेशक होने के साथ साथ मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंडिया की संस्थापक भी हैं। लेकिन खिताब जीतना उनका लक्ष्य कभी नहीं था, बल्कि वह समाज को यह दिखाना चाहती थी कि शारीरिक सुंदरता ना होते हुए भी वो किसी से कम नहीं है। बहनों, कैसा रहा उनके जीवन का यह सफर, आइए जानते हैं उन्हीं के द्वारा।
1: मेरे चेस्ट के लगे, मेरे कमी तक, मेरे राइट हैंड पे, मेरे फेस के ऊपर सब बहुत निखर के आ गया और मुझे मतलब स्किन ही नहीं बची। तो डॉक्टर ने मुझे डेड ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो सबने बोला कि लड़की है, मार देते हैं, जिंदा रह के क्या करेगी, कौन इससे शादी करेगा। लोग सिर्फ मुझे मेरे एजुकेशन के बेसिस पे मुझे जज नहीं कर रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं मेरे जो बाहरी रूप से। मैंने सोचा कि सुंदरता मैं कहाँ से डिफाइन करूँ, कहाँ से ये लोगों की सोच बदलू। तो मैंने मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए पहला ऑडिशन दिया 2017 में और मुझे वहाँ पे सारे जजेस ने। तो मैं जब ट्रेन में गई तो लोग पूछते थे कि अरे इसको क्या हुआ, क्योंकि मेरा कलर सिडनेम था और मैं सीएसटी से चर्चगेट जाया करती थी। तो उस दौरान मुझे एवरी डे, हर दिन मुझे पूछा करते थे कि तुम्हें हुआ क्या है। कुछ लोग अच्छे हिसाब से पूछते थे, कुछ लोग ऐसे मुंह टेढ़ा करके, ये इसको कितना गंदा हुआ है, क्या हुआ है। कोई मेरे बाजू में बैठने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे था कि मैं लोगों की सोच को एक दिन जरूर बदलूंगी। मैं उनको जवाब नहीं दिया करती थी और किसी ने पूछ लिया तो मैं उनको बताया करती थी कि मेरे साथ कैसे हादसा हुआ, क्योंकि मैं हर दिन हर एक को ये स्टोरी मुझे बतानी पड़ती थी। ये स्टोरी मेरी बाय हार्ट हो चुकी है, तो मैं लोगों को बताती, हाँ मैं ऐसे हुआ ऐसा करके मैं स्टोरी बताया करती थी। आज भी इंडिया में यही सोच है कि काली लड़की मतलब सुंदरता नहीं, गोरा रंग मतलब सुंदरता। और मेरा तो इससे भी परे था, क्योंकि मेरे ऊपर स्कार्स थे। तो अभी ये जो मेरे बदन पे जो स्कार्स है, जो जख्म है, उनको मुझे एक जस्टिस देना था कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे तो बचपन से एक्ट्रेस बनना था, लेकिन मुझे ये पता था, मैच्योरिटी इतनी थी कि मुझे पता था कि मैंने हालात से सब सीख लिया था कि मुझे लोग क्या करेंगे। मैं अगर जाऊंगी भी ऑडिशन देने कोई लाइक टेलीविजन का या कोई टीवी शो के लिए कहीं पे भी, तो मुझे कोई ऐसे लेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि सुंदरता मैं कहाँ से डिफाइन करूँ, कहाँ से ये लोगों की सोच बदलू। तो मैंने जाके मॉडलिंग की फील्ड को मैंने चुना।
0: बेनो, मिताली का काम मॉडलिंग और अभिनय से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनका पूरा ध्यान मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंडिया को प्रतिभाओं के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय मंच बनाने पर केंद्रित है। साथ ही वह सार्थक फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी अभिनय करना जारी रखती हैं, जो सच्ची कहानियों को बयां करती। तो बहनों, ये थी आत्मविश्वास से पूर्ण मिताली सोनमाने, जिन्होंने अपने जैसी बहुत सी महिलाओं को प्रेरणा दी और आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो बहनों, आधी आबादी की आज की हमारी नायिका थी मिताली। इसी के साथ बहनों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो बहनों, ये थी आधी आबादी की हमारी आज की नायिका मिताली सोनमाने। और बहनों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले यह जरूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। तो बहनों, उसके लिए नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम महिला जगत द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। इसी के साथ अपनी बहन भावना अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृपा निधान के स्वर में गाए भोजपुरी लोकगीत।

0: parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal today. Heavy rainfall is also expected over coastal Karnataka, Konkan, Goa, Odisha and Telangana till tomorrow. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh and Uttarakhand for the day. According to the weather agency, heat wave conditions are expected over Chhattisgarh, eastern parts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh today, while severe heat wave and warm night conditions are expected over Vidarbh till tomorrow. IMD said a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 days. In FIFA World Cup, Argentina star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Ulaanbaatar, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेस्सी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का था, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
5: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
5: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
5: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
6: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
7: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
9: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में मैं आपकी अपनी प्रस्तुतिकर्ता नेहा शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और श्रोताओं, आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी, गंभीर व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा से फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ श्रोताओं, आज के हमारे कलाकार हैं अभिनेता राज बब्बर। श्रोताओं, राज बब्बर केवल एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल रंगकर्मी और राजनेता भी हैं। उन्होंने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता हर रूप में दर्शकों का दिल जीत रखा है।

0: श्रोताओं, वारिस फिल्म का एक गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ में। वर्मा मलिक का लिखा यह गीत था और संगीत उत्तम जगदीश का था।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम आनंद की अटूट रसधार।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं अभिनेता राज बब्बर। साथियों, अभिनेता राज बब्बर का जन्म 23 जून यानी आज ही के दिन 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला फिरोजाबाद में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की शिक्षा प्राप्त की। थिएटर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राज बब्बर ने 1977 में फिल्म किस्सा कुर्सी का से बॉलीवुड में कदम रखा। और श्रोताओं, किस्सा कुर्सी का ये फिल्म ऐसी विवादित फिल्म रही। इस फिल्म को भारतीय सेंसर बोर्ड के पास साल 1975 में भेजा गया था, लेकिन आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद इस पर रोक लगा दी गई थी।

0: श्रोताओं, निकाह फिल्म का एक गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ में। हसन कमाल का ये लिखा गीत था और रवि का संगीत। श्रोताओं, इस गीत में राज बब्बर का जो भावपूर्ण अभिनय था ना, वो आज भी दर्शकों के दिलों को छू जाता है।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: संदेश के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम एक ही कलाकार में। श्रोताओं, आज के हमारे कलाकार हैं अभिनेता राज बब्बर। श्रोताओं, 1980 के दशक में राज बब्बर ने समानांतर सिनेमा और व्यावसायिक फिल्मों दोनों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा ली थी। वो उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। उनकी गंभीर आंखें और संवाद अदायगी उन्हें बाकी अभिनेताओं से बिल्कुल अलग बना देती है। उन्होंने इंसाफ का तराजू, निकाह, आज की आवाज़, प्रेम गीत, अगर तुम ना होते, नमक हलाल, वारिस, सांसे, अब आप तो ऐसे ना थे, कलयुग, मजदूर, अर्पण, अगर तुम ना होते, संसार जैसी फिल्मों में अपना बेहतरीन अभिनय दिखाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए सुनते हैं एक और गीत। गीत के बाद एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे राज बब्बर से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। गीत है फिल्म प्रेम गीत से, आवाज़ जगजीत सिंह की है। इंदिवर का लिखा यह गीत है और संगीत जगजीत सिंह का।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता राज बब्बर की। राज बब्बर ने अभिनय के साथ साथ राजनेता होने का भी फर्ज बहुत ही बखूबी निभाया। वो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे और अपने राजनीतिक सफर में वो 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए और वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर कार्यभार भी संभाल चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो श्रोताओं, राज बब्बर की पहली शादी नादिरा बब्बर के साथ हुई थी, जो एक जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट और अभिनेत्री थी। उनके बाद उनके जीवन में मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल आईं। उनके परिवार में बेटे आर्य बब्बर और प्रतीक बब्बर और साथ और बेटी का नाम जूही बब्बर रहा और प्रतीक बब्बर भी बॉलीवुड में एक सक्रिय अभिनेता के रूप में कार्यरत हैं और मनोरंजन जगत से इनके सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और गीत और फिर उसके बाद बात करेंगे राज बब्बर से जुड़ी और अन्य रोचक जानकारियों की।

कहाँ जाते हो रुक जाओ। श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म दूल्हा बिकता है से। अनवर और मीना पाटकी की आवाज़ में ये गीत था, गौहर कानपुरिया की शब्द रचना और बप्पी लहरी का संगीत। कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता राज बब्बर की। राज बब्बर ने हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी और टेलीविज़न धारावाहिकों में भी काम किया था, और जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि फिल्मों के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रखी है। और श्रोताओं, राज बब्बर की खासियत ये रही कि उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, चाहे वो रोमांटिक नायक हो, संवेदनशील पति हो, सख्त पिता हो, या फिर एक नकारात्मक भूमिका यानी कि विलन की भूमिका भी उन्होंने बखूबी निभाई। उनकी अभिनय यात्रा से हमें यही सीख मिलती है।

तो श्रोताओं, ये था राज बब्बर के जीवन से जुड़ा कुछ एक छोटा सा कार्यक्रम। और कुछ पंक्तियों के साथ अब आपसे विदा लेना चाहेंगे कि किरदार बदलते रहे पर अभिनय का रंग ना बदला, हर दौर में चमकता रहा उनका हुनर और हौसला। राज बब्बर की यादों के संग आज की ये दोपहर रही और फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारे केंद्र से आज की द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आज सुनते हैं जानकारी। अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना और राष्ट्रीय मिशन प्रसाद योजना के विषय में जानकारी। पहले चर्चा करते हैं अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के विषय में। श्रोताओं, सरकार द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जाती रहती हैं, जिससे आम जनता को सरकार द्वारा संचालित इन संबंधित योजनाओं का महत्वपूर्ण लाभ मिल सके। हमारे देश की संस्कृति विश्व में एक अनूठी संस्कृति है, इसकी अलग ही पहचान है। यहाँ सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव के साथ रहते हैं और अपनी अपनी संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को जनहित में राष्ट्रहित में संचालित किया जाता रहता है। इसमें अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से संचालित है। इसका प्रमुख उद्देश्य विरासत स्थलों, स्मारकों और पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में विकसित करना है। ये ऐसे स्थान हैं जिन्हें सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करते हुए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। भारत के स्मारक और पुरातत्व स्थलों का संरक्षण और सुरक्षा इसके अंतर्गत समाहित है। श्रोताओं, इस योजना के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, एनजीओज और व्यक्तियों को विरासत स्थलों को अपनाने के लिए स्मारक मित्र के रूप में भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्मारक मित्र अपनाए गए स्थलों पर स्वच्छता, पेयजल, सुगम्यता और सुरक्षा जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये योजना पीपीए यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक साझा प्रयास है, जिससे सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और प्रबंधन के लिए निजी संस्थाओं के साथ सहयोग करती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के विषय में। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय मिशन प्रसाद योजना के बारे में। श्रोताओं, प्रसाद योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 से शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। इसका पूरा नाम तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रमुख तीर्थ और आध्यात्मिक स्थलों का समग्र विकास करना है, विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करना है, ताकि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। श्रोताओं, इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित तीर्थ स्थलों पर पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे विकसित करने के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिससे तीर्थ स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना विकसित की जाती है। स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, आवास और यातायात सुविधाओं का विस्तार इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। इस योजना में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार सृजन को भी महत्व दिया जाता है। स्थानीय समुदायों में
कौशल और क्षमता का विकास किया जाता है। इस योजना का एक और प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए तीर्थ स्थलों का प्राथमिकता के आधार पर योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से एकीकृत विकास करना भी है। श्रोताओं, इस योजना के द्वारा पर्यटन आकर्षण को सतत तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तीर्थ यात्रा पर्यटन का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि ये रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को सीधे तौर पर प्रभावित कर उसमें वृद्धि करता है। स्थानीय कला संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजनों को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित की जा रही है। श्रोताओं, इस योजना में प्रारंभ में जिन 12 शहरों को पहचान दी गई थी उनमें माँ कामाख्या देवी आसूम, अमरावती आंध्र प्रदेश, द्वारका गुजरात, गया बिहार, अमृतसर पंजाब, अजमेर राजस्थान, पुरी ओडिशा, केदारनाथ उत्तराखंड, कांचीपुरम तमिलनाडु, वाराणसी और मथुरा उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अन्य शहरों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इस योजना का मुख्य सार पूरे भारतवर्ष में महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों का व्यवस्थित, स्थायी और समग्र कायाकल्प करना होता है। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी अपनी धरोहर, अपनी पहचान योजना और राष्ट्रीय मिशन प्रसाद योजना के विषय में। अब सुनते हैं एक गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनते हैं हमारे केंद्र से आज की सभा के प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। आज रात्रि 10:00 राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी अल्मोड़ा की। आज रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे परिचर्चा। विषय रहेगा पर्यावरण बनाम विकास। प्रतिभागी होंगे ताजवीर सिंह, विक्रांत शर्मा, सूर्यमणि रघुवंशी। परिचर्चा का संचालन करेंगे शोभित शर्मा। सुगम संगीत कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकेंगे। आज संध्या 7:32 पर इसके अंतर्गत आप सुनेंगे गजलें। कलाकार होंगे मुकेश। हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10:30 पर। पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या। रात्रि 8:30 कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। युवा श्रोता अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे। अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:15 पर किसान भाई अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे शाम 6:05 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना प्रसारित होता है प्रतिदिन प्रातः 6:05 पर। कल प्रातः 6:45 पर काव्यधारा कार्यक्रम में आप सुनेंगे पूर्णिमा संघी का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय रहेगा बच्चों के लिए घातक हैं पेट के कीड़े, खेती की बातें। इस कार्यक्रम में कल प्रातः 7:10 पर जानकारी हमारे किसान भाई सुनेंगे पशुओं में बांझपन की समस्या और समाधान। सूरज के साथ साथ ये कार्यक्रम प्रसारित होगा कल प्रातः 7:31 पर। जिले की हलचल ये कार्यक्रम कल प्रातः 9:15 पर हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रुहेलखंडी लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं शालिनी जौहरी के स्वर में कल प्रातः 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा कल दिन में 11:30 पर। घर संसार कार्यक्रम प्रसारित होगा कल दिन में 1:15 पर। इसमें कल का क्रम रहेगा महारा घर आंगन भोर से सांझ तक। लोकधारा कार्यक्रम में कुमाऊनी लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे कल दिन में 1:45 पर। कलाकार होंगे हीरा सिंह राणा। संदेश.com ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं कल दिन में 2:30 पर। युवाणी कार्यक्रम कल शाम 5:15 पर प्रसारित किया जाएगा। कृषि जगत कार्यक्रम कल शाम 6:05 पर प्रसारित होगा। इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता। फसलों में संरक्षण कृषि तकनीकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के सटीक प्रयोग हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। विविधा कार्यक्रम में कल शाम 6:45 पर अपूर्वा मिश्रा की वार्ता का विषय रहेगा निर्मल वर्मा के उपन्यास वेदिन का मूल्यांकन एवं प्रासंगिकता। कानून की बात कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल संध्या 7:32 पर। दिल ने फिर याद किया व्हाट्सएप मैसेज और
कंपीयर्ड कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल रात्रि 10 बजे। ये था हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: सूरज की किरणें जब अलविदा कहती हैं, तब शाम अपनी चादर बिछा लेती है।
1: खामोश लम्हे की इस महफिल में हर धड़कन एक नई धुन गुनगुनाती है।
0: नमस्कार दोस्तों, सुरों, शब्दों और एहसास की इस महफिल को सजाने हाजिर हो चुके हैं हम, आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी लेकर, जिसमें हाजिर हूं मैं, आपकी अपनी सखी सहेली और रेडियो पार्टनर वंशिका सोती।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, साथ ही मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो पार्टनर राशि त्यागी, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, आपके साथ कुछ पलों के लिए हम अपनी बातें और कुछ खास सेगमेंट और गीतों के साथ आपके साथ रहेंगे।
0: तो देर किस बात की राशि, शुरू करते हैं आज का ये गेम।
1: गेम? अरे गेम नहीं वंशिका, प्रोग्राम और सेगमेंट्स।
0: ओहो राशि, मेरा वही मतलब था कि स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेगमेंट बूझो तो जाने से, जिसमें आज का सवाल एक बेहतरीन गेम से जुड़ा हुआ है। गेस करना चाहोगे कौन सा गेम है?
1: क्यों नहीं, वही है ना, क्रिकेट।
0: बस क्रिकेट, दिम क्रिकेट ही रहता है क्या दिमाग में?
1: ना क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन।
0: नहीं बाबा नहीं, तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा।
1: अरे क्यों,
0: मैं बताती हूँ, हिंट देती हूँ, वो गेम जिसमें शय और मात का दिलचस्प संगम होता है।
1: ओहो चेस, समझ गई मैं, चेक और मात की वही बात है ना, वो बात तो उस गेम में ही होती है।
0: वाह राशि, बहुत बढ़िया। तो अब तुमने तो गेस कर लिया, लेकिन बारी अब हमारे लिसनर्स की।
1: तो उनको क्वेश्चन बता देते हैं, जो है भारत के शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर किन्हें कहा जाता है?
0: जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि भारत में शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर किन्हें कहा जाता है, और इस सवाल का सही जवाब आप हमें भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर।
1: तब तक हम आपको सुनवाते
0: ना ना ना
1: हैं।
0: ना ना ना, अभी नहीं अभी नहीं, अभी सुनवाएंगे, पहले थीम तो बता दो आज की। भाई ट्यूसडे है, भूल गई हो क्या?
1: याद आ गया मुझे, दिल से दिल तक ट्यूसडे सेगमेंट कैसे भूल सकती हूँ मैं।
0: हाँ तो भूलो नहीं, लेकिन ट्विस्ट अब ये है कि आज की थीम हमारे फ्रेंड्स को हम नहीं बताएंगे।
1: अरे फिर कैसे पता चलेगा? अरे वंशिका, एक आइडिया आ रहा है मुझे,
0: मुझे
1: बता।
0: पता चल गया है वो क्या आइडिया है, क्योंकि वही आइडिया मेरे भी माइंड में है कि जो पहला गीत हम दोस्तों को सुनवाएंगे उसी में छिपी है आज की थीम।
1: हाँ, और दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समझनी है थीम जो हम आपके सामने सॉन्ग प्रेजेंट करने वाले हैं उसके थ्रू, और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैसेज कर देने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर जाकर। सबसे पहले तो आपको बतानी है आज की थीम, उसके बाद शुरू करते हैं उस थीम से जुड़े आपके जवाबों को।
0: और जो लिसनर हमारी आज की थीम को बताएगा सबसे पहले मैसेज में, वो होगा आज का सुपर लिसनर, है ना राशि?
1: सुपर लिसनर यानी कि सुपर स्टार। तो हाँ, चलिए दोस्तों,
0: वाकई में तो देखिए, देखते हैं कि कौन कौन सुन रहा है हमारे प्रोग्राम को और कौन कितना जल्दी रिप्लाई भेजने वाला है इस गीत को सुनकर।
1: तो चलिए दोस्तों, हम ढूंढ लेते हैं आज के सुपरस्टार को, यानी कि सुपर लिसनर को।

0: चंद्र भानु, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। अभिनंदन।
1: अब इसको हटा के, इसको हटा दीजिए और फाइनल ऐसे इशारा कर देना।
2: मजा मा के ओढ़।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
6: यार संता, एक बात बता, हम दोनों का रिश्ता कैसा है?
7: हमारे रिश्ते पे सवाल उठा रहा है क्या? तुझे नहीं पता हमारा रिश्ता कैसा है?
6: अबे यार, होशियार आदमी तो सवाल उठा सके, अब तेरे से तो उम्मीद ना कर सकता। सीधी बात कर, बात को खेचे मत।
7: उम्मीद ना कर रहा तो फिर पूछ ही क्यों रहा मेरे से फिर? अरे बस वही, जब बेसन सनता है तब पकौड़ा बनता है।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
8: तो दोस्तों, आगे बढ़कर और कुछ दूर चलकर हम आ गए हैं सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
9: जी हाँ दोस्तों, आज 23 जून के इस खास दिन पर हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे लाइफ को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर दिन प्रभावित करता है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस।
8: साथियों, इस दिन उन लोगों के सम्मान में समर्पित किया गया है जो जनता की सेवा के लिए समर्पित रहे हैं, चाहे वह शिक्षक हो या डॉक्टर हो, पुलिस कर्मी हो या सफाई कर्मी हो, या दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी हो।
9: और हम सभी दोस्तों ये भी जानते हैं कि अन्य भी बहुत से लोग हैं जो देश समाज को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं।
8: दोस्तों आप जानते ही हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी सुविधा, हमारी सुरक्षा के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। सरकारी अस्पतालों में सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मी, ये सभी लोग सेवा के सच्चे प्रहारी कहे जाते हैं।
9: जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में लोक सेवा केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस के माध्यम से सेवाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी और आम नागरिकों को सुविधाएं भी आसानी से मिल पा रही हैं।
8: तो दोस्तों, कुछ लाइनें हैं जो देश के लिए और आज के दिन के लिए समर्पित हैं, जो खुद से पहले देश का सम्मान रखते हैं, जो खुद से पहले देश का सम्मान रखते हैं, जनसेवा को ही अपना अरमान रखते हैं।
9: धूप हो, बारिश हो या मुश्किलों का सफर, वो हर हाल में जनता का ध्यान रखते हैं।
8: लेकिन सचमुच लोक सेवकों का योगदान अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन उनका कार्य समाज की नींव को मजबूत जरूर बनाता है।
9: दोस्तों, आज का दिन हमें ये सिखाता है कि जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि हमारी भी है। एक जागरूक नागरिक बनकर हम स्वच्छता नियमों के पालन और सामाजिक सहयोग के माध्यम से देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं।
8: आइए दोस्तों, आज हम सब सभी लोक सेवकों से दिल से धन्यवाद कहें, जो निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं।
9: तो दोस्तों, आप सभी को
8: संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, अभी हमने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था कि आपको ढूंढना है क्लू
9: हमारे पहले सॉन्ग से, कि आज जो ट्यूसडे स्पेशल सेगमेंट रहता है दिल से दिल तक, उसकी क्या थीम है।
8: और वंशिका, हम देख पा रहे हैं कि हमारे कुछ दोस्तों कुछ ही कहेंगे क्योंकि मैसेज अभी बहुत कम आए हैं। तो हमारे कुछ दोस्तों ने हमें मैसेज किए हैं, जिसमें पहला मैसेज वंशिका साजिद अली वाराणसी से, जिन्होंने थीम बताई है उड़ान। सही है, वैसे थीम हम सोच सकते हैं इस थीम के बारे में, है ना?
9: लेकिन साजिद जी, आपको हम बता देते हैं कि ये हमारी थीम नहीं है, तो शायद आप नियर अबाउट हैं, अभी रह गए हैं। और एक और मैसेज मुझे दिख रहा है, किसका मैसेज है ये राशि?
8: साहिल सिद्दीकी नौरावा से, और उन्होंने भी थीम भेजी है।
9: क्या सही है उनकी थीम
8: वंशिका? मुझे बड़े सैडली कहना पड़ रहा है कि सही तो नहीं है, लेकिन दोस्तों उनकी थीम भी सुन लो पहले। उनकी थीम है उड़ी उड़ी।
9: ओहो, तो अभी हमें सुपर लिसनर नहीं मिला है फिर तो, ये क्या
8: सुपर लिसनर हमें नहीं मिला है, लेकिन हमें तलाश आपकी है सुपर लिसनर, जल्दी से मैसेज करिए। हो सकता है आपका एक दो सेकंड में मैसेज आ जाए तो भी आप सुपर लिसनर बन सकते हैं।
9: हिंट दे दें।
8: हिंट तो वंशिका पूरा गाना दे दिया हमने, पूरा गाना।
9: एक और गाना सुनवा देते हैं तो इसी बात पे शायद उससे कुछ हिंट मिल जाए।
8: हाँ बिल्कुल, गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में मैसेज करने के लिए स्वागत है, क्योंकि धन्यवाद तो हम आपका बाद में करेंगे क्योंकि आप हमें और भी मैसेजेस करने वाले हैं, तो सबसे पहले जिन्होंने हमें मैसेज किए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के युववाणी प्रोग्राम में। तब तक सुन लेते हैं ये गीत, क्योंकि इस गीत के बाद सुपर लिसनर का इंतजार हमें रहेगा। तो चलिए प्रेजेंट है ये आज का गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
6: पहले और आज के जमाने में तुझे क्या अंतर नजर आता?
7: ए पहले के जमाने में तू दबी ढकी रह थी और आज तू उघड़ी फिर है।
6: ए हा, तेने तो मेरे पे कर दिया सवाल। सीधी सीधी बात बता कि जैसे पहले के जमाने की बात है, हैं? पहले क्या हो करा था ऐसा जो आजकल ना हो करता?
7: ए तू किस बारे में बात करना चाह रही, पहले वो तो बता दे। जमाने में तो देख ले कितने बदलाव हुए हैं।
6: हाँ कह तो सही रही। ए मैं यूं कह रही, चल एक बात बता, तेरे हाथ में जो डिब्बा इसके बारे में बता दे, इसे कह दे करना फोन।
7: ए इस फोन के बारे में मत पूछ बेना, पहले तो ये चलता ही ना था। अब यो भैया जब चले तो इसका यो हिसाब है कि जब अगर यो गिर गया ना तो बैटरी बाहर आ जाती थी पहले तो।
6: रुक रुक रुक, तेरी बात को रोक के कह रही हूँ। पता है आजकल फोन गिर जाए ना तो लोगों के फेफड़े गुर्दे बस आंखें बाहर आनी रह जाती हैं।
7: बस बेना जब तुझे पता तो फिर क्या कह रही है?
6: सही कह रही।
2: जी हाँ मजा आ गया।
7: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज आप सुन रहे हैं मुझे वंशिका सोती को और
8: दोस्तों अपनी प्यारी साथी राशि त्यागी को।
7: तो राशि, एक खुशी की बात बताऊं?
8: वंशिका फिर मैं भी बताऊंगी।
7: मेरे पास ना मैसेज आ गया है हमारे सुपर लिसनर का।
8: अच्छा, कितने मैसेज आए तुम्हारे पास?
7: मेरे पास एक भी मैसेज आया है।
8: मेरे पास दो दो आए हैं। चलो तुम बोलो पहले।
7: माय गॉड, तो यानी कि हमें शायद सुपर लिसनर मिल रहे हैं।
8: सुपर
7: एक नहीं, तीन तीन। चलो देख
8: तुम्हें, तुमने कैसे गैस किया कि हमारे तीनों जो आंसर्स आए वो सही आंसर आए?
7: अभी तो तुमने बोला, तभी तो हो सकता है ना।
8: हाँ वंशिका, हम पॉजिटिविटी पे रहते हैं ना, इसलिए हमने लगा हमारे दोस्त गलत हो ही नहीं सकते।
7: पहला नाम बता दूं?
8: हाँ,
7: अनिल विनोचा फ्रॉम नगीना।
8: अच्छा, और दूसरा मैसेज आया दोस्तों हमें विलेज एंड पोस्ट राहु नंगली आचार्य सत्यवीर सिंह अलका चौहान और वेदांश चौहान, उन्होंने थीम का नाम बताया है ओढ़नी। और दोस्तों अगला मैसेज हमें आया है आशुतोष भारद्वाज जी का, जो कि हैं दिल्ली से, और उन्होंने भी थीम का नाम बताया है ओढ़नी।
7: तो क्या बात है, हमारे इतने सारे सुपर लिसनर्स, अब थीम तो पता चल गई है ओढ़नी, लेकिन आपके क्या व्यूज हैं इस ओढ़नी को लेके?

0: वो आप जरूर हमें लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर।
1: वंशिका, मतलब हम अपने दोस्तों के व्यू तो जान ही रहे हैं ओढ़नी से रिलेटेड, तुम्हारे क्या व्यू हैं?
0: मेरे लिए देखो ओढ़नी के बारे में क्या कहूं, दो लाइन्स याद आ रही हैं, वो ही कह देती हूँ। तेरी ओढ़नी का रंग क्या कहें, जैसे सावन की पहली फुहार हो, लहराए जो तेरे संग हवा में, लगता है कोई मधुर सा प्यार हो।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं ना कि ओढ़नी केवल एक कपड़ा नहीं है, ओढ़नी हमारी क्या है, एक इज्जत है, सपना है, संस्कार है और दोस्तों मुस्कान है।
0: बिल्कुल
1: वंशिका, तुम्हें तो मेरी बातों से ओढ़नी के वर्ड्स याद आए और मुझे
0: हाँ।
1: तुम्हारे वर्ड से अपना सेगमेंट याद आ गया।
0: अरे कौन सा सेगमेंट?
1: वंशिका, आज ट्यूसडे है ना, बार बार याद दिलाना पड़ रहा है,
0: हाँ
1: और ट्यूसडे में होता है हमारा सेगमेंट लव स्टोरी की सीरीज जाने का, क्योंकि
0: हाँ वो
1: मंडे
0: तो मंड
1: स्टार्टिंग होता है
0: हाँ मंडे से फ्राइडे जाती है। बिल्कुल
1: और सेकेंड डे होता है हमारा ट्यूसडे, और ट्यूसडे में जाता है हमारा सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों हमारी लव स्टोरी चल रही है चित्रलेखा, और जिसको प्रेजेंट किया है शैली ने। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं चित्रलेखा के दूसरे एपिसोड को।
2: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे कि धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
3: नमस्कार दोस्तों, तो इस हफ्ते हमारे सेगमेंट लव स्टोरीज में चल रही है कहानी चित्रलेखा, जिसका आज है एपिसोड 2। तो पिछले भाग में आपने सुना कि गुरु रत्नाम्बर ने अपने दो शिष्यों श्वेतांग और विशाल देव को पाप और पुण्य का असली मतलब समझने के लिए दुनिया में भेजा था। श्वेतांग बीजगुप्त के महल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात चित्रलेखा से हुई। वहीं विशाल देव योगी कुमारगिरी के आश्रम में पहुंचा और उन्हें पुण्य का प्रतीक मानने लगा। लेकिन कहानी बस अभी शुरू हुई थी। समय बीतता गया और श्वेतांग महल में रहकर बीजगुप्त और चित्रलेखा को करीब से देखने लगा। उसे हैरानी होती थी कि जिन लोगों को वो सिर्फ भोग विलास में डूबा हुआ समझता था, उनके व्यवहार में घमंड या बुराई जैसी कोई बात नहीं थी। बीजगुप्त एक बहादुर सेनापति था, जो अपने सैनिकों और मित्रों का पूरा सम्मान करता था। वहीं चित्रलेखा भी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद समझदार और आत्मसम्मानी महिला थी। एक दिन श्वेतांक ने चित्रलेखा से पूछ ही लिया, तुम्हें कभी नहीं लगता कि ये जीवन गलत है? लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। चित्रलेखा मुस्कुराई और बोली, लोगों का काम है बातें करना, लेकिन किसी इंसान को सिर्फ उसके पेशे या उसके बाहरी जीवन से पहचान लेना सबसे बड़ी गलती है। चित्रलेखा की बात सुनकर श्वेतांग कुछ देर के लिए चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि शायद दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी वो समझता था। उधर आश्रम में पूरी श्रद्धा के साथ कुमारगिरी की सेवा कर रहा था। कुमारगिरी का प्रभाव लोग पर इतना था कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। सब उन्हें एक ऐसे योगी के रूप में देखते थे जिसने हर मोह माया का त्याग कर दिया था। लेकिन एक दिन शहर में एक बड़े धार्मिक समारोह का आयोजन हुआ। वहां राज्य के बड़े बड़े लोग आए, जिसमें बीजगुप्त और चित्रलेखा भी शामिल थे। उसी समारोह में पहली बार कुमारगिरी और चित्रलेखा ने सम्मान से योगी को प्रणाम किया और कुमारगिरी ने उसे आशीर्वाद दिया। ये बस कुछ क्षणों की मुलाकात थी, लेकिन न जाने क्यों कुमारगिरी का मन अचानक विचलित हो गया। समारोह खत्म होने के बाद भी उनके मन में चित्रलेखा का चेहरा बार बार आ रहा था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ एक साधारण विचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जितना वे उस विचार को दूर करने की कोशिश करते, वो उतना ही उनके मन में लौट आता। उधर चित्रलेखा भी कुमारगिरी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुई थी। उसने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसके सामने राजाओं तक का सिर झुक जाता था। कुछ दिनों बाद श्वेतांक ने देखा कि बीजगुप्त पहले जैसा खुश नहीं दिख रहा, जैसे उसे किसी आने वाले बदलाव का एहसास हो रहा हो। और सच में बदलाव शुरू हो चुका था। एक तरफ चित्रलेखा थी, दूसरी तरफ कुमारगिरी की तपस्या। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थी। लेकिन क्या एक महान योगी अपने मन में उठ रहे नए भावों को दबा पाएगा, या फिर वर्षों की तपस्या एक ही आकर्षण के सामने कमजोर पड़ जाएगी, जानेंगे हम अगले भाग में कल यानी बुधवार को।
2: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
0: तो दोस्तों, ये तो सुनी आपने लव स्टोरी चित्रलेखा, जिसे प्रेजेंट किया था हमारी साथी शैली ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारी आज की थीम पर बेस्ड ये अगला प्यारा सा गीत।

0: क्या खूब थी ना ये रजवाड़ी ओढ़नी राशि।
1: बिल्कुल
0: तो अब इस ओढ़नी को लेकर हमारे दोस्तों के क्या विचार आए हैं भाई, वो भी तो देखने बाकी हैं।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप हमारे साथ मैसेज के थ्रू जुड़े हैं, अपनी फीलिंग्स के थ्रू, अपनी लाइंस के थ्रू जुड़े हैं, जिसमें पहला मैसेज आया हमें अमरोहा से, भूपेश यादव, नित्या यादव और कनिका यादव, और उन्होंने लिख भेजा है कि ओढ़नी का रंग चाहे कोई भी हो, उनके कहने का मतलब है कि ओढ़नी किसी भी कलर की हो चाहे, लेकिन उसमें आपके अरमान जो छिपे होते हैं वो बहुत रंगीन होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब धारण करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ सोच विचार के उसको ओढ़ते हैं, और ओढ़नी एक तरह से हम मान सकते हैं हमारी इज्जत, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को साफ दर्शाती है।
0: तो इसीलिए तो ओढ़नी हो चाहे, देखो वैसे हम पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे राशि, ओढ़नी, लेकिन ओढ़नी चाहे आप उसको दुपट्टा कह दें, चाहे चुनरिया कह दें, कुछ भी किसी भी वे में कह दें जो सिर पर ओढ़ी जाए, है ना, जो आपको ढांक ले, उसी को ओढ़नी कह देते हैं।
1: और
0: माँ के
1: भी
0: आंचल से बढ़ के तो कोई बड़ी ओढ़नी है नहीं मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, ओढ़नी शब्द केवल किसी कपड़े के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। ओढ़नी तो वो चीज़ है कि जो हमें अपने आंचल में समाये रखती है।
0: इसी के साथ राशि, मुझे एक और मैसेज दिख रहा है जो आया है हमारे पास मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं सीताराम पंडित, देव पंडित और देवांत पंडित, और ये लिख भेजते हैं कि रंग बिरंगी ओढ़नी जब कंधों पर सिमट जाती है, सादगी भी तब अपनी सबसे खूबसूरत कहानी कह जाती है। चुनरी की हर सिलवट में एक याद बसी होती है, हर रंग में किसी कहानी की खुशबू होती है। क्या खूब लाइंस लिख के भेजी हैं पहली बात तो आप लोगों ने, और आपने मैसेज में शिरकत की अपने प्रोग्राम के थ्रू, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हमारी जो आज की थीम है वो एक शब्द नहीं है, हमारी फीलिंग है, हमारी कुछ हमारे अंदर जो उसके बारे में, जो उसकी सभ्यता के बारे में समाई हुई बातें हैं उनको निकालने का एक तरीका है हमारी थीम के थ्रू।
0: और इसी के बाद नजीबाबाद से एक और मैसेज हमारे पास आया राशि, ये है नरेश कुमार, प्रीति वर्मा, वरुणा, गर्वित और शेखर का, और इन्होंने कुछ लाइंस लिखी हैं बहुत प्यारी सी, कि ओढ़नी जब हवा में यूं लहराती है, चांदनी भी उसकी अदा पर इठलाती है, उसके रंगों में बसी होती है ऐसी खुशबू जो हर दिल में एक याद जगाती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ओढ़नी, आंचल, चांदनी, इतने अच्छे, इतने खूबसूरत शब्दों का आपने इस्तेमाल अपनी लाइंस में किया है, तो वही दर्शा रहा है कि आपने हमारी थीम को, हमारे शब्द को कितना सीरियसली लिया है। और सच में ये मैसेज दिल से दिल तक जाने का ही है, क्योंकि दिल
0: वाकई
1: से
0: में
1: जुड़ा हुआ एक शब्द जो दूसरे के दिल में एक जुड़ाव, एक ज्वाइंट, एक फीलिंग को पैदा करता है, तो वो वही शब्द होता है।
0: और मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं, क्या मैं वो शेयर कर दूं राशि?
1: बिल्कुल
0: ओढ़ने की सिलवटों में बचपन की यादें हैं, माँ की सीख और दादी की बातें हैं, ये सिर्फ कपड़ा नहीं एक एहसास है जिसमें कई रिश्तों की सौगातें हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ओढ़नी को केवल अगर सिंपल सा एक शब्द कहा जाए तो वो उसको कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ओढ़नी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है जो हर चीज़ को अपने अंदर समाये हुए है, उस फीलिंग्स को दर्शाती है। तो वो सारी बातें जो आज इस छोटे से शब्द में आपकी फीलिंग्स ने उसको समेटा है, तो उसके साथ हमें बहुत खुशी हुई, आपने हमारे साथ इतने सुंदर, इतने खूबसूरत मैसेजेस को शेयर किया।
0: और राशि, केवल इन बातों में ही नहीं, हमारे जो ये गीत हैं इन्होंने भी बहुत बखूबी इस ओढ़नी के महत्व को पिरोया है, और एक ऐसा ही गीत अब हम अपने लिसनर्स को सुनवाने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। तो आइए आप और हम मिलकर आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: विश्वनाथन आनंद।
1: और दोस्तों, सही जवाब के साथ हमारे प्रोग्राम से जुड़ने वालों के नाम हैं बालेश पवार, नदीक अलसारी, हीरामणि वर्मा, मोहम्मद सईद दब्बासी, जॉन डिकेस्टो, अनिल विनोचा, नंद कुमार, नदीम बाकी, आकाश रस्तोगी, आरसी कामड़े, नदीम हुड्डा, दिनेश वर्मा, ताज अंसारी, गंगा सिंह रावत, तुलसी, दीपेश वर्मा, मोदी, सोहन जोशी, लाल मोहम्मद अंसारी, जयपाल यादव, यजानन येले, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, शेख मूसा, रामकुमार रेवाड़, मोहम्मद रफीक पवार, मसरूर हसन, राजेश वर्मा, देवशंकर तामूरिया, धर्मेंद्र छिप्पा, विट्ठल सुरेसे। और दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रोग्राम में अपने मैसेज के, अपने कमेंट के थ्रू जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने लेटर्स और एसएमएस के जरिए। लेटर्स भेजने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: और दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा पता है, फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानी, आने वाले प्रोग्राम्स आप यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। साथ ही अपनी साथी राशि त्यागी
0: और मुझे वंशिका सोती को दीजिएगा कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।

पर। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे पहले सेगमेंट बूझो तो जाने के अंतर्गत हमने आपसे सवाल किया था कि भारत में भारत शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर किन्हें कहा जाता है, और इसका सही जवाब है

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजे हैं। अब आप हिंदी में समझ

0: आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों और बहनों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। और भैया प्रमोद क्या हो रहा है?
1: बस भैया सब ठीक ठाक हैं, खेती बाड़ी भी ठीक ठाक है। और भैया देखो अब तो धान की बुआई में लगे हुए, तुम अपने सुनाओ भैया।
0: भाई देखो खेती में काम तो बहुत रहे लेकिन बात चले इस टाइम क्या क्या काम चल रहा
1: है। हाँ ये बात तो है भैया।
0: भाई देखो गन्ने में तो अब मेरे ख्याल से जो है गोल में जो है मिट्टी चढ़ाने का काम
1: सब
0: भी हो
1: चढ़ाई दी भैया वो तो,
0: और उर्वरक प्रबंधन भी कर दिया,
1: सिंचाई विचाई कर रहे हैं।
0: सिंचाई का तो भाई मामला यो है कि भाई तो लगातार चलना ही रहे हैं।
1: जी जी जी।
0: और भाई बारिश भी हो जा बीच बीच में।
1: हाँ थोड़ी बहुत तो हो ही जाए, लेकिन भैया देखो वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी पड़े भाई। फसल में बड़ी मेहनत लगी, फसल खराब ना हो जाए उसके लिए तो भाई काम करते ही रहे किसान भाई।
0: भाई बात यो गन्ने के मामले में तो यो कह दें कि भाई देखो दे पानी
1: हाँ।
0: और होश लिया तो खेती गई।
1: बिल्कुल
0: तो
1: ठीक कह रहे हैं,
0: कुल मिला के उसमें तो लगातार लगे रहना है।
1: जी जी।
0: लेकिन भैया इस टाइम हमारा जो ढैंचा सनई और अन्य जो हरी खाद के रूप में फसलें खड़ी हैं तो उनका भैया ध्यान रखना।
1: बिल्कुल।
0: और अगर आपके भैया ये ढैंचा सनई छोटी है तो थोड़ा सा यूरिया की मात्रा डाल सकते हैं उसमें, जिससे वो बढ़ जावे।
1: हाँ हाँ हाँ
0: और भाई दूसरे ये कि अगर आपकी जो पौध है वो 20 से 25 दिन के बीच की हो गई,
1: धान के पौध।
0: बिल्कुल धान की पौध का, तो धान की पौध को लगाने का काम जारी रखें।
1: बिल्कुल आपने भैया सारी बातें बहुत अच्छी बताई। और भैया देखो आज तो दिन मंगलवार है, किसान भाइयों को सब पता है कि भाई हम किस दिन कौन सा प्रोग्राम अपने भाइयों के लिए लेकर आवे हैं। अरे भाई जैसा तमने आज यो धान की बात अभी करी ना,
0: हाँ
1: किसान भाइयों को यो पता है कि मंगलवार को हम बासमती धान की रेडियो कृषि पाठशाला सुनवाई करें, वो सुनवाई जाएगी
0: बिल्कुल
1: तो आज भी लेकर आए ना।
0: बिल्कुल भैया आज भी हम लेकर आए हैं। तो आइए भैया आप ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं आज का बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का 7वां पाठ।
1: ठीक है भैया।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
2: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: अरे मास्टर जी।
0: हाँ भैया।
3: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
0: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
3: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है।
0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
3: हाँ देश किसान, किसान का मान बासमती धान।
1: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: किसान का मान बासमती, देश की शान बासमती।
5: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
0: तो स्वागत है हमारे सभी किसान बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में। और आज के इस पाठ के साथ मैं हूं आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम।
1: और भैया मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह।
0: तो प्रमोद भैया देखो हम इस कार्यक्रम के जरिए
1: जी भैया
0: अपने किसान भाइयों को यो बताना चाहते हैं कि भाई बासमती धान को हमें कैसे रोपित करना है, कैसे भैया उसकी देखभाल करनी है, कैसे कटाई करनी है और कैसे बाजार में बेचना है।
1: बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और देखो अब तक किसान भाई इस पाठशाला में बहुत सारी जानकारी बासमती धान के संबंध में ले चुके, चाहे वो नर्सरी की बुआई की बात हो, नर्सरी की देखभाल की बात हो, खेतों की तैयारी की बात हो, कीट मैनेजमेंट की बात हो, ये सारी बातें हो गई।
0: बिल्कुल। अब देखो जो हमारा इस समय चल रहा है
1: जी जी, जी।
0: उसमें हमारे कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने रोपाई कर दी और कुछ ऐसे हैं जिनकी भैया अभी पौध तैयार नहीं हुई।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वही हमारे किसान भाई ये भी जानते हैं कि 20 से 25 दिन की पौध जब हो जाती है
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो हमारे किसान भाई उसे भैया रोपित करने के लिए तैयार मान लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो भाई पहली बात तो हम यू भी ध्यान से बताना चाह रहे हैं किसान भाइयों को कि पौधशाला से पौध उखाड़ते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए।
1: बहुत जरूरी होती है, क्योंकि भैया जिस पौध को हमने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है, बीज हम अपनी पसंद का लेकर आए हैं, तो वो हमारी पौध ठीक तरीके से रोपित हो जाए ये जिम्मेदारी हमारी होती है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि भैया जब वो पौध उखाड़नी है उससे पहले शाम को पौधशाला में पानी जरूर भर दें।
0: बिल्कुल। देखो पौधशाला में पानी भर दें ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अपना खेत तैयार कर लें।
1: खेत तो तैयार करना ही पड़ेगा।
0: और भैया एक एक बीज को उखाड़ना है आराम से, इस हिसाब से उखाड़ना है कि भैया जो पौध आप कर रहे हैं
1: जी
0: उसकी जो है जड़ टूटने ना पाए। और भाई एक एक जड़ को उखाड़ के उसकी गुच्छी बना लेनी है। और भैया जड़ को बहुत अच्छी तरह से साफ कर देना है मिट्टी उसकी जो है
1: जी।
0: और भाई जब आप गड्डी बांध देंगे उसकी छोटी सी, उसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा काट देना।
1: बिल्कुल ठीक है आपने बात बताई। देखो हम जब धान की पौध को उखाड़े हैं तो भैया जो हमारी कुछ श्रमिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि भैया वो खेत में पानी नहीं भरने देते, कहते हैं कि भैया हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इस तरह भैया ये सारी बातें भूलते हुए हमें जो है खेत में पानी जरूर भरना है, पौध सही तरीके से उखाड़नी है। और भैया जो आपने बताया ना कि मिट्टी उसकी एकदम साफ हो जानी चाहिए, भैया देखो मिट्टी तो वो खेत में ही जानी, मिट्टी को साफ करने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी उस मिट्टी के साथ उस पौध को शोधित करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, देखो भैया हमने बात ये कही थी कि ऊपर का हिस्सा जो तोड़ देना है या काट देना है
1: जी,
0: उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीट होते हैं जो भैया बड़े चालाक होते हैं और ऊपरी हिस्से पे जो अपने अंडे छोड़ दें कि जैसे ही खेत में जाएगी बस उसका अंडा जो है वो कीड़ा बन जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: और फसल को नुकसान देगा।
1: तो देखो ये सारी बातें तो होंगी भैया, इन सब के साथ साथ खेत में कुछ खरपतवार भी उगाए करे हैं।
0: बिल्कुल, तो भैया खरपतवार का नियंत्रण करने की बात अगर चल रही है तो भैया हम क्यों ना इसकी जानकारी आज के पाठ में ले लें।
1: बिल्कुल, आज के पाठ में भैया यू ही जानकारी हम लेकर आए हैं, विषय है बासमती धान में खरपतवार नियंत्रण। और भाई इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं धान अनुसंधान केंद्र नगीना के डॉक्टर विवेक कुमार यादव, और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
2: किसान भाइयों नमस्कार, बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि हमारी बासमती धान की फसल में कुछ घास फूस हो जाती है, खरपतवार हो जाते हैं, तो बासमती धान की फसल में किस तरीके से हमें खरपतवार नियंत्रण करना है, आज हम इसी बारे में आपको जानकारी दिलवा रहे हैं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक कुमार यादव जो कि वैज्ञानिक हैं धान अनुसंधान केंद्र नगीना बिजनौर में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
2: तो देखिए डॉक्टर साहब, बासमती धान की जो हमारी फसल है, हम देखते हैं कि उसमें कई तरीके के घास फूस हो जाती है, खरपतवार हो जाते हैं, तो धान के मुख्य जो खरपतवार डॉक्टर साहब वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो नुकसान पहुंचाते हैं?
6: जी जी जी, देखिए धान की फसल में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। एक तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, एक सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, एक मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
2: जी,
6: अगर आप सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सावा, जंगली धान, मकड़ा घास और दूब घास,
2: जी
6: ये मुख्य रूप से सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। अगर आप मोथा कुल की बात करें तो इसमें मोथा आता है, मोथा कई प्रकार के होते हैं, एक पीला मोथा होता है, एक छतरी वाला मोथा होता है, एक सुई मोथा होता है, तो ये मोथा कुल के खरपतवार आते हैं। इसी प्रकार अगर आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करें तो इसमें कनकौवा आता है, भखरा आता है, बम्बू घास आती है और जंगली चलाई, ये प्रमुख रूप से आपके खरपतवार हैं जो धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जहां तक इसकी हानियों की बात है तो खरपतवार, आपको जैसे कि किसान भाइयों को पता है कि खरपतवार फसल के साथ नमी, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
2: जी बिल्कुल,
6: तो इससे उत्पादन में भारी कमी आती है। तो धान की फसल में खरपतवारों से होने वाला नुकसान 18-85% तक आंका गया है। कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच सकता है अगर आप सही तरीके से खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं। और सीधे बोए गए धान में रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक नुकसान देखने को मिलता है।
2: अच्छा,
6: और पैदावार की कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोग जो है, जो जीवाणु हैं और कीट व्याधियां हैं, उनको आश्रय देने का भी काम करते हैं जिससे कि हमारी फसल को भी नुकसान होता है।
2: जी, तो देखिए जो हमारे खरपतवार होते हैं ये हमारी मुख्य फसल से अपना प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उसमें से ये अपना हिस्सा ले लेते हैं, जिससे कि जो हमारी मुख्य फसल है जो धान है वो हमारी कमजोर रह जाती है क्योंकि उसको मुख्य पोषक तत्व पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनसे काफी नुकसान होता है। तो अब बात यह आती है कि हमारे किसान भाई जो है वो किस तरीके से खरपतवार की रोकथाम करें, कैसे इनको नियंत्रित करें, तो कौन कौन से काम हमारे किसान भाई कर सकते हैं धान की रोपाई में या उससे पहले या बाद में कि ये हमारे जो खरपतवार है इनकी रोकथाम अच्छे तरीके से हो सके।
6: देखिए धान की फसल में खरपतवार को होने वाला नुकसान जो होता है वो संख्या किस समय फसल के प्रतिस्पर्धक समय पर निर्भर करता है।
2: जी,
6: जैसे घास कुल के खरपतवार हैं जैसे सावा, कोदो फसल की प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो है वो बाद वाली अवस्था जो है उनमें नुकसान पहुंचाते हैं।
2: अच्छा,
6: और जो सीधे बोया गया धान है आपका उसमें से 15-45 दिन तक खरपतवार का नियंत्रण बहुत आवश्यक है, और रुपाई वाले धान जो होता है उसमें यही 35-45 दिन का समय जो होता है ये बहुत क्रिटिकल है। 45 दिन तक आपको जो है खरपतवार, क्योंकि क्रांतिक दृष्टि से बहुत नाजुक अवस्था होती है, इस समय में अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो उपज में भारी कमी देखने को मिलती है।
2: जी,
6: अब आपने पूछा कि खरपतवार की रोकथाम कैसे करें, तो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इनमें प्रमुख विधियां हैं जैसे निवारक विधि है, यांत्रिक विधि है, कुछ हम सस्य क्रियाओं में परिवर्तन करके कंट्रोल कर सकते हैं खरपतवारों का, और आपका रासायनिक नियंत्रण भी आता है।
2: अच्छा,
6: तो इसमें सबसे पहली विधि जैसे आपकी निवारक विधि है, तो इस निवारक विधि माने ये होता है कि हम ऐसी कुछ क्रियाएं करें जिससे खरपतवार खेत में ना पाए।
2: जी बिल्कुल।
6: जैसे हम खरपतवारों का प्रवेश जो है खेत में रोकते हैं, जैसे प्रमाणित बीजों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, आप अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर कंपोस्ट की खाद डाल रहे हैं, सिंचाई नालियों की आप समय पर सफाई कर रहे हैं, खेत की तैयारी एवं बुवाई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र जो है उनकी आप सही से सफाई कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आपका खरपतवार खेत प्रवेश आप एक तरह से उसको रोक देते हैं।
2: जी।
6: दूसरी विधि होती है यांत्रिक विधि। इसमें मुख्य रूप से जैसे पैडी वीडर यंत्र आता है उसके द्वारा आप जो है खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, और या धान की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली रुपाई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी 40 से 45 दिन बाद खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के लिए की जाती है। लेकिन चूंकि आप जैसा किसान भाई भी जानते हैं इस टाइम लेबर की बहुत बड़ी समस्या है।
2: जी बिल्कुल।
6: तो इसीलिए किसान जो है ज्यादातर रासायनिक जो आपका नियंत्रण है उस तरफ जाता है। इसके अलावा एक सस्य क्रियाओं में आप अगर छोटा मोटा परिवर्तन करते हैं उससे भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे एक मेथड आता है स्टेल सीड बेड मेथड, बहुत पुराना मेथड है, किसान भाई जानते भी हैं। जैसे बुवाई के पूर्व जब आपका गेहूं कट जाता है उसके बाद आप खेत में जैसे हैरो निकाल दिया आपने, उसके बाद बारिश होती है, बारिश में खरपतवार को उगने दें,
2: जम जाते हैं पहले,
6: और जब जम जाए वो उसके बाद आप ट्रैक्टर की सहायता से उसको जो है एक बार जोत दें, उससे क्या होगा कि जो खेत में पहला जो फ्लस आता है उसका खरपतवारों का वो आपका नियंत्रित हो जाता है।
2: जी बिल्कुल।
6: दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि आप डीप समर प्लाइंग, गर्मी की गहरी जुताई, जो किसान भाई अब भूलते जा रहे हैं क्योंकि रोटावेटर का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, रोटावेटर बहुत गहराई तक नहीं चलता है।
2: जी बिल्कुल।
6: ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि खरपतवार और रोगों की संख्या बढ़ रही है। तो रबी की फसल के कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में पहली बार गहरी जुताई करने से खरपतवारों के बीज और राइजोम जमीन के ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में अपनी जो अंकुरण क्षमता है उसको खो देते हैं।
2: अच्छा।
6: इस विधि से कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप काफी कम हो जाता है। और एक अन्य मेथड है जैसे आप किस्मों का चुनाव कौन सा करें, तो जहां पर खरपतवारों की रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिनमें आरंभिक जो ग्रोथ है, आरंभिक बढ़वार है वो तेज हो, जिससे वो खरपतवारों की तुलना में तेजी से बढ़ सके और आसानी से प्रतिस्पर्धा करके जो खरपतवार है उनको दबा सके। ऐसा भी देखा गया कि छिटकवा विधि से किसान भाई अगर धान बोते हैं तो उसमें खरपतवारों की संख्या ज्यादा आती है और रुपाई करते हैं तो उसमें कम आती है। इसी प्रकार आप जो है अगर कतारों के बीच की दूरी व बीज की मात्रा को नियंत्रित कर दें तब भी आप जो है खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे धान की कतारों के बीच की दूरी कम करने से जो बीच में खरपतवारों को उगने का स्थान होता है वो कम हो जाता है और इस तरह बीज

0: विधि है, साथ ही फसल चक्र हमारे किसान भाई अपना सकते हैं, और जो धान में लाइनें हम रखते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी कम करके भी हम जो है खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और देखिए डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हम चाहे कितने भी से किराएं करें लेकिन आखिरकार ये हमारे खरपतवार उगी जाते हैं और कई बार हमें रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो रासायनिक विधि से किस तरीके से हमारे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं?
1: देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अलग अलग खेतों में अलग अलग प्रकार के खरपतवार आते हैं
0: जी।
1: तो कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें जो आपके घास वर्गीय हैं, जो ग्रासी वीड होते हैं, वो ज्यादा आते हैं
0: जी।
1: कुछ में आपने देखा होगा घास मतलब मोथा कुल के ज्यादा आते हैं, कुछ में देखा होगा कि आपने घास, मोथा कुल और चौड़ी पत्ती, तीनों प्रकार के खरपतवार आते हैं। तो जब आप कोई भी खरपतवार नाशी का चुनाव कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके खेत में किस प्रकार के खरपतवार का प्रकोप ज्यादा है
0: जी,
1: तो आप उस हिसाब से अपना जो खरपतवार नाशी को सिलेक्ट करें। खरपतवार नाशी रसायनों की आवश्यक मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए
0: जी,
1: अथवा 60 किलोग्राम सूखी रेत मिलाकर रुपाई के 2 से 3 दिन के अंदर जो है 4 से 5 सेंटीमीटर खड़े पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब रही बात जो आपकी खरपतवार नाशी की, तो एक बहुत पुराना केमिकल है ब्यूटाक्लोर, सब किसान भाइयों ने नाम सुना होगा
0: जी।
1: इसकी 3 लीटर मात्रा रुपाई के 2 से 3 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया ये केवल आपके जो ग्रासी वीड है, जो आपके घास कुल के खरपतवार है, केवल उन्हीं को नियंत्रित करेगा। इसी प्रकार पेटिला क्लोर एक दवा आती है, पेटिला क्लोर, वो 1.5 से 2 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से लगती है और रुपाई के बाद से लेकर 5 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये घास और मोथा कुल दोनों प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण कर जाती है। इसी प्रकार कुछ नई दवाएं भी आई है जैसे पायरेजोसल्फान इथाइल है, ये जो है 150 से 200 ग्राम दवा आपकी लगती है, ये मोथा और चौड़ी पत्ती, ये घास कुल को नियंत्रण नहीं करती है, ये मोथा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो है इनको नियंत्रित करती है और इसको आप आराम से रुपाई के 2 से 3 दिन बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार एक नई दवा है पेनोक्सिलम, ये 85 से 100 ml प्रति हेक्टेयर दर से लगती है और इसका ये पोस्ट इमरजेंस टाइप की, आप रुपाई के 10 से 20 दिन बाद इसका प्रयोग करेंगे आप, लेकिन ये जो है मोथा, चौड़ी पत्ती और घास, ये तीनों प्रकार के खरपतवार को नियंत्रित आपका कर देती है। इसी प्रकार एक दवा आती है साई हेलोफा ब्यूटाइल, ये भी आपके केवल घास वर्ग के जो होते हैं उनको नियंत्रण करती है, जैसे 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दो केमिकल मिला के जो रेडीमिक्स आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसे आपका है एक फ्लोर पायरोक्सीफेन बेंजिल और पेनोक्सिलम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसकी 1.2 से 1.3 लीटर मात्रा लगभग आप जो है घास, मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों प्रकार के खरपतवार को नियंत्रित कर देता है। इसी प्रकार फेनोक्साप्राप प्लस क्लोरी म्यूरान प्लस पीटला क्लोर, ये एक नया कॉम्बिनेशन अभी जल्दी में आया है
0: जी।
1: इसकी 1.2 लीटर मात्रा आप 10-15 दिन बाद रुपाई के आप प्रयोग करें, इससे जटिल खरपतवार समूह जो आपका है घास, मोथा, चौड़ी पत्ती का, उसको सबको आप नष्ट कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से हमारे किसान भाई जो रासायनिक विधि है और इन रसायनों के इस्तेमाल से खरपतवारों को हम धान की फसल में नियंत्रित कर सकते हैं। और देखिए डॉक्टर साहब, जो हमारी धान की फसल है वो काफी नाजुक सी फसल है, काफी नरम फसल है, तो हमें बड़ी सावधानी के साथ में रसायनों का इस्तेमाल करना है, खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना है, तो ये कौन कौन सी सावधानी है जिनको हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखना है?
1: सबसे पहले तो सावधानी ये रखनी है
0: जी
1: कि जो खरपतवार नाशी आप ले रहे हैं वो सही सोर्स से लें आप।
0: अच्छा,
1: अक्सर किसान भाइयों का ये सुनने को मिलता है कि ब्यूटा क्लोर लेते थे असर करना बंद कर दिया, वो असर करना बंद नहीं किया है, उससे ज्यादा डुप्लीकेसी का रोल है
0: जी।
1: तमाम नकली दवाएं मार्केट में आ रही हैं, इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब भी दवा आप खरपतवारनाशी ले रहे हैं या आप कीटनाशी कोई भी ले रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो अच्छी कंपनी के हैं उन्हीं का आप प्रयोग करें, क्योंकि तमाम ऐसी कंपनी चल रही है जो फिर आपको असर नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा उसमें।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा है कि जो घोल तैयार करें उसमें पानी की मात्रा एकदम सही रखें, जैसा कि मैंने बताया 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से आप प्रयोग करें
0: जी।
1: तो इसी हिसाब से आप प्रयोग करें और जो स्प्रे और आपको नैपसैक स्प्रे से आप स्प्रे करें और अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करें, और जो रसायन जब आप खरीदते हैं, शाकनाशी खरीदते हैं, तो उसमें देख लें एक बार खुद भी कि जो एक्सपायरी डेट जो है उसकी क्या है, उसको देखने की जरूरत है। और अगर वर्षा की संभावना है, आजकल मौसम जो संभावनाएं होती हैं वो आप मोबाइल सबके पास है, आराम से पता भी लग जाता है
0: जी।
1: तो अगर आपको देख रहे हैं कि आप दिन में कभी बारिश की संभावना है या अगले दिन बारिश की संभावना है तो आप जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग न करें। और शाकनाशी रसायनों के छिड़काव करते समय अपना चेहरा जो है हवा के विपरीत दिशा में ना हो, यह भी ध्यान रखें, नहीं तो आपके सांस के साथ वो केमिकल अंदर जा सकता है। और दूसरी चीज, एक चीज ये भी है कि किसी भी खरपतवार नाशी का आप जब प्रयोग कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि जब आप नमी पर्याप्त मात्रा में होगी तभी आपका खरपतवार नाशी अच्छी तरह से आपका असर कर पाएगा। और जो आपके छिड़काव समाप्त होने के बाद अपने हाथ है, मुंह है, साबुन से अच्छी तरह आप अवश्य धो लें, क्योंकि ये भी आपको नुकसान कर सकता है।
0: बिल्कुल, तो इस तरीके से हमारे किसान भाई को इन सब बातों को ध्यान में रखना है और सही तरीके से हमें घोल बनाना है और अच्छे तरीके से हमें अपनी धान की फसल में स्प्रे करना है और मौसम का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि वर्षा का मौसम ना हो या आगे वर्षा ना आने वाली हो, तो मौसम को ध्यान रखते हुए हमें रसायनों का इस्तेमाल करना है, खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करना है। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान बहन भाइयों को धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में क्या कोई राय देना चाहेंगे?
1: मुख्य रूप से जैसे मैंने आपको मेन चीज बताई है कि कुछ हमने नए रसायनों के नाम बताए हैं। पहली बात जो मैंने बताई आपको कि जो आप ये देखें, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स जो मैंने बताए हैं वो थोड़े महंगे भी आते हैं, क्योंकि वो कई तरह के आपके जो बीड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कई मोथा को भी नियंत्रण कर रहे हैं, मोथा कुल के और जो है घास वर्ग के भी नियंत्रण कर रहे हैं, तो थोड़े महंगे होते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके घास कुल के ही ज्यादा आपके खेत में खरपतवार, तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप घास कुल का जो खरपतवार नाशी मैंने बताया है उसका ही आप प्रयोग करें। दूसरा, जैसे आप बाइसपर्बिक सोडियम, एक पोस्ट इमरजेंस नॉमनी गोल्ड नाम से भी आता है, बाइसपर्बिक सोडियम बहुत फेमस हुआ है, तो किसान भाई अक्सर क्या करते हैं कि उसका स्प्रे करते हैं तो खेत पानी भरा रहता है।
0: अच्छा,
1: जबकि उसके प्रयोग का सही तरीका यह है कि आप जो है खेत से पानी निकाल दें पहले, खेत से पानी निकाल के आप उसमें स्प्रे करें, दो तीन दिन बाद जब उसमें जाए तब आप पानी लगाएं। तो अगर आप छोटी छोटी चीजें ये करते हैं, पेंडी मेथिलीन का जैसे आप स्प्रे कर रहे हैं, आप जो आपका सीधी बुवाई करते हैं अक्सर पेंडी, उसमें कोशिश ये की जाती है कि आप जो है पीछे हटते हुए स्प्रे करें।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो क्या करता है, जैसे आप आगे की तरफ चलते हुए स्प्रे आप कर रहे हैं तो वो फिल्म बनाता चलता है
0: जी,
1: और जैसे जहां जहां आपका आप आगे स्प्रे करते जा रहे हैं पीछे पीछे जहां आपका पैर पड़ेगा वहां वो फिल्म टूटती जाएगी
0: जी,
1: तो जहां फिल्म टूटेगी वहीं से खरपतवार निकलने शुरू हो जाएंगे
0: जी। बिल्कुल,
1: तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और दवा हमेशा सही सोर्स से लें, अच्छी कंपनी की दवा प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको फायदा हो।
0: तो इस तरीके से हमारे किसान बहन भाई जो है अपनी बासमती धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और बासमती की फसल से हम बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो डॉक्टर विवेक कुमार यादव जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में और आपने हमारे किसान बहन भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो किसान भाइयों ने भैया अभी बासमती धान में खरपतवार नियंत्रण विषय पर जानकारी ली और जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के बीच थे धान अनुसंधान केंद्र नगीना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक कुमार यादव और आपसे बातचीत कर रहे थे हमारे भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू।
3: तो देखो भैया, ये बातचीत हमने सुन ली, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि हमारी बासमती धान को कौन कौन से जो खरपतवार हैं वो प्रभावित कर सकते हैं, कैसे हमें इनका नियंत्रण करना है और क्या रसायन इसके ऊपर हमें डालना है।
2: बिल्कुल सही बात आपने की और भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर वैज्ञानिकों के बताए हुए तरीके के अनुसार चलोगे तो भाई आपकी फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी
3: जी
2: और आपको जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा और भाई आप अच्छी तरह से बेच पाओगे, उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी
3: जी जी जी,
2: कुल मिलाकर एक अच्छे मुनाफे की तरफ आपकी फसल जाएगी।
3: बिल्कुल, और भाई देखो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप बासमती धान की खेती कर रहे हैं तो भैया आप बासमती के संबंध में अधिक जानकारी लेने के लिए प्रत्येक मंगलवार को सुनते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम
4: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
5: अरे मास्टर जी।
6: हाँ भैया।
5: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहला रहा है।
6: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय, सही मात्रा, सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
5: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
6: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
5: हाँ, देश किसान, किसान का मान बासमती धान।
3: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
7: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
8: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
9: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
10: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
9: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
10: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ। तो किसान भाइयों ने भैया अभी बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का सातवां पाठ सुना।
3: बिल्कुल भैया, और देखो आज के पाठ में बासमती धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई।
10: बिल्कुल,
3: और भाइयों ने अब जान लिया कि हम बासमती धान को किस तरीके से बढ़िया मतलब हम बासमती पैदा कर सके।
10: बिल्कुल, देखिए भैया बासमती हो या कोई अन्य फसल हो, देखो एक पूरा सिस्टम होता है, अगर हम पौध के बीज के चयन से लेकर
3: जी जी जी
10: और भैया उसके पौधशाला रोपण और उसकी देखभाल सारी चीजें वैज्ञानिक तरीके से करते हैं
3: हाँ हाँ हाँ,
10: तभी भैया हमारी फसल अच्छी होती है।
3: बिल्कुल,
10: और देखो बासमती के बारे में एक बात कही जा
3: हाँ हाँ हाँ
10: कि इसमें रोग और कीट तो लगते ही लगते हैं, साथ साथ भैया हमें रसायन मुक्त भी बासमती देनी है।
3: हाँ भैया, अगर हमें अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो भैया हमें बासमती का निर्यात करना पड़ेगा, और निर्यात तभी होगी जब हम इसको रसायन मुक्त पैदा करेंगे।
10: बिल्कुल। तो भाई देखो, बासमती धान की खास बात यू भी है कि भाई थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान का और भैया बाकी हिंदुस्तान का।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
10: यो तो पैदा करने वाला और पूरी दुनिया खाने वाली।
3: हाँ।
10: तो जिसकी पूरी दुनिया में मांग है, तो भैया हमें ऐसी पैदा करनी चाहिए जिसमें रसायन का कोई अंश ना हो, और अगर ऐसी पैदा करें तो उसका दाम हमें बहुत ज्यादा मिलेगा।
3: जी जी जी।
10: और हमारा देश जो है समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि भाई विदेशी पैसा जितना हमारे देश में आएगा उतने हम।
3: बहुत अच्छी बात यो आपने बताई। और भैया देखो, अब हमारे जो किसान भाई बहन हैं बड़े जागरूक हैं, क्योंकि अब जो है विज्ञान का युग है, और विज्ञान ने, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विशेष रूप से अगर हम खेतीबाड़ी के क्षेत्र की बात करें, तो भैया बहुत सारी तकनीकें अब खेतीबाड़ी के लिए, मतलब कृषि के क्षेत्र में भी दी हैं। उसमें मशीन आई हैं, नई नई प्रजातियां आई हैं।
10: हाँ।
3: भैया बहुत सारे जो हम जैसे बात करें ना उर्वरकों की, वो हमें मिले हैं, जैविक खेती मिली है, दूसरी बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं, और ये सब मिला है विज्ञान की वजह से।
10: बिल्कुल।
3: और मशीनों का जब युग आया है, तो भैया फिर तो खेतीबाड़ी करनी बहुत आसान हो गई।
10: मैं देखो, बात जहां तक आपने मशीन की करी है, तो एक जमाना वो था जब भैया हल बैल से खेती हुए करे थी।
3: हाँ।
10: खुरपे फावड़े से खेती हुए करे थी।
3: जी।
10: हमारे किसान भाई भैया रात दिन लगे रहे थे। अब तो भैया जमाना बदल गया।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
10: अब देखो, अगर हम केवल ट्रैक्टर की बात कर ले, तो ट्रैक्टर के पीछे जितने भी यंत्र लग रहे हैं,
3: जी,
10: पहले नाममात्र क्या था, टीलर था, हैरो थी, या एक दो और यंत्र थे,
3: बस बस बस।
10: आज की तारीख में अगर आप देखो भैया, तो रोटावेटर आ गया है, हैप्पी सीडर आ गया है, स्प्रे करने की मशीन आ गई है, गन्ना बोने की मशीन आ गई है, गेहूं बोने की मशीन आ गई है,
3: कटाई की आ गई है, ये सारी चीजें आ गई।
10: मतलब आज के युग में बिना मशीन के आप कल्पना नहीं कर सकते।
3: जी जी जी। अब देखो, ऐसा कहा जाए कि भैया जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, खेती का आकार छोटा होता चला जा रहा है, तो इस छोटे आकार में खेती करने के लिए भैया यंत्र भी छोटे से लेकर बड़े तक बनाए जा रहे हैं।
10: बिल्कुल भाई, बात एक यू भी है।
3: हाँ।
10: छोटा आकार होने का यह है कि भाई अब हमारे देश के लोगों ने ये सोच लिया कि भाई केवल खेती पे निर्भर रहना अब ठीक नहीं है।
3: ना ना ना।
10: यानी कि जरूरी तो खेती बहुत है
3: जी,
10: लेकिन हमें अगर तरक्की करनी है तो उसके साथ साथ दूसरे काम करने हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
10: तो ये एक फायदा भी हुआ कि लोगों ने जो है दो तीन तरफ ध्यान अपना लगाया। मान लो हमारे किसान भाई खेती भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनके सहायक उद्योग भी चलाने शुरू कर दिए।
3: हाँ।
10: किसी ने डेयरी उत्पादन कर लिया, किसी ने मछली पालन कर लिया,
3: जी जी जी,
10: किसी ने सुगर पालन कर लिया, किसी ने भैया,
3: मतलब कहने का ये है कि वो खेती से जुड़े हुए जो दूसरे काम है वो करने हमारे किसान भाइयों ने शुरू कर दिए, जो बहुत जरूरत है। लेकिन जो भैया जहां तक हम बात कर रहे हैं मशीनों की, अब देखो इन मशीनों से जितना हमें फायदा है, तो भैया उसी तरीके से हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए।
10: बिल्कुल।
3: क्योंकि सही देखभाल होगी, ये सही तरीके से चलेंगी, तो भैया ये हमारा साथ भी सही ढंग से देंगे, और इनके रख रखाव की जहां तक बात है, तो भाई हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस यंत्र का उपयोग कर रहे हैं उस यंत्र की कितनी कैपेसिटी है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे भैया हमें उसको अपने खेत में चलाना है, और फिर उसको घर आके किस तरीके से भैया हमें सही तरीके से, मतलब सुरक्षित तरीके से उसको खड़ा करना है।
10: बिल्कुल। देखो, बात आपने बहुत अच्छी की। अब देखो, गन्ना बोने की मशीन होती है हमारी, तो भैया अब उसकी जरूरत नहीं है।
3: हाँ।
10: तो हमारे किसान भाई क्या करेंगे, उसे अच्छी तरह से धो के
3: जी,
10: और नीचे भैया जो लकड़ी का एक तख्ता सा रखे या पट्टा।
3: हाँ,
10: रखे।
3: हाँ।
10: उसके ऊपर छायादार स्थान पर रखेंगे, तो अगले साल अब जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे।
3: बात है।
10: पता चला कि भैया क्या करा, वो एक जगह खाली पड़ी थी कूड़ी के पास, वहां डाल दी और उसे जंग खा रहा।
3: हाँ।
10: तो भैया बड़ी दिक्कत की बात है। तो देखो, यंत्र जो है, जो भी कोई भी हो, उसे आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखोगे तो वो आपकी बहुत दिनों तक चलेगा, आपके पैसों की बचत होगी।
3: बिल्कुल
10: भाई। देखो, बात ये चल रही है कि हम किसान की आय को दोगुना कर दें, तो दोगुना करने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर की लापरवाही कर
3: ना, दें। ना, ना।
10: भाई ट्रैक्टर को अगर आप रोज नहीं देखने के, उसका एयर क्लीनर नहीं करने के, ऑयल फिल्टर साफ नहीं करने के, समय पर सर्विस नहीं कराने के, चलाने का ढंग नहीं बदलने के, बार बार क्लच दबा रहे हैं, तो ये नुकसान तो होगा।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया। देखो हमें हर यंत्र की अच्छी तरीके से देखभाल करने की जरूरत है, उसमें ग्रीसिंग की बात हो या उसको भैया छाया में खड़ा करने की बात हो या उसको सुरक्षित रखने की बात हो या भैया वैज्ञानिक तरीके से उसका इस्तेमाल करने की बात हो, हर चीज की जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। किसान भाई वैसे सब जानकारी रखे ही है आप तो भैया, क्योंकि जितने भी कृषि के यंत्र है वो सब बड़े महंगे हैं, पैसा लगा के किसान भाई खरीद कर ला रहे हैं। ऐसा भी है भैया, बहुत सारे किसान भाई तो ऐसे हैं जो इकट्ठे होकर समूह में जो महंगे महंगे यंत्र हैं उनको खरीद कर ला रहे हैं। तो ये भैया हमारी जागरूकता का ही एक परिचय है और हमें जो है इस जागरूकता को बरकरार रखना चाहिए और इन यंत्रों से अच्छी खेती करते रहना चाहिए।
10: बिल्कुल सही बात कही। हम तो ये कहेंगे कि भाई मकान कोई नहीं बना रखा तो भैया एक टीन शेड डाल लो
3: जी।
10: कुल मिलाकर छायादार स्थान होना चाहिए, बारिश से बचाव हो जा, धूप से बचाव हो जा, ओस से बचाव हो जा, तो भैया जो मशीनरी है आपकी बहुत अच्छा काम करेगी।
3: बिल्कुल
10: प्रमोद भैया बातचीत तो बतेरी होगी।
3: हाँ हाँ,
10: अब कहो तो सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: ठीक है भैया।
11: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
12: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
11: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
12: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
11: डायल कीजिए 8700014242।
12: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
3: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
13: देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
5: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
3: खुशहाली का नया प्रयोग।
14: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: तो गंगाराम भैया
10: जी, भैया
3: संदेश हमने सुन लिए और भाई देखो बातचीत हम कर ही रहे हैं, किसान भाई बातचीत को भी सुन रहे हैं, जानकारी उन्हें बासमती धान की हमने दिलवाई दी।
10: ठीक
3: भैया, गीत संगीत का होना भी बहुत जरूरी होए करे।
10: देखो भैया ऐसा है, गर्मी का तो चलिया टाइम और किसान भाई भैया पूरे हारे थके पसीने में लथपथ आते हैं।
3: जी जी,
10: तो वो अलग बात है कि भैया आधुनिक संसाधन हो गए, पंखे हो गए, कूलर हो गए, सब चीज हो गई, लेकिन भैया मनोरंजन से जो थकन उतरती ना,
3: हाँ
10: उसकी काट नहीं है कुछ भी।
3: वही तो बात है भैया, देखो किसान भाई थके हारे अपने घर में बैठे हैं, चौपाल पे बैठे हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो भैया एक रागनी तो होनी चाहिए।
10: तो भैया आपको सुनवाते हैं मैनपाल सिंह और साथियों की आवाज में गाई ये प्यारी सी रागनी।
3: ठीक है भैया।

0: किसान भाइयों को भी खूब पसंद आई होगी वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, रागनी से मनोरंजन भी हुआ, शिक्षा भी हुई, और भैया देखो ये भी पता चला कि अब हमारी जो बेटियां हैं वो पीछे नहीं है कहीं भी लड़कों से।
0: भाई देखो, अब वैसे सोच बदल गई सबकी।
1: जी जी जी
0: अब तो भाई बेटा और बेटी एक ही समझते हैं सब लोग।
1: हाँ भैया, हर क्षेत्र में बराबर है।
0: हाँ, और भैया देखो, जनसंख्या नियंत्रण ये किसी एक की बस की बात नहीं, सभी लोगों में जन जागरूकता होगी तो इसको ही नियंत्रण पाया जा सकता है। खैर भाई, अब देखो इस समय जो टाइम चल रहा है,
1: जी जी जी
0: हमारे किसान भाई उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई मौसम की क्या स्थिति है, तो कुछ ठिठी है क्या भैया?
1: बिल्कुल भैया, मौसम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखो ये मौसम की जो चिट्ठी है ना,
0: जी
1: इस चिट्ठी में लिखा है कि भैया 24 जून, मतलब कल तक की चिट्ठी है हमारे पास में, यो
0: हाँ
1: कह रहे हैं कि आम तौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है,
0: ठीक।
1: और भाई ये कह रहे हैं कि सभी फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें।
0: बिल्कुल, तो कुल मिला के बात यह है कि उमस भरा मौसम रहेगा और ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई जो हैं वो खेती किसानी के काम करें।
1: और भैया देखो एक और भी इसमें सलाह दी गई,
0: क्या है?
1: कह रहे हैं कि इस वर्ष मानसून में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान बताया जा रहा है,
0: ठीक।
1: इसलिए जो भी किसान भाई वर्षा आधारित खेती करते हैं वे धान के स्थान पर शीरियन, मतलब कि मिलेट्स, मक्का, उड़द, मूंग, तिल आदि फसलों की बुआई को प्राथमिकता दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखो भैया, बारिश की तो रहेगी कम ही साल, तो ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए हमें खेती किसानी करनी है। साथ साथ भैया, आपकी कोई खेती किसानी की समस्या हो, कोई आप हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं या कोई सलाह लेना चाह रहे हैं, तो भैया हमें चिट्ठी लिख सकते हैं। चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है भैया, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467।
1: और भैया देखो इस पते पे हमें आपकी चिट्ठियों का तो इंतजार रह गई, साथ ही भैया हमें आपके व्हाट्सएप मैसेज का भी इंतजार रहता है। आप हमारा नंबर जानते ही हैं, उस पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, नंबर है 94-570-78-288।
0: बिल्कुल, और इसके भैया देखो, आप ये भी जानते हैं, अगर चिट्ठी किसी वजह से ना लिख सकें तो आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। माह के पहले शुक्रवार को होता है हलो किसान,
1: जी
0: तीसरे शुक्रवार को होता है हलो गन्ना किसान,
1: बिल्कुल
0: और भैया आखिरी मंगलवार को होता है हलो बासमती।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: भैया आपकी कोई भी समस्या हो तो अपने जो सवाल है उससे संबंधित दिन में भैया शाम को 6:05
1: पांच
0: से
1: मिनट से
0: लेकर 6:45 के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं। फोन
1: और
0: नंबर एक बार और बता दो भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया देखो फोन नंबर हमारा वही है, 94-570-78-288।
0: भैया देखो, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी, और यूट्यूब पर भी, आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से। तो आप हमसे जुड़े रहिए भाई, समय अब जो है ज़्यादा बातें करने की इजाज़त नहीं दिया गया
1: बिल्कुल
0: है।
1: भाई, देखिए अब समय हमें कह रहा है कि आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेट लिया जाए, तो अब किसान भाइयों से ले लेते हैं अनुमति। तो किसान भाइयों, अपने भैया प्रमोद सिंह,
0: और अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम को इजाजत दीजिए। किसान भाइयों, राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में श्रोताओं आज सुनते हैं रचना कुमारी की वार्ता जिसका विषय है भारत में नारीवाद का विकास।
1: नारीवाद ने विद्रोह है न शोर है, नारीवाद तो बस स्त्री पुरुष की एक डोर है। नारीवाद ने विद्रोह न शोर है, नारीवाद तो बस स्त्री पुरुष की एक डोर है। न ऊंचा है न नीचा है, न कम है न ज्यादा, बस समझो इंसान से इतना सवादा। न ऊंचा है न नीचा है, न कम है न ज्यादा, बस समझो इंसान से इतना सवादा। वह जो चूल्हे के धुएं में कविता लिखे, वह जो चूल्हे के धुएं में कविता लिखे, ऑफिसों की फाइलों में सपने सजाए, ऑफिसों की फाइलों में सपने सजाए, जो बेटी को पंख दे बेटे को संस्कार, जो बेटी

को पंख दे, बेटे को संस्कार, वो नारीवाद है हर रूप में समाए, वो नारीवाद है हर रूप में समाए, साड़ी में शक्ति है, जींस में जिद है, घर संभाले तो धरती, घर संभाले तो धरती, बाहर की चाकरी संभाले तो नभ है, लड़की हो शांत रहो, बस कहने वालों से वो हंसकर कहे, मेरी आवाज ही लव है, मेरी आवाज ही मेरी लव है। नारीवाद का मतलब तुम्हारी मर्जी से नहीं है, नारीवाद का मतलब तुम्हारी मर्जी से नहीं है, मेरी मर्जी ही उतनी ही कीमती है, मेरी मर्जी ही उतनी ही कीमती है। साहब के लिए चाय बनाऊं या रॉकेट उड़ाऊं, साहब के लिए चाय बनाऊं या रॉकेट उड़ाऊं, इंदिरा बनूं या द्रौपदी मुर्मू, या कविता चावला या सुनीता विलियम, इंदिरा बनूं या द्रौपदी मुर्मू, या कल्पना चावला या सुनीता विलियम, मेरा फैसला है, पहचान मेरी अपनी है, फैसला मेरा है, पहचान मेरी अपनी है, ना कोई एहसास ना कोई एहसान है, बराबर की जमी चाहिए, मेरा फैसला है, पहचान मेरी अपनी है, फैसला मेरा है, पहचान मेरी अपनी है, ना कोई एहसान बराबर की जमी चाहिए, उंगली उठे तो मेरी उड़ान पर, उंगली उठे तो मेरी उड़ान पर, उनके सामने सीना तान खड़ी जमी चाहिए, उनके सामने सीना तान खड़ी जमी चाहिए। श्रोताओं, इस मधुर गीत के हकीकत पर रखे शब्दों के आधार पर नारीवाद का अर्थ केवल पुरुष का विरोध नहीं है, इसका मूल अर्थ है लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकार, गरिमा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता की मांग। भारत में नारीवाद का जो विकास है वो पश्चिम से अलग का रहा है, यहाँ यह आंदोलन पश्चिमी नकल नहीं बल्कि सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक मूल्य से जुड़कर विकसित हुआ है। भारत में नारीवाद की यात्रा सती प्रथा के विरोध से शुरू होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मी टू तक पहुँची है। यह 2000 साल का एक ऐसा सफर है जिसमे वेदों की गार्गी से लेकर अंतरिक्ष की कल्पना चावला और सुनीता विलियम का इतिहास समाया है। ऋग्वेद में गार्गी मैत्रेयी अपाला जैसी विदुषी महिलाओं के संवाद मिलते हैं और गार्गी ने तो इतना किया है कि राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान का शास्त्रार्थ किया है, जो अग्रणीय योगदान माना जाता है। अर्थवेद में स्त्री को रथ के समान सम्मान दिया है। उपनिषद में मैत्रेयी ने संपत्ति से अधिक ज्ञान को चुना है। मध्यकाल की स्थिति बिगड़ी, विदेशी आक्रमण, सामाजिक असुरक्षा के कारण पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरूतियां बढ़ी, लेकिन इसी काल में भक्ति आंदोलन ने नारीवाद को नई ऊर्जा दी। मीराबाई ने राजघराने की मर्यादा तोड़कर कृष्ण भक्ति को चुना। मीरा ने कहा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अक्का महादेवी, जनाबाई, बहिनाबाई जैसी संत कवित्रियों ने ईश्वर के सामने सब बराबर होने का संदेश दिया है। भक्ति आंदोलन का पहला सांस्कृतिक नारीवादी आंदोलन था क्योंकि इन महिलाओं को पुरोहित के बिना ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार मिल गया था। 19वीं शताब्दी को भारतीय नारीवाद का पुनर्जागरण काल कहा है। ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शिक्षा ने महिलाओं के स्थिति पर बहस छोड़ी। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाकर इसे कानूनन बंद कराया। यह भारत का पहला सफल नारीवादी कानून था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह समर्थन में संघर्ष किया। 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम बना। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका और नारीवादी होने के साथ 1848 में महिलाओं के लिए पुणे में पहला स्कूल खोलने वाली महिलाएं थीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से बाल विवाह का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। पंडिता रमाबाई ने विधवाओं के लिए दा सदन खोला, स्त्री धर्म की नीति राष्ट्रीय पुस्तक लिखी। ताराबाई शिंदे ने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना पुरुषात्मक समाज पर पहली व्यवस्थित आलोचना की। इस काल का नारीवादी पश्चिमी नारीवाद से अलग का सा रिश्ता था। यह भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए सुधार मांग करने जैसी थी। सुधारकों का तर्क था कि सच्चा हिंदू धर्म महिलाओं को सम्मान देता है, कुरूतियां बाद में जुड़ी हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत भारतीय आंदोलन से जुड़ गई। सरोजनी नायडू, एनी वेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने स्वराज्य के साथ स्त्री स्वराज्य की मांग की। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन बना। इनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकारों के लिए लड़ना था।
महात्मा गांधी ने महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया। उनका मानना था कि अहिंसा स्त्री का स्वाभाविक गुण है, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अहम है। नमक आंदोलन में अरुणा, आसिफ अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अखिल भारतीय महिला संगठन बनाकर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया। 1947 में भारतीय संविधान बनते समय महिलाओं को पुरुषों के बराबर मताधिकार मिल गया। इस तरह राजनीतिक नारीवाद ने कानूनी समानता का लक्ष्य संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 में लैंगिक समानता का मौलिक अधिकार हासिल कर लिया। आजादी के बाद नारीवाद का ध्यान कानून व नीतियों पर आकृष्ट हुआ। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 में हिंदू अधिकार अधिनियम, 1961 में दहेज विधेयक अधिनियम बना। 1974 में कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया से कानून बनने के बाद भी भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। मुंबई में फॉर्म अगेंस्ट रेप, 1980 का मथुरा का रेप केस के बाद महिलाओं का सड़कों पर उतरकर कानून में बदलाव, 1993 में भारतीय दंड संहिता 376 में बदलाव लाना। इस समय एनजीओ और महिला संगठन मजबूत हुए। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को संगठित किया। वे 2012 में डिजिटल नारीवाद निर्भया कांड के बाद एसोसिएशन एंटी नो सिंड्रेला पिंजरा टॉड मी टूल इंडिया जैसे सोशल मीडिया पर अभियान चले। पिंजरा तोड़ आंदोलन, दिल्ली की छात्राओं ने हॉस्टल के कर्फ्यू के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनका तर्क था कि लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर उनकी आजादी मत छीनो। कानूनी स्तर पर भी बदलाव हुए। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बेटियों को बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति का अधिकार मिला। 2013 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2013

0: परिवार विरोधी नहीं है, परिवार सुधारवादी है, संस्कृति विरोधी नहीं है, संस्कृति के भीतर समानता मांगती है। यहाँ नारीवादी देवी और दासी दोनों छवियों से लड़ना है। अंतरछेदक नारीवाद की जरूरत है। भारत में नारीवाद का लक्ष्य पुरुष जैसा बनना नहीं बल्कि इंसान जैसा बनना है। जब भारत की हर बेटी बिना डर के स्कूल जाएगी, हर माँ बिना शर्म के अपने सपने बताएगी, तभी नारीवाद का विकास होगा। नारीवाद जल धारा की तरह गार्गी के शास्त्रार्थ से शुरू होकर चंद्रयान की वैज्ञानिक ऋतु कार्डिक तक हर काल की महिलाओं जैसी समानता की लड़ाई लड़ती हुई चली आ रही है तथा अपना कार्य कर रही है। सावित्री बाई फूले ने कहा है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, बिना वित्त के शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने कर दिए। आज भी शिक्षा और समानता से ही नारीवाद का भविष्य तय होगा। अंततः श्रोताओं, नारी के लिए कहा जाता है कि जो रसोई भी संभाले, जो रसोई ही भी संभाले वो सीमा भी संभाले, जो रसोई भी संभाले वो सीमा भी संभाले। नारीवाद के इस हौसले को सलाम है, नारीवाद के इस हौसले को सलाम है जो टूट कर भी खुद को भी संभालती है। तो सुनो, नारीवाद आग नहीं उजाला है, तो सुनो, नारीवाद आग नहीं उजाला है जो जलता नहीं जगाता है, जो जलता नहीं जगाता है। जब औरत अपने लिए खड़ी होती है, जब औरत अपने लिए खड़ी होती है, जब पूरी नस्लें आगे बढ़ जाती हैं, नारीवाद कोई नारा नहीं एहसास है, नारीवाद कोई नारा नहीं एहसास है। पंख मिले तो हर औरत के लिए आकाश है। जय हिंद, जय भारत।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, भारत में नारीवाद का विकास। वार्ताकार थी रचना कुमारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म बालिका वधु से। गायक कलाकार हैं अमित कुमार, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत आर डी वर्मन का।

श्रोताओं, अभी आपने अमित कुमार के स्वर में फिल्म बालिका वधु का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम छाया गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में फिल्म यादों की बारात का ये गीत। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत आर डी वर्मन का। सजाऊंगा क्या महफिल क्या गुलिस्तां, सजाऊंगा क्या महफिल क्या गुलिस्तां, चुरा लिया है तुमने जो दिल को सनम। सजाऊंगा क्या महफिल क्या गुलिस्तां, चुरा लिया है तुमने जो दिल को सनम। अब तो मेरी हर खुशी हर जिंदगी बस तुम ही हो, बस तुम ही हो हरदम।

अभी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में यादों की बारात फिल्म का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम छाया गीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत किशोर कुमार के स्वर में फिल्म कटी पतंग से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है आरडी वर्मन ने। तेरी इन मदहोश निगाहों का ये असर है कि अब तो हर शाम हमें अपनी सी लगती है। तेरी इन मदहोश निगाहों का ये असर है, अब तो हर शाम हमें अपनी सी लगती है। खींचे चली आती है रूह तेरी ही जानिब, शायद इसी दीवानगी को मोहब्बत कहते हैं।

फिल्म कटी पतंग के इसी गीत के साथ छायागीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, शाम के 7:10 हुए हैं, सुनते हैं देश गाना।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां दे दें। आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी अल्मोड़ा की। आज रात्रि 10:30 पर श्रोता सुनेंगे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि 9:30 पर परिचर्चा प्रसारित होगी, विषय रहेगा पर्यावरण बनाम विकास। प्रतिभागी होंगे ताजवीर सिंह, विक्रांत शर्मा, सूर्यमणि रघुवंशी। परिचर्चा का संचालन करेंगे शोभित शर्मा। आज शाम 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे गजलें, कलाकार होंगे मुकेश। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या प्रसारित किया जाएगा आज रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कल रात्रि 9:30 चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोप वे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
3: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
1: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
4: शासन द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
6: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
5: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रुपए में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
7: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले 4 दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
8: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं गजलें। कलाकार हैं मुकेश।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गजलें सुन रहे हैं। कलाकार हैं मुकेश।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गजलें सुन रहे हैं। कलाकार हैं मुकेश। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गजल।

इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। इसके अंतर्गत आज आपने गजलें सुनी, कलाकार थे मुकेश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां दे दें। आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी अल्मोड़ा की। परिचर्चा हमारे श्रोता सुन सकेंगे आज रात्रि 9:30 पर। विषय रहेगा पर्यावरण बनाम विकास। प्रतिभागी होंगे ताजवीर सिंह, विक्रांत शर्मा,

सूर्यमणि रघुवंशी, संचालन करेंगे शोभित शर्मा। आज रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रस्तुत किया जाएगा। गीत संध्या कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर बाद रात 8 बजे, और एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित होगा आज रात्रि 8:30 पर। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के स्वर में, फिल्म सड़क से। गीत समीर का है और संगीत नदीम श्रवण का है।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में फिल्म। इज्जत का ये गीत शब्द रचना साहिल लुधियानवी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। हजारों महफिलें हैं मगर दिल को करार नहीं, वो तुम ही हो जिसके बिना ये दिल बेकरार है। तुम ही कह दो अबे जाने वफा हम क्या करें, तसव्वुर में भी तुम आते हो तो दिल को सुकून मिले।

अभी आपने मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में फिल्म सूर्या का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म कुली नंबर वन में। शब्द रचना समीर की है, संगीत आनंद मिलिंद का है। रातों की नींदें चुराई तुमने, रातों की नींदें चुराई तुमने, अब सपनों में भी तुम आना, होठों पे मुस्कान लिए, बस अब आ जाना, आ जाना।

अभी आपने फिल्म कुली नंबर वन का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम गीत संध्या सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। गायक कलाकार हैं SP बाला सुब्रमण्यम। गीत असद भोपाली देव कोहली का है, संगीत राम लक्ष्मण का है। दिल दीवाना है इसे कोई समझाए कैसे, प्यार की राहों में कोई संभल जाए कैसे, हो गए हम बेताब कुछ इस कदर आपके दीदार में, ये दिल अब और किसी का हो पाए कैसे है।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हमने चुना है फिल्म मेरे जीवन साथी को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत आर डी वर्मन का।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म मेरे जीवन साथी के कुछ गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मेरे जीवन साथी फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत, आवाजें फिर से किशोर कुमार की हैं। मिलन की चाह में ये दिल दीवाना हो गया, नजरों को उनकी देखा तो मैं उनका मस्ताना हो गया। चलते हैं उनकी धुन में कुछ इस तरह, जैसे कोई साज छेड़ रहा हो फिजाओं में, इन लहराती राहों और मस्त मौसम में अब कोई फर्क नहीं मंजिल और हवाओं में।

0: किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। इसमें आज आपने फिल्म मेरे जीवन साथी के कुछ गीत सुने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार संध्या सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन

0: साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील

0: पर फलस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और R. माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण

0: call in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुताल्लिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एनिनो की वजह से कमजोर मानसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुताल्लिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरब उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में ऑस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जुनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ, आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और प्लेबैक गुलूकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बाद अजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बाद अज़मर पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत नैनो की वजह से कमजोर मानसून के इम्कान असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
3: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीकेकार फसलों की बरवक्त मंसूबाबंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताजा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तजिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। एनटीए के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर उबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताजा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत, लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوار نے بتایا کہ اس حادثے میں 66 افراد زخمی بھی ہوئے جن کا علاج ابھی چل رہا ہے۔ جناب جیسوار نے مزید کہا کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط ہونے کے بعد اب تک بھارت سے وابستہ 11 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ باقی بھارتی پرچم بردار جہاز بھی جلد ہی اس راستے سے گزریں گے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر سے متعلق بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ایسے بیانات پاکستان کی اپنی ناکامیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک لایانی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان من گھڑت دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ان دعووں کو بالکل ہی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے آنے والی امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر جموں میں امرناتھ بیس کیمپ میں ایک جامع موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ اس مشق کے دوران نیشنل سیکیورٹی گارڈ، جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے مشترکہ طور پر بیس کیمپ کے پورے احاطے میں تلاشی اور علاقے کو محفوظ بنانے کی کارروائی انجام دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی اور جامع نگرانی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد پابندیوں میں نرمی کرے گا اور مالی رعایتیں فراہم کرے گا، تاہم یہ سب سخت امریکی نگرانی کے تحت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک تفصیلی بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی قیادت نے جاری سفارتی مذاکرات میں اہم رعایتیں دی ہیں جن کا مقصد مغربی ایشیا میں طویل کشیدگی کے بعد ایک جامع امن فریم ورک قائم کرنا ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے اس بیان پر ایران کی حکومت نے فوری اعتراض کیا اور نیوکلیئر نگرانی کے دائرہ کار کے بارے میں اختلاف ظاہر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے واضح کیا کہ ایران نے مخصوص نیوکلیائی تنصیبات پر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی قبول نہیں کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ان علاقوں میں ہوا کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچنے کا امکان ہے۔ دلی این سی آر میں موسم میں اچانک شدید تبدیلی دیکھی گئی کیونکہ خطے میں تیز بارش، دھول بھری آندھی اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ آئی ایم ڈی کے مطابق قومی راجدھانی میں کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.4 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ڈی نے کہا کہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودھرب خطے میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ لندن میں ایف آئی ایچ پرو لیگ ہاکی کے افتتاحی میچ میں مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم نے روایتی حریف پاکستان کو 3-4 سے ہرا دیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ مقابلہ اس ٹورنامنٹ کے سب سے اہم مقابلوں میں سے ایک تھا۔ لندن مرحلے کے دوران بھارت جمعرات کو انگلینڈ کا سامنا کرے گا اور 26 جون کو ایک بار پھر پاکستان سے کھیلے گا۔ اس کے بعد 28 جون کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے مقابلے کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کرے گا۔ آج فیفا عالمی کپ میں گروپ مرحلے کے تحت مختلف اہم مقابلے کھیلے جائیں گے۔ گروپ کے میں ہاؤسٹن میں رات 10:30 پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا، وہیں گروپ ایل کے تحت دیر رات 1:30 بوسٹن میں انگلینڈ اور گھانا آمنے سامنے ہوں گے۔ بعد میں صبح سویرے 4:30 ٹورنٹو میں کروشیا کا مقابلہ پاناما سے ہوگا۔ جرمنی کے شہر سول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے آج کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ شیوا نروان نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھوڑ نے بھی اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ हुकूमत ने कहा है कि वो एनिनो की वजह से कमजोर मानसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारी

0: کر رہی ہے. امتحانات کی نکاح سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. راتری کے 9:30 ہوئے ہیں. پرستوت ہے پریچرچا, وشے ہے پریاورن بنام وکاس. پرتیبھاگی ہیں تاجویر سنگھ, وکرانت شرما, سوریہ منی رگھونشی. परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं शोभित शर्मा.
2: कार्यक्रम परिचर्चा में स्वागत है एक बार फिर से सभी श्रोताओं का. मैं शोभित शर्मा एक और अति महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं. श्रोताओं, विषय है पर्यावरण बनाम विकास. अक्सर ये चर्चा होती है, खासतौर से हम सभी के जीवन में ये प्रश्न होता है. जो भी सोचने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो सभी ये सोचते हैं कि विकास की इस दौड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पर्यावरण को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस विकास को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस विकास की तरफ हम अग्रसर हैं, उसकी कॉस्ट पर्यावरण का खर्च तो नहीं है, कहीं पर्यावरण की कॉस्ट पे तो हम उस विकास को हासिल नहीं कर रहे हैं. तो इसी विषय पर परिचर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी जी, जो कि एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार के समाचार पत्र के संपादक हैं, साथ में विभिन्न विषयों के साथ पर्यावरण से भी जुड़े रहते हैं, पर्यावरण के विषय पर भी इनका लिखना रहता है. साथ में हैं विक्रांत शर्मा जी. विक्रांत शर्मा जी एक पर्यावरणविद हैं हम कहेंगे, क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है इन्होंने, और साथ में पर्यावरण के लिए लिखते भी हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं. और हमारे साथ में हैं ताजवीर सिंह जी. ताजवीर सिंह जी एक अध्यापक हैं, और जैसा कि अध्यापक के नेचर में भी होता है, स्वभाव में भी होता है, वो लोगों को जागरूक करते हैं पर्यावरण के विषय में. आप तीनों ही लोगों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में. सूर्यमणि जी, आपसे शुरू करेंगे. बड़ा सामान्य सा विषय है लेकिन बहुत गूढ़ है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति, स्पेशली जो हमारे श्रोता इस समय हमें सुन पा रहे हैं, तो किस तरीके से ये जो सोच है कि पर्यावरण और विकास, क्या वास्तव में दोनों, जिसे कहना चाहिए दोनों दो पोल्स हैं, दोनों दो ध्रुव हैं, एक पर्यावरण है एक विकास है, क्या ऐसा है, या फिर कोई ऐसा, जिसे कहते हैं कि ट्विन शैल मीट, क्या ऐसा है कि कोई उन दोनों का कहीं मिलना भी हो सकता है, कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है जहां पे हम दोनों को एक साथ रख सकते हैं. तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सूर्यमणि जी कि किस तरीके से आप पर्यावरण और विकास को देखते हैं.
3: देखिए, विकास और पर्यावरण दोनों परस्पर जुड़े हुए विषय
2: जी.
3: जैसा कि अपनी भूमिका में आपने कहा कि पर्यावरण की कीमत पर अगर विकास हो रहा है तो उसको हम विकास नहीं कहेंगे. संतुलित विकास के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण बहुत आवश्यक है. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, आज पूरे विश्व में जो विकास की अंधी दौड़ है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें पर्यावरण की चिंताओं को पीछे छोड़कर हमारा एकमात्र चिंतन विकास, और विकास कैसा, जिसकी न दिशा सही है न दशा सही है. विकास की अवधारणा व्यक्ति के विकास से है
2: जी.
3: समाज के विकास से है, राष्ट्र के विकास से है, और व्यक्ति, समाज और राष्ट्र कभी भी ऊंची इमारतों, बड़े बड़े पुलों, सुंदर हाईवेज से नहीं होता
2: जी.
3: इनका निर्माण विचार से होता है, और विचार तब तक उत्तम नहीं हो सकता जब तक सही परिवेश और सही वातावरण और सही पर्यावरण ना हो. लेकिन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम अपनी आवश्यकताओं से बहुत अधिक अर्जित करने की जो हमारी लालसा पैदा हो गई है, हम अगले चक्र में जिसकी चर्चा करेंगे, जिसको बाजार ने बहुत पंख लगा दिए हैं
2: जी,
3: उसमें विकास जो एक सतत प्रक्रिया विकास की है, और जो एक संतुलित विकास होना चाहिए, उसके लिए पर्यावरण के संरक्षण की महती आवश्यकता है. लेकिन पर्यावरण की कीमत पर विकास की अंधी दौड़ की ओर सारी दुनिया भागी जा रही है, और इसे रोकने के लिए एक विचार क्रांति की आवश्यकता है, और उस विचार क्रांति को पैदा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे समूहों की आवश्यकता है जो संवेदनशीलता के साथ प्रकृति को समझे, क्योंकि पर्यावरण का सबसे बड़ा स्रोत प्रकृति है, और हम प्रकृति को जाने अनजाने नुकसान पहुंचा रहे हैं. और ऐसा विकास कभी भी व्यक्ति के निर्माण का कारक नहीं हो सकता जिसमें पर्यावरण को नुकसान, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया जाता
2: जी. सूर्यमणि जी ने बहुत अच्छे एक बड़ा टर्म इन्होंने दिया, अभी आपने बताया कि एक सतत विकास की अवधारणा रखी गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी, और जो एनवायरनमेंट थिंकर्स हैं उन लोगों ने भी

0: इसको कहीं ना कहीं कहा है। ताजवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जैसे हमने ये प्रश्न किया था कि क्या ये दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, विकास और पर्यावरण, अभी सूर्यमणि जी ने बताया कि ऐसा नहीं है, दोनों ही परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, सतत विकास का जिक्र हुआ। आप किस तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, जिस विकास की अभी सूर्यमणि जी ने बात की है, किस तरीके से विकास और पर्यावरण को एक साथ देखते हैं, कि वो कौन सी विचारधारा हो सकती है या वो कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें हमारी बात में दोनों ही चीजें शामिल हों?
1: देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रकृति को समझना है तो संवेदनशील होना बहुत जरूरी। अगर आप प्रकृति को नहीं समझ सकते तो आप संवेदनशील भी नहीं है। विकास का जो हम कंसेप्ट लेके आए हैं, हम प्रकृति को बिल्कुल नजरअंदाज करके चल रहे हैं, जबकि हमारे वेदों में भी कहा गया है कि ये प्रकृति ऐसी माँ है कि अगर आप इससे उतना लो जितना ये दोबारा पैदा कर सके। हमें ऐसा महसूस हो रहा है वर्तमान में हम इस तरफ जा ही नहीं रहे, हम केवल लेने लेने का सोच रहे हैं। अपनी तरफ से जो योगदान हमें देना चाहिए प्रकृति के संतुलन के लिए, वो हम नहीं दे पा रहे। और ये भी महसूस होता है कि बड़े पटल पे या बड़े स्तरों पे भी, जबकि ये सारी ये जो चिंता है हमारी, ये पूरे विश्व स्तर की चिंता है, कि इस सब चीज को रोकने के लिए, इस सब चीज पे विचार करने के लिए अभी तक जितनी भी बातें रखी जा रही हैं, वो यथार्थ में ना ला करके केवल एक मीटिंगों पे या फिर एक पटल पे एक योजनाएं बस बन के रह जाती। उनको कैसे लोगों को जागृत करना है, कैसे एक विचार में परिवर्तन करना है, उसके लिए योजना नहीं बन पा रही है। विकास अगर हम एक ज्यादा तेजी से अगर हम करते हैं या फिर एक बिना किसी सोचे अगर हम करते हैं, तो नेचुरली हम बिना, यानी कि कुछ भी बिना सोचे, हम प्रकृति को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे को सभी लोगों को मिलकर के एक प्रयास ये करना चाहिए, चाहे वो जमीनी स्तर से एक विचार को पैदा किया जाए, चाहे वो, जैसे मैं हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैंने अपना कार्य क्षेत्र बना रखा है कि मैं अपने ये कार्य विद्यालय से शुरू करूँ, क्योंकि बच्चे एक बहुत अच्छा संदेश वाहक होते हैं समाज में। मैं समाज से जुड़ा हूँ, एक समाज को प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अपना कार्य क्षेत्र पहले अपने विद्यालय को, फिर समाज को लेके आऊँ, फिर समाज से मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज मेरा प्रकृति के संतुलन, प्रकृति से लगाव का या इसको बचाने के तरीकों का, ये ऊपर के स्तर तक जाता रहे।
0: जी तारवीर जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि जो परिवर्तन है वो मुझसे होना चाहिए, बी द चेंज योर सेल्फ यू विश टू सी इन अदर्स। तो बिल्कुल कि आप अगर अपने स्तर से शुरू करते हैं तो शायद ज्यादा इफेक्टिव होता है। सतत विकास की सूर्यमणि जी ने बात की। हम आपके पास आते हैं विक्रांत जी, के एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं आप, पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जो हमारा आज का मुद्दा है, इस परिचर्चा का विषय है कि विकास बनाम पर्यावरण, मैं इसी विषय को ही आपसे डाइसेक्ट कराना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इस चीज की हमें आवश्यकता है कि हम विकास को यहां रखें, पर्यावरण को यहां रखें, और फिर वो वर्सेस वाला गेम हो कि विकास बनाम पर्यावरण, या हम ऐसा कहें कि विकास और पर्यावरण एक साथ। तो अगर ऐसा है कि विकास बनाम पर्यावरण वास्तव में होना चाहिए, आज समय ऐसा है, स्थिति ऐसी आ चुकी है, आप किस तरीके से इसे देखते हैं कि क्या वास्तव में विकास बनाम पर्यावरण है इस समय?
2: नहीं, इसे विकास बनाम पर्यावरण लेके तो नहीं चला जा सकता। विकास की आवश्यकता है, डेवलपमेंट तो आवश्यक है, लेकिन विकास को एक बार परिभाषित जरूर करना पड़ेगा। जैसे आजकल ये माना जा रहा है कि आधारिक संरचनाएं जितनी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ही विकास के रूप में परिभाषित कर दिया गया। बड़े बड़े हाईवेज बने, बड़े हॉस्पिटल्स बने, बड़े मॉल बने, क्या यह विकास है? या जैसे कि शिक्षा में हम लेते हैं, मेंटली विकास किया जाए, एक आम आदमी को जागरूक किया जाए, वह विकास है। साथ ही इस और ले जाया जाए कि जितना हमें आवश्यकता है, वास्तव में जितना इस समय हम अनाज पैदा कर रहे हैं उसका 1/3 बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेके चलते हैं उतना आवश्यकता वास्तव में तो नहीं होती है, लेकिन उससे ज्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम हर जगह सीमेंट डाल दे रहे हैं। हम ऐसे कह सकते हैं, अगर सामान्य रूप से बोला जाए, कि जमीन के अंदर हम जमीन के सीने में कंक्रीट भर दे रहे हैं सब जगह। तो क्या ये डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट है या नहीं, डेवलपमेंट का तो द्वारा परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या का दबाव तो है, और जनसंख्या दबाव है तो नए पुल भी बनेंगे, नई बिल्डिंग्स भी बनेंगे, कॉलोनीज भी बनेंगी, बनाना तो सब पड़ेगा, लेकिन इतना प्रकृति से लिया जाए जो पब्लिक की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो और प्रकृति उसे वापस कर सके। प्रकृति में एक पर्यावरण की दुनिया में एक सिद्धांत है, नेट जीरो। नेट जीरो का अर्थ होता है, मान लिया मैंने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए खर्च कर दिए, तो जितना कमा रहा हूं उतना खर्च कर दिया, बचा सिर्फ जीरो। तो अगर हम इस सिद्धांत को लेकर चलेंगे, हम डेवलपमेंट में सिद्धांत को लेकर चलेंगे कि हम प्रकृति से उतना ही लें जितना प्रकृति वापस दे पा रही है या वापस रिकवर कर पा रही है, तब तो सस्टेनेबल हो पाएंगे, नहीं तो जैसा कि आजकल शोध हो रहा है, आपने पढ़ा होगा साइंटिफिक रूप से पहले 5 बार विलोपन हो चुका है, मानव का 5 बार विलोपन हो चुका है, और कुछ शोधकर्ताओं का कहना है ये छठा चालू होने वाला है या प्रारंभ हो गया है, अलग अलग सबकी मान्यता है, लेकिन हम उधर की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीने पहले एक शोध पढ़ा था, उसमें यह था कि हम जितना खर्च कर रहे हैं, जितना मान लिया हम इसको पैसों के रूप में लेके चलें, तो मान लिया हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं प्रकृति से संसाधन को मूल्यांकन करें, तो प्रकृति 26 रुपए ही वापस कर पा रही है। तो इस चीज पे हमें ध्यान करना पड़ेगा, डेवलपमेंट उतना जितना वास्तव में पब्लिक की आवश्यकता है, लेकिन फिर इसके मूल में भी जाना पड़ेगा, आवश्यकता क्यों, किस लिए आवश्यकता पड़ती है।
0: ये थोड़ा सा दार्शनिक सवाल हो जाता है कि आखिर जिस विकास की हम बात कर रहे हैं, अभी अभी डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी जी ने भी कहा कि वो जो विकास है वो आखिर में वो विकास कौन सा है। तो अगर हम प्योर मटेरियलिस्टिक टर्म्स में अगर बात करते हैं, हम जो भौतिकवादी जो दर्शन है उसके संबंध में बात करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो जिस डेवलपमेंट के लिए आपने बल्कि कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम उससे जरूरत से ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं या हमारी जो नीड्स हैं वो ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी करंटली हम अगर प्रैक्टिकली सोचें तो प्रैक्टिकली ये है कि जो अभी करंट इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें ये कहा जाता है डिमांड सप्लाई मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई से ड्रिवन है, तो वहां पर ये माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लाता है, फिर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर से फिर दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है, तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक सिस्टम कुछ इस तरीके का है। ऐसे में अभी सूर्यमणि जी आपने जिक्र किया एक विचार का, एक वैचारिक रिवोल्यूशन का, वैचारिक क्रांति का, कहां से आप वो वैचारिक क्रांति आती हुई देखते हैं या किस तरीके से आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो जनरेशन है, वो किस तरीके से उसे तैयार करना होगा, हमें अपने कोर्सेज के जरिए, अपने जो क्यूरिकुलम है उसके जरिए, वो कहां से आप देखते हैं उस तरीके की, क्या वैचारिक क्रांति कोई संभव है इस सिलसिले में?
3: देखिए, इसके लिए हमें पहले बहुत पीछे जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सौंपा जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, और हम क्या सौंपने जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को। मुझे आज ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान की स्थिति में इस तरह की एक वैचारिक क्रांति की अभी दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आती, लेकिन ये विचार तो है, विचार कोंधता है, एक व्यक्ति में कोंधता है और वो फिर व्यक्तियों से व्यक्तियों में फैलता है। तमाम वैचारिक क्रांति जो अब तक विश्व में हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक बीज उत्पन्न हुआ, उसके बाद क्रांति के रूप में, वैचारिक क्रांति के रूप में सामने आ गई। तो मैं निराश नहीं हूं, आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर काम हो भी रहा है और करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सब तरफ अंधेरा है, प्रकाश के कुछ खिड़कियां आज भी हमें नजर आती हैं, जहां से प्रकृति के संरक्षण के, पर्यावरण के संरक्षण की, पर्यावरण के संतुलन के लिए और विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाने के लिए काम हो रहा है
0: जी।
3: लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आज हम जिस तरह के बाजारवाद में हमें झोंक दिया गया है उसको लेकर मैं और ज्यादा चिंतित हूं, क्योंकि बाजार का एक सिद्धांत है, अभी आपने कहा था मांग और आपूर्ति का
0: जी, जी।
3: लेकिन बाजार का एक और सिद्धांत है, बाजार पहले आवश्यकता पैदा करता है फिर उत्पादन करता है, और ये प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो पर्यावरण को हुआ है और प्रकृति को हुआ है, और इसी से जो हमारा असंतुलित विकास हुआ, विकास की अवधारणा का, विकास का मतलब जैसे कि अभी विक्रांत जी ने कहा कि विकास सिर्फ बड़े बड़े पुल बना देने से, बड़े बड़े हाईवेज बना देने से, बड़े बड़े मॉल्स बना देने से ही विकास नहीं हो जाता, जब तक का अपना नैतिक उत्थान नहीं होगा
1: जी,
3: जब तक हमारे अंदर मानवता नहीं आएगी, जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे, जब तक हम अपने सामाजिक सरोकारों को नहीं समझेंगे और उनको नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है वो वैचारिक क्रांति की कल्पना अभी अधूरी है। लेकिन जब जब विनाश की ओर बढ़े किसी भी क्षेत्र में, पूरे विश्व का इतिहास है, वहां कोई ना कोई क्रांति निकली है, कोई ना कोई विचार ऐसा निकला है जिससे कि आने वाली नस्लों को भी एक सीख मिली है और वर्तमान में भी सुधार हुआ है। तो हमें पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और इसकी शुरुआत जैसा कि ताजवीर सिंह जी ने की और आपने भी कहा कि इसकी शुरुआत हमें अपने से करनी होगी
0: जी, जी।
3: और गांधी जी की ही बात को कोट करता हूं कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लें, सीमित भी ना कर लें, जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना उपभोग अगर करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाए, तो प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया है और इतना प्रकृति दे रही है कि हम बहुत पर्यावरण की संरक्षा करते हुए विकास की अपनी गति को भी जारी रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, आवश्यकता और इच्छाओं के बीच में जो संतुलन है, जो लाइन है, वो होनी चाहिए। विक्रांत जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, जो रेखा एक ड्रॉ होनी चाहिए, एक रेखा खींचनी चाहिए कि ये हमारी इच्छा है और ये हमारी जरूरतें हैं, तो वो जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे डिसाइड किया जाए, क्या कोई उसके लिए क्राइटेरिया होता है, कोई मापदंड होते हैं कि एक इंसान की, हालांकि ये कहा जाता है कि रोटी कपड़ा मकान बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, फंडामेंटल नीड्स हैं, तो क्या कोई क्राइटेरिया है एक एनवायरमेंटलिस्ट के व्यू पॉइंट से, एक पर्यावरण विद के दृष्टिकोण से, क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया निश्चित किया जा सकता है ताकि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं जो इससे सीखना चाहते हैं वो ये सोचें कि हाँ मेरी ये वाली जो चीज़ है ये मेरी ज़रूरत है और ये जो मैं अगर ये करने जा रहा हूँ तो ये शायद मेरी लग्जरी होगी, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर या आप सोचते हो ऐसा कुछ?
2: नहीं,

0: टेबल पे तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है या सुना नहीं है कि कुछ बनाया जा रहा है।
1: जी
0: इसमें तो हमें स्वयं ही वर्क करना पड़ेगा। अभी रघुवंशी जी ने जैसे कहा कि हमारी इच्छाओं को आवश्यकताओं में कन्वर्ट किया जा रहा है बाजारवाद के द्वारा, ये चीज़ तो हमें ही खुद देखनी पड़ेगी। मैं इसके लिए कहता हूँ आमतौर से कि जब से आपकी आँख खुलती है सुबह को और रात को जब तक आप बिस्तर पर जाते हैं, तब तक डेली कोई ना कोई एक्टिविटी आप करते ही हैं। उस डेली एक्टिविटी में आपने ये देखना होगा कि मान लिया आप पेस्ट करने चले
1: जी
0: सुबह को, तो आपको पेस्ट करने के लिए जो उसका ट्यूब होता है तो एल्यूमिनियम प्लस प्लास्टिक का होता है। तो क्या मेरे दांत पेस्ट से ही साफ हो सकते हैं, या फिटकरी से भी कर सकता हूँ, या सेंधा नमक से भी कर सकता हूँ, या मंजन से भी कर सकता हूँ, ये मूल्यांकन मुझे करना होगा। क्योंकि वो जो ट्यूब होता है जिसमें पेस्ट भरा होता है वो रिसाइकिल नहीं होता, और हम इसे अगर एवरेज करने चलेंगे तो लगभग लगभग एक वर्ष में 200-300 करोड़ ट्यूब सिर्फ पेस्ट के ही भारत के अंदर जो लैंडफिल में जाते हैं, और वो कभी नष्ट नहीं होने, लगभग 700 साल उन्हें लग जाने हैं। 700 साल में नष्ट होने के बाद भी वो रहते प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। हम सुबह से लेकर रात तक जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक मैंने उदाहरण दिया इसका ट्यूब का, तो वहां पे उसके कार्बन फुटनोट जनरेट होते हैं। हमें कार्बन फुटनोट पे वर्क करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा कि हमारी इच्छाएं आवश्यकताओं में कन्वर्ट ना हो जाएं। बेसिक नीड तो हमें पूरी करनी ही है,
1: जी
0: जीवन जीना है, बच्चों को पढ़ने भी जाना है। हम बस आवश्यकता से अधिक कहीं भी सफर ना करें, क्योंकि हम भी सफर करेंगे तो हम किसी भी माध्यम से करें, मान लिया हम बाइक से भी कहीं चल रहे हैं तो टायर तो घिस ही रहे हैं, बहुत हमें बारीक चीजों पर जाना पड़ेगा।
1: विक्रांत जी, अभी आपने कार्बन फुटप्रिंट की बात की, कार्बन इकोनॉमी है आजकल, शायद जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है यूएनईपी यूएनडीपी, ये काफी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कार्बन ट्रेडिंग का, जिसमें क्या होता है कि सपोज करिए एक डेवलप्ड कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स है, तो वहां पर जो पर कैपिटा कार्बन इमिशन है हम मान लेते हैं कि 1 टन है, और दूसरा एक छोटा सा देश है भूटान, वहां पे मान लीजिए कि कुछ ग्राम है। वो क्या कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि यूएस वाले वो आप मतलब यू कीप डूइंग इट, और जो आपका भूटान है कि कोई बात नहीं आप वहां से खरीद लीजिए। कुल मिला के क्या हो रहा है कि पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, कि पैसा वहां पर उन्हें आप पैसा देंगे, वो चूंकि कम कर रहे हैं दे वुड बी रिवॉर्डेड, कि उनको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के हिसाब से क्या देखते हैं कि क्या ये वास्तव में सही मेथड है? क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से फंडामेंटल फ्लॉज दिखते हैं। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम कि जो कार्बन इमिशन कम होना चाहिए, हम कहीं भी उसे डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं क्योंकि पैसा भी एक्चुअली ना एंड प्रोडक्ट है उसी इकोनॉमी का, तो ठीक है आप और करेंगे, और पैसा कमाएंगे, और ट्रांसफर करेंगे वहां पर। तो आप एनवायरमेंटलिस्ट होने के हिसाब से या एक मतलब एक जनरल सिटीजन के हिसाब से क्या सोचते हैं इस बारे में?
0: हाँ, इसमें हम कई बार दूसरे देशों की परवाह नहीं करते। जैसे चीन ने अपना काफी पानी खत्म कर
1: जी
0: दिया औद्योगिक उत्पादन में। इसके अलावा एक ऊर्जा की क्रांति में ये माना जाता है कि सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए तो उसमें कार्बन फुटनोट कम जनरेट होंगे, लेकिन उसके लिए लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग होता है, और जिन देशों में होता है 50% से ऊपर लिथियम निकलता है वो दक्षिण अमेरिका के कंट्रीज हैं। तो अब वहां पे उन्होंने अपना 65% पानी इसमें खर्च कर चुके हैं, क्योंकि जब लिथियम उत्पादन होता है तो उसमें पानी का बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर और प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है, तो अगर हम उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं अलग देश में, नुकसान तो पृथ्वी का ही है। तो यहां तो हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हर एक को अपना वर्क खुद करना
1: जी,
0: पड़ेगा,
1: कहीं ना
0: सबको करना
1: जी
0: पड़ेगा।
1: कहीं ना कहीं ये है कि हम यहाँ से अपने सिर से जिम्मेदारी दूसरे के सिर पर नहीं डाल सकते हैं। ताजवीर जी, अभी अभी रघुवंशी जी ने बात की थी कि जो परिवर्तन है, आपने भी कहा था कि वो परिवर्तन खुद से आना चाहिए। किस तरीके से, चूंकि आप एक शिक्षक हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को बताते भी होंगे, किस तरीके से उस परिवर्तन को लाया जा सकता है? किस तरीके से, कौन कौन से ऐसी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातें होती हैं जिसके जरिए हम ये संदेश अपने स्टूडेंट्स तक, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां तक ये पहुंचा सकते हैं कि भाई ये एनवायरमेंट है, ये नेचर है, ये जो है ये एक विध्वंसकारी एक्टिविटी है, ये सही है, तो किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं?
2: देखिए, जो प्रकृति है रहस्यों से भरी पड़ी है, और हमारा एक अध्यापक का जो मुख्य कार्य होता है कि जो बच्चों को जागरूक बनाने का, बच्चों को प्रकृति के या किसी भी रहस्य से अवगत कराएं, तो बच्चों को अगर हम जागरूक बना करके कोई उनको मार्गदर्शन देंगे तो बच्चा जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। जैसे मैंने बच्चों को क्या करा कि जितना भी जैसे बीजों का कैसे अंकुरण करना है, एक पौधे के सबसे पहले तो उनको ये बताया कि इन पौधे के फायदे क्या हैं, किसी भी पौधे के। उनको मैंने शुरुआत करी जो मेडिकेटेड प्लांट हैं या जो फ्लावर प्लांट्स हैं, मैं अपने विद्यालय में उन सबको पौधे बनाने से लेके कैसे नया पौधा तैयार करना है, इवन जहाँ पे भी मैंने मेरे जो संपर्क वाले हैं, तो जैसे हम लोग पौधे लगाते हैं घर में, कभी कभी हम बड़े बड़े पौधे भी लगा लेते हैं, तो मैंने उनसे ये निवेदन कर रखा है कि आपका जब पौधा गमले की कैपेसिटी से बाहर हो जाए आप मुझसे बताएं, मैं उस पौधे को निकाल लेता हूँ और निकाल के मैं अपने बच्चों से उस पौधे को रिप्लांट कराता हूँ। तो मेरा संदेश ये रहता है बच्चों के लिए कि आप अगर हरियाली

0: उनसे कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कहाँ पे हम क्या नुकसान कर रहे हैं, वो सब चीज़ बच्चे जब हम मेरे साथ मिलकर करते हैं, और फिर वो बाद में अपने घर, मेरे स्कूल में 550 बच्चा अध्ययन रहता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे उस गांव में गांव वालों के पास इतने जगह है, इतना जगह होने के बावजूद भी वो कोई वहाँ पे अपने घर में कोई वृक्षारोपण या फिर कोई सब्जी या फिर कोई फल भी उगाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब मैंने बच्चों को जागरूक करने शुरू किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब वो क्रांति बच्चों से निकल के गाँव में फैल चुकी है। तीन वृक्ष होते हैं, गुलमोहर, अमलतास और सहजन।
1: जी
0: आपने देखा होगा इन पे बहुत फलियाँ लगती हैं, इतनी फलियाँ लगती हैं बहुत, अगर उनके सारे बीज नीचे गिर के जमे तो बहुत वृक्ष हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति अपना संतुलन हमेशा बना के चलती है। इनके सारे जो बीज होते हैं पकने के बाद, अगर पकी हुई फली पे जब एक बारिश पड़ जाती है तो ये अंदर ही अंदर सारे बीज खत्म होने लगते हैं। तो मैंने फलियाँ तोड़ी, बच्चों को बड़ी जागरूक हुआ, सारे बच्चों से उनसे ही फल से बीज निकलवाए, और फिर मैंने सब बीजों के पाउच बनाकर और उनको कैसे अंकुरण करना है अपने शिक्षा विभाग में, अपने शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों में वितरण किया। पौधे मैं खुद भी तैयार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होती है, मैं किसी उसी अध्यापक को पौधा देता हूँ, पहले उससे मैं लिखित रूप से या फिर उससे पूरा मैं वादा कर लेता हूँ कि भाई आप पौधा लेके तो जा रहे हो, लेकिन इसका पालन पोषण करोगे या नहीं करोगे। अगर आप इसको पाल पोस करके बड़ा कर सकते हो तब आप पौधा लेके जा सकते हैं। तो ये क्रांति मेरी धीरे धीरे स्कूलों में फैली, आज मेरे द्वारा हरे भरे करे गए लगभग 20 से ऊपर स्कूल हैं।
1: अच्छा
0: तो ये मैसेज उन टीचरों में भी, अध्यापकों में भी सारा शौक पैदा हुआ। तो मेरा कहना का ये मतलब है कि अगर हम जमीनी स्तर से ये कार्य शुरू करेंगे तो नेचुरली थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये बड़े स्तर तक पहुँचना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सोभी जी, अभी एक कार्बन उत्सर्जन की
0: जी
1: एक चर्चा हुई
0: जी जी
1: विक्रांत
0: जी
1: जी ने और आपने स्वयं भी
0: जी
1: की, एक
0: जी
1: तथ्य मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक ऊर्जा मामलों पर काम करने वाला एक
0: टैंक
1: थिंक
0: है
1: टैंक है एम्बर,
0: जी
1: उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार G20 के सदस्य देशों, जिनकी अभी G20 की
0: जी
1: हमारे भारत ने
0: बिल्कुल
1: मेजबानी की,
0: जी
1: देशों में से 12 देश ऐसे हैं जो अपना प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफल रहे हैं।
0: अच्छा, 12 देश।
1: 12 देश उनमें से, इनमें ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। ऐसा कर पाने में जो विफल रहे हैं देश G20 के मेजबान, एक तो हम भारत ही हैं,
0: भारत जी
1: उसके साथ इंडोनेशिया और चीन जैसे देश उसमें शामिल हैं। इन देशों का जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम होने के बजाय और बढ़ा है।
0: बड़ा
1: जी, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट ये कहती है 2022 में वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन
0: जी
1: जो है उसको, उद्योग को $7 खरब की सब्सिडी दी गई। ये तथ्य मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, यानी हर मिनट $1.3 करोड़ की सब्सिडी दी गई।
0: जी
1: ये तथ्य इसलिए कहना चाहता हूँ, यह राशि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 7% है और वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में खर्च की जाने वाली राशि से लगभग 2 गुना है।
0: बिल्कुल।
1: और इसका जो सबसे जो खराब बात पक्ष है वो ये है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ये कहती है कि जितनी सब्सिडी जीवाश्म और कृषि क्षेत्र में दी जाती है उसमें से $12 खरब की राशि प्रतिवर्ष ऐसे कार्यों में खर्च की जाती है जिनमें तापमान वृद्धि और पर्यावरण विनाश को बढ़ावा मिलता है। ये भी जो हमारी एक वैश्विक जो सोच है वो हमें किधर धकेल रही है, ये रिपोर्ट ये भी बताती है।
2: बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये सूर्यमणि जी। एक्चुअल है क्या कि जो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद आप विक्रांत जी, आप लोग भी इससे इत्तेफाक रखते हो कि डेवलपिंग नेशंस बनाम डेवलप्ड नेशंस। अब
0: जी
2: है क्या कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, औद्योगिक क्रांति के बाद से, जो आज सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस है, चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, उन्होंने जम के जबरदस्त तरीके से दोहन किया प्रकृति का। आज ये मतलब हमारी ऑफिशियल अप्रोच है, हमारा ऑफिशियल ऑफिशियल स्टैंड है भारत का या और जो डेवलपिंग नेशंस है, वो कहते हैं कि आपने 150 साल तक खूब दोहन किया। आज जब हम अपने आप को विकसित, अब एक्चुअल में विकसित बनना क्या है ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, कि आज जब हम उस विकास की तरफ आ रहे हैं, आज जब हम विकसित बनना चाह रहे हैं, तो उस समय पर आप कह रहे हो कि नहीं, अब आप अपना कार्बन इमिशन है कम कर दो। तो वो कहते हैं कि भाई पहले हमें अपने बराबर आने दो, आपका जो आपका लेवल है आप अपना कार्बन इमिशन कम करो। इसी यही कारण है इन्होंने, बल्कि स्पष्टीकरण हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने दिया था, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से लेके, उन्होंने कहा कि जब हम इस इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे उसके बाद हम अपना कार्बन जो एमिशन है। लेकिन यह है कि आप ये देखिए कि हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो वो डॉक्टर साहब फिर बात वही आ जाती है कि हम विकास किसे मान रहे हैं।
0: सर, ये आशंका बिल्कुल सही जाहिर करी है कि अभी हमारे यहाँ ये जो कार्बन का उत्सर्जन है ये बढ़ेगा।
2: जी
0: आप देखिए, एक 6 आदमी के लिए ये जो रेफ्रिजरेटर हम घर में यूज करते
2: जी
0: हैं 165 लीटर्स का, पहले 8 आदमी भी हम लोग रेफ्रिजरेटर 165 लीटर्स का यूज करते थे। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली अब जो होड़ चल रही है कि उसके यहाँ डबल डोर का है या उसके यहाँ सेफ टाइप का है,

0: चलते आप तीनों ही लोगों से, सबसे पहले विक्रांत जी आपसे एक कहना चाहिए, सजेशन लेना चाहेंगे एक, आज जो हमारी इस समय श्रोता हमें सुन पा रहे हैं, क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगे? अल्टीमेटली इस परिचर्चा के बाद क्या निकल के आता है वो हम आपसे तीनों से बारी बारी, पहले विक्रांत जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसा एक पॉइंट है जिसे वो अपने घर लेके जाएं, जिसे वो जिसके ऊपर मनन करें?
1: देखिए, अभी एक परिचर्चा आई थी, पहले जरा उस पर 1 मिनट का मैं प्रकाश डाल दूं कि अमेरिका ने अपने कार्बन एमिशन कम किया है, लेकिन अमेरिका ने अपना कार्बन एमिशन दूसरे पे शिफ्ट कर दिया है। ये मैं अभी फैक्ट बताता हूँ। एक होता है कंसेप्ट वर्ल्ड ओवरशूट डे,
0: जी
1: उसमें गणना की जाती है कि किसी भी देश को एक वर्ष में कितने संसाधन की आवश्यकता है और वो कितने समय में वो उसे खर्च कर लेता है। तो 1970 में जब वर्ल्ड ओवरशूट डे का कंसेप्ट आया, तो उस समय 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक, जो 31 दिसंबर तक जो डिसाइड किए गए थे वो 30 दिसंबर में समाप्त हो गए थे। अब इसको धीरे धीरे जब हमने 2022 में इसकी गणना की गई, तो 2022 में वर्ल्ड ओवरशूट डे आया 28 जुलाई को, यानी जो 31 दिसंबर तक
0: पांच
1: निर्धारित थे
0: महीने शिफ्ट हो
1: संसाधन
0: गया।
1: वो
0: जी
1: 28 जुलाई में आ गए।
0: जी जी जी
1: लेकिन पर्टिकुलरली अमेरिका में इतना उपभोग हुआ, वहां 5 मार्च को समाप्त हो गए। जो
0: अच्छा
1: संसाधन उसके 31 दिसंबर तक होने
0: चलने
1: चाहिए थे
0: थे।
1: वो 5 मार्च को समाप्त हो गए। तो इसलिए ये शिफ्ट करने का जो कंसेप्ट आया था,
0: जी
1: अमेरिका या जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, ये चूंकि ज़्यादा खरीद कर रहे हैं चीन से या भारत से, तो वो अपना कार्बन जो है उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका परिणाम है।
0: बिल्कुल, यही कारण है कि
1: हाँ
0: बेस जो है वो बेस इतना ज्यादा है कि अगर वहां से ग्रोथ थोड़ी भी हो रही है तो उसका क्वांटम बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए खैर विक्रांत जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हमारे जो श्रोता हमें इस समय सुन पा रहे हैं वो जरूर चाहेंगे कि एट द जिस्ट क्या है, कि केंद्र में क्या रखे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हमें प्रत्येक को अपने आप पर ही वर्क करना पड़ेगा। जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, हालांकि क्रांति आएगी, विचार क्रांति आनी है, और विचार क्रांति के साथ इसमें जितना ज़्यादा हम नॉलेज हासिल करेंगे कि वास्तव में हम कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, और आवश्यकता और इच्छा में अंतर करना सीखना होगा। जब तक ये नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट में और पर्यावरण में इनको साथ साथ लेके हम चल नहीं पाएंगे। इनको हमेशा जो है विपक्ष में लेके चलेंगे, बनाम लेके चलेंगे, जबकि सापेक्ष होने चाहिए,
0: जी
1: दोनों साथ साथ चलें।
0: सूर्यमणि जी, अभी विक्रांत जी ने बताया कि इच्छा और डिजायर्स के बीच में, मतलब इच्छा और आवश्यकताओं के बीच में संतुलन स्थापित करना जरूरी है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: निष्कर्ष पे मैं ये कहना चाहूंगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसको रोकना संभव नहीं और उसको रोकना उचित भी नहीं है। लेकिन सार के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यावरण की कीमत पर अगर हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होगी। और मैं भी विक्रांत जी की बात से अपनी बात को जोड़ते हुए कहता हूँ कि हमें शुरुआत अपने आप से करनी होगी। अभी भी अगर हम संभल गए तो हो सकता आने वाली नस्लों को हम एक अच्छा पर्यावरण दे सकेंगे। और ये जो हमारा विषय विकास बनाम पर्यावरण, इसको हमें विकास और पर्यावरण की
3: जी
2: दृष्टि से देखना चाहिए।
0: बिल्कुल, ताजवीर जी आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें इस तथ्य को विकास और पर्यावरण से लेके चलना चाहिए, और आगे आना हमें ही पड़ेगा, और हमें यही बात सोचनी पड़ेगी कि हमने प्रकृति को जिस रूप में भोगा है, अगर हम अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है कि हम अगले वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। तो हमें जो पर्यावरण के 5 तत्व हैं, जलवायु, अग्नि, जो भी, तो इन सबको लेते हुए हम इन सब चीज़ में खुद को जागरूक रखें और कोशिश करें कि आने वाले सभी इसको गंभीरता से लें।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही प्रतिभागियों का, आप हमारे साथ परिचर्चा में आए, और हमारे श्रोताओं ने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि आने वाला जो वक्त है शायद उसमें हमें ज़रूरत ना पड़े कि हमें विकास और पर्यावरण को एक दूसरे के सामने खड़ा करना पड़े। हम ये चाहेंगे कि विकास और पर्यावरण की एक साथ बात हो, और पर्यावरण का जो सतत विकास है, पर्यावरण के साथ वो विकास हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, सूर्यमणि जी, विक्रांत जी और ताजवीर जी।
3: जी धन्यवाद। धन्यवाद।
4: श्रोता भी सुन रहे थे परिचर्चा, विषय था पर्यावरण बनाम विकास। प्रतिभागी थे ताजवीर सिंह, विक्रांत शर्मा, सूर्यमणि रघुवंशी, और संचालन कर रहे थे शोभित शर्मा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।
5: आकाशवाणी राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति है।

0: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाली साइकिलिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी कि मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
0: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है, हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी। जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा बच्चों का पढ़ाई से, और पेरेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए। ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना ये ही जरूरी नहीं है।
0: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज्यादा सीखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आपके अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स हैं। जो हमारा गेम है एकदम उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है
0: जी,
1: वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके यानी कि 15-16 इयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है, और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। गर्ल्स हम ऐसा नहीं करते, फाइट जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज दोनों की हम कराते हैं, तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए और अपना आत्मरक्षा के लिए, तो ये है ही अच्छी चीज।
0: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
1: 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल्स हैं वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
0: तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
1: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता। तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीजें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छूट भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30 टू 30

0: फाइव चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
1: मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो। आप अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डाइट होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूँ कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
0: 5 साल
1: से जी। तो आप ही मान के तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीजों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस चॉकलेट चिप्स वगैरह बच्चे खाते, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए, यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूँगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीजें उसमें आप उसको प्लस किया करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप 2 किलो जो है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में क्या नहीं खाना है, तो ये चीजें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
1: ट्रेनिंग की बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती है?
0: मैं हूँ क्योर्गी। हमारे अब जो टाइक्वांडो है ना, वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है, एक होता है क्योर्गी एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योर्गी ही खेला है, तो मैं क्योर्गी ही उनको खिलाती हूँ। क्योर्गी मीन्स होता है फाइट। तो फाइट के लिए हमें जरूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इम्प्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहाँ उनको मारना है, कहाँ कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहां फाइट खेलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें, ये चीजें बताई जाती है।
1: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है, कुछ इससे तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे।
0: जी,
1: तो इस तरह की सुविधा यहाँ पर है।
0: जी जी, टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है यहाँ पे, हम लोग कराते रहते हैं। हमारे स्टेडियम में भी 1 साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारी यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
1: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
0: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
1: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस का भी है, सब एक ही कोच की
0: जिम्मेदारी है।
1: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप ज्यादातर रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
0: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है, वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत उनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है, कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए। आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं, आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है। हमारे उसमें जो होता है ना, सुबह 8 बजे से जैसे शुरू हो जाता है, तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा इस तरीके से, तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को।
1: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे?
0: नहीं, वेट एक दिन
1: तो
0: पहले,
1: फिर घबराने कोई बात नहीं है। नहीं, नहीं। अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है, तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने
0: की बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे। सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा, बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस ग्लूकॉन्डी जो है इलेक्ट्रोल्स वगैरह ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
1: टूर्नामेंट के दौरान जब आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं, तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
0: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का, कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है, कुछ बच्चों ने वेट बढ़ाना होता है। तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंद ही कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीजें खाने के लिए बोलते हैं। और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीजें खा लेते हैं। ये तो हो गया विंग से पहले की बात, अब आ जाती है फाइट से। तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं। जिस बच्चे की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा, नॉर्मल आप इलेक्ट्रोल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीजें बोलते हैं। स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम गोलापार गए थे, यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप की चीजें। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीजें। तो बहुत सी चीजों का हमें प्रॉब्लम्स जो है मैं फेस करनी पड़ जाती है
1: जी। साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं। अब आप मैं चाहूंगा कि बताएं कि कैसे आपका सफर एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया।
0: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था। फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में। अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है
1: जी।
0: हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है, दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला, उसको सुनाई नहीं दिया, दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें, एटी राजीव सर है बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो हमारा करवाते हैं, सो उन्होंने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अपडेट होना जरूरी रहता है, हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में, तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरी कर चुकी हूँ।
1: आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत इजी?
0: मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है, मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूंगा।
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफी अच्छा रहा है। आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर है जो काफी सीनियर है, वो भूषण से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे, तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफी सर है हमारे विजय बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो है आगे नाम रोशन करते रहे, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
1: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है। एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं तो खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं, हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है, तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका उनका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ।

0: बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है।
1: ये थी वंदना सिंह, और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही। आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो अखिलेश बात यहीं से शुरू करते हैं, आपकी नेशनल चैंपियनशिप की, जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात याद है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल प्लेयर रही है, तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का।
1: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफर आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है, तो उसके लिए बस गेम के, अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है टेम्प्ररी, पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो तो। तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है, तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज़ में एक्सेल करना है अच्छे से, बेस्ट देना है, तो टफ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप थी, और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
1: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी हम कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहां पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता, तो ये मैं जानना चाहूंगा कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था?
2: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैंपियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए, तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैंपियनशिप्स में और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैंपियन बना मैं उस टाइम पे, और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया, और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का
1: जी,
2: तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया के बेस्ट कोचेस के साथ।
1: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
2: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
1: वहाँ पर जब आपके कोचेस होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पे आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, आप जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेस अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली जिन कोचेस से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
2: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर, जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारी एक अलग रिलेशन होता है, जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है तो उसे सब पता होता है, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़े अलग कोचेस मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है, पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो बस इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कोच तो अपना कोच ही होता है लास्ट में
1: जी। इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, अब जब आप पहली बार फाइट करने गए तो क्या था, कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं कि
2: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती है।
1: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
2: मेरी पहली फाइट चाइना से थी, हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो प्लेयर्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि जो और कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं। तो उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है उनकी फैसिलिटीज़, क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे, क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती। भले ही टैलेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है
1: जी, पर मैं ये जानना चाहूँगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका चाइनीज था, तो आप कैसे उससे फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको कि क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहाँ उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ?
2: वही गेम पढ़ना था उसका, सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियाँ देखी कि कहाँ पर वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया। वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहाँ पे एडवांटेज लिया, वहाँ से पॉइंट निकाला।
1: तो ये ऐसे खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहाँ पर?
2: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत जरूरी है, कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
1: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
2: चाइनीज अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकेंड फाइट मेरी ईजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था।
1: अच्छा,
2: कोरिया से मैं हार गया था।
1: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहाँ लैग करें?
2: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था।
1: अच्छा,
2: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा, हाइट में भी बहुत ज़्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
1: टेक्निक वाइज
2: आप मैं कहूँगा
1: टैकल कर रहे थे मतलब?
2: हाँ, टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
1: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है
2: अभी नेक्स्ट? मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को। और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफ़ी सारी रेलवे, इन सब चीज़ों में जॉब मिल जाती है इजीली। हाँ, तो उसके साथ तुम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके से।
1: तो अभी फ़िलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
2: फ़िलहाल तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो अब कॉम्पिटिशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है।
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? अब आप शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पे कोच किया?
2: विक्रम भंडारी सर,
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं। तो किस तरह की उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो क्या चीज़ें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
2: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती है और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
1: अच्छा, स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है आपको, उतनी देर रिंग में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
2: स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंडोरेंस ट्रेनिंग होती है, जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टेमिना बिल्ड होता है।
1: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया। माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
3: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
4: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी। और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया लिया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं, लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की, और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं, फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
3: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे, और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहां कहां तक की यात्राएं की हैं?
4: अनुभव तो साइकिल में जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है, तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है, और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे, और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं इनके, साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया, और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
3: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
4: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं, और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है, और यही मैंने महसूस।
3: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके, और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
1: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त लोकेंद्र। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित है। आप हमें अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं। जो नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं बता देते हैं, 9457078288 9457078288 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म साथी से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत तैयार किया है नदीम सरवण ने। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास बहुत सारे पत्र और व्हाट्सएप मैसेज हैं। ये पत्र हमारे पास आया है औरंगाबाद से। आप हैं राजेश पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जैतन वीरक, मीका वीरक। मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, मोहम्मद गनी, अलमीर और नाचमा। इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज है। आप हैं गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरी और राधा नामदेव। ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, सायना महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह लिखते हैं हमें, ग्राम दुल्हापुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, समरीन परवीन, माहिरा नूर। ये व्हाट्सएप मैसेज से फिल्म साथी के इसी गीत को सुनना चाहते हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा फरमाइश भेजते हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमें लिखते हैं। गोवर्धन कॉलोनी शाहदरा से आप लिखते हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु और इनके सभी दोस्त। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म साथी का ये गीत।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हैं।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद।

0: पाकिस्तान
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत फिल्म सिलसिला से। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है शिवहरी ने, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। गीत को पसंद किया है आप सभी ने। शाही मार्केट सिहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर चौधरी। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। गंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह, अरनेजा, दिनेश कुमार, नरेश कुमार शर्मा। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू जाजोरिया। मोहल्ला फतेहगढ़ से विनोद पुरी, अशोकपुरी, सुशील, बी के, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन, लालसा, रमा, कुणाल, निधि और इनके परिवार के सभी लोग। गांव कुम्हारखेड़ा, जिला सहारनपुर से सैयद मसरूर, गुलजार जहां, अजहर, इब्राहिम, गाजिया, आफिया और इनके परिवार के सभी लोग। नाज मंजिल, महसोल, सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, बेगम रुबीना, आरिज, ममता, साजिया नवासी, हुमैरा मुजम्मिल और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है। नगीना से अनिल विनोचा, गांव और पोस्ट राहु नंगली से ये व्हाट्सएप मैसेज हमें लिखा है आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका राघव चौहान ने, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, राजकुमार डूडी लिखते हैं गांव फरासी हिसार हरियाणा से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव नथाना पंजाब हरजिंदर से आप हैं जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ग्राम दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान और नरगिस खातून। छतपति संभाजीनगर से राजेश, राजदीप, राशि और इनके परिवार के और सभी लोगों ने पत्र में अपने नाम लिखे हैं। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, यशफ और रसीद वारसी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निहारकर, निर्मला निहावकर और विशाल निहावकर। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सिलसिला का ये गीत।

श्रोताओं, 954 किलो हर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट, मोबाइल फोन या किसी अन्य डिवाइस पर इस समय ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र, और आप इस समय सुन रहे हैं अपना पसंदीदा व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और कार्यक्रम में आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए स्टूडियो में मैं उपस्थित हूँ, आपका साथी, आपका दोस्त लोकेंद्र। तो श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद का गीत आपके नाम के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो, तो आप हमें अभी व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9457078288 इस मोबाइल नंबर पर। और अगला गीत हमने लिया है फिल्म कलाकार से, किशोर कुमार के स्वर में, गीत आनंद बख्शी का है और इस गीत के लिए धुन तैयार की है कल्याण जी, आनंद जी ने पसंद किया है आप सभी ने। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से आप हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी और इनके परिवार के और सभी लोग। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। नई बस्ती गंजुड़वारा से यासीन हाशमी, नाजमा, तौसीफ, तैमूर, कलीम अंसारी। यवतमाल, विदर्भ, महाराष्ट्र से आप हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है आप हैं मास्टर अजहर खान, आजिम खान, नवाब खान, इशरत जहां, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी।

रानी बेबी आलिया और आयान बाबू, अनारकली जरगांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी और साथी, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित और संजय शर्मा इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक लिख कर भेजते हैं। गांव गदोरना से मदन गिरी, बिमला गिरी, बलराम, भारत, मधु, सोनिया, गोविंद, सिमरन, वंशिका, रमन और दिव्या इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हम तक लिख कर भेजते हैं। मेरठ कैन से दिग्दर्शन और कविता गौड़ फरमाइश हमें लिख भेजती हैं। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से आप हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने और प्रणय। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म कलाकार का ये गीत।

नीले अंबर सा तेरा प्यार है सनम, चांद की चांदनी से रोशन है ये संसार सनम, बस एक बार थाम लो हाथ मेरा, फिर जिंदगी का हर मौसम बहार है सनम। हवाओं में घुला है जैसे कोई सुरूर, तेरे आने से हर लम्हा है कितना खूबसूरत, नीले गगन तले ये दिल की धड़कनें बयां करती हैं, इश्क का ये फसाना है भरपूर।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कलाकार का ये गीत, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म शराबी से, गायक कलाकार किशोर कुमार और आशा भोंसले, शब्द रचना अनजान की है, संगीत बप्पी लहरी।

कैंचियस गोटिंडा पंजाब से परेम सिंह, मनजीत कौर, करणवीर, दीपिंदर, कुलदीप, विकास, दमन और इनके परिवार के सभी लोग। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। आपने फरमाइश लिखकर भेजी है, आप हैं गांधी चौक बाड़मेर से, राजस्थान से डबलेश पवार, बबलेश, डैनी और मनीष पवार। सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना पप्पी, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पी, आप लिखते हैं एमएलबी रोड ग्वालियर से। शेरवानी रोज गंजुड़वाड़ा से आफ्ताब, रियाज, मोहम्मद कैफ और इनके परिवार के सभी लोग। पूर्णिमा चुनमुन छिप्पी, आप लिखते हैं बिजनौर यूपी से। आप हैं मोहल्ला हलवायान शेरकोट से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, हिना कौसर। सालपुरा जिला बारा, राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक। हर आहट पर लगता है कि तुम आ रहे हो, हर आहट पर लगता है कि तुम आ रहे हो, ये कैसा आलम है मेरे दिल के करार का।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को

0: विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।